राधा राधा। बुद्धि तो ये सब बंद हो जाती चलना। ये वो देश है बावरों का, विज्ञान विज्ञान झाड़ू लगा के बाहर परिक्रमा के कर दिया जाता है। ये तो वो देश है जो आंसुओं से भीगी हुई भूमि से युक्त है। चाहे जिस भाव के जन हो, यहाँ आंसुओं से अभिषिक्त करते रहते हैं, वो भूमि है। ऐसी भूमि पर भी आकर और वास करके यदि राधा प्रेम न प्रकट हो, राधा नाम में प्रीति न हो, तो बड़ा ही मलिन हृदय है। ये साधन लालजू की वृत्ति को पहचान पाना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है। ऐसा प्रेमी कोई नहीं जैसे लालजू है। सचित में बताते हैं, मतलब बहुत ही चतुर शिरोमणि होते हुए बहुत ही लाडिले हैं। देखो ना, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर अपने भक्तों की लगोटी धोते पाए गए, रथ आते पाए, क्या क्या। आज भी हमारी सब सही पूछो तो वही हमारी सेवा करते हैं। हम तो केवल नाम मात्र के दास हैं, वही हमारा भरण पोषण अंतर और बाहर से वही करते हैं। सखी श्री जी से जागीर की वो मानसरोवर के कुंजों में बैठ करके बीणा हाथ में लेकर के अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा ऐसा मंत्र रट, ये परामंत्र निगम पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ये पराविद्या है राधा नाम। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी ये दुर्लभ नाम है। आंतरिक हृदय वृत्ति में विराजमान ये राधा नाम है। श्री जी से कह रहे लाडली जो वहां के जीत खगमृग पशु पंछी राधा नाम सुनकर सब मोहित हो रहे हैं और एक टक चकोर की भांति उसके मुख चंद्र की तरफ देख रहे। वो अशुभ प्रवाह करती हुई राधा वीणा वादन करते हुए गान कर रही, लाडली जू मान सरोवर मांझ अरी सुन नहाई के राधा कनी में जाई के। और हमने देखा किसके बाद वो मानसरोवर में स्नान किया और इतना हृदय तक छाती तक जल में खड़े होकर राधा रहे, अर्थात राधा नाम का कीर्तन और राधा नाम का जप कर रहे। फिर लाडली जो हमने देखा कि वो आपकी स्वर्ण

0: गए,
1: क्योंकि दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर गुवार स्वयं लाल जी महाराज और गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम श्री लाल जी का राधा प्रतिपल किशोरी जी की आराधना करते रहते हैं। राधा आराधन तत्पर तत्पर है श्री स्वामी जी की याद, कैसे कोई जानेगा राधा तत्व, जिन स्नेति कहते हैं वो राधा तत्व का क्या वर्णन कर पाएंगे। लाल जी के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लाली जी महाराज, प्रेम अनिर्वचनीय है, कोई नहीं वर्णन कर सकता, फिर सांद्रानंद की वर्णन कैसे करे। सखिया जो आचार्य रूप से होते तो वो भी कह रहे, जो को कोटि कल्प लग जीवे रसना कोटि को पावे तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत नावे। वो आपकी स्वर्ण प्रतिमा को, स्वर्ण श्री विग्रह को स्नान करा रही है और चरणोदक लेकर पान करके अपने माथे पे चरणोदक और हृदय सुती है।

हिलाल लीजू आपकी प्रतिमा का श्रृंगार कर रहे, सुंदर सुंदर केसर चंदन कर्पूर, इष्ट मिली बलि की रचना उस स्वर्ण प्रतिमा में करते हैं, सुंदर पोशाक धारण कराते हैं, फूलों से श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, जल पवाते हैं, फिर कर पान की बीड़ी और फिर आपके चरणारविंद में प्रणाम करके प्रसाद पाते हैं जो भोग लगाया।

स्वामी जी सुंदर सुंदर फूलों को चयन करके शैया की रचना कर, निकुंज में आपकी प्रतिमा को विराजमान करके सुंदर सुंदर पद गान करते हैं, आपको रिझा रहे, यह उपासना महारानी जी को प्रसन्न करने की। जानन प्राणन सोही के, आहा वो बड़ी जानकार है, ऐसे सुंदर सुंदर रागों का गान करके ये प्राण, समस्त आचार्यों के आचार्य हैं लालजी महाराज, जगत गुरु हैं, नृत्य गान वाद्य आदि सबके आचार्य हैं, यही इन्हीं से सब प्रकट हुआ है। जानन गानन तानन लाडली जू, एक छोटी सी प्रतिमा और आपका नाम कंठी में पहने हमने उनको देखा, तेरी प्रतिमा पहिरे कंठी में, तुलसी की कंठी और उसमें आपका राधा नाम और आपका रूप दोनों विराजमान किए हुए हैं। कंठ सुघर संगीत सबे स्वर गावे, राग रागिनियां तो मानो मूर्तिमान होकर उनके कंठ में विराजमान हो, ऐसे गान कर। और एक आश्चर्य की बात, वो अपने आधारों पे मुरली रख के वैसे ही बजाती है जैसे लालजू बजा रहे, प्रिके मुरली जो बजावही, बंशी इतनी प्रेम मई है कि लालजू जब अधरों में धरते हैं तो उसका वजन नहीं सह पाते, कमर भी टेढ़ी हो जाती, ललित त्रिभंगी तीन जगह से टेढ़े हो जाते, रसमई वंशी का भार अधरों पे पड़ा तो महाराज ललित त्रिभंगी वो रूप कहीं नहीं मिलेगा, द्वारिका में नहीं मिलेगा, मथुरा में नहीं मिलेगा, विग्रह विराजमान उन्हीं के सब है, लेकिन ये रूप यहां बंशी ये है, बंशी का छेद द्वारिका मथुरा वहां भी देखा गया हूं, यहां कभी सुदर्शन जी का प्रवेश नहीं, कभी ब्रज 84 कोष में कौमुद की गदा पंचजन शंख भगवान की दिव्य तो कर कमल में श्री मुरली जी विराजमान है। लाडली जो जब वो मुरली में राधा नाम गाते हैं तो जमुना गमुना ना करे, वह प्रभ मृगवाहन चाहन चित्र बंधे धुनि भावई, ऐसा वंशी का नाद की यमुना का प्रवाह बंद होगा, यमुना गमना ना करें, यमुना जी का प्रवाह बंद हो, चंद्रमा भी चलना रुक गया, थकित हो गया, चंद्र गति मंद भई निरख छवि काम है,

लाडली जो वो सखी वैसे ही बंसी बजा रही, उनकी बंसी ध्वनि सुनकर वर मोर चकोर किशोर मरालन मंडली, कहीं मोर मंडली कहीं है हंस मंडली, सुख सारिका को पास पास घेरे हुए मानो मुनि व्रत धरे कपूर्ति को किला कीर, मानो मौन व्रत धारण करने वाले सब परम हंस विराजमान हो, ऐसे चकोर की भांति देखते हुए सब पक्षियों और अपने अधरों में बंशी बजा रहे। हमें तो देख के ठीक ऐसा अनुमान होता है जैसे नंद नंदन ही हो, वैसे किशोर उन्हार की, क्योंकि अखियां बड़ी सुख देनी पैनी कोर की, बिल्कुल नंद नंदन जैसी आंखें हैं वैसे ही बंसी और वैसा ही प्रेम। हमारी प्रार्थना है कि आप चल के खुद देख लो कैसी वो आपकी आराधना करते, समझ पाए सखी श्री वो आपके, वो हमारा परिचय, हमको लाडली जू का परिचय, हमारा लाडली जू को परिचय, ये काम ये गुरुदेव रूपी सहचरी आचार्य रूपी सहचरी करती है, वो एक है आपका, उनको हमारी तरफ आकर हमारे चित्त को लाडली जू की तरफ, इसीलिए रेमन रसकन संगविन रंचना उपजे, कहो कृपा उपजे किनराती। श्री जी से कहा कि हमारी प्रार्थना है आप चल के खुद देख लीजिए, जो सुख चाहो नैनन तो सुख दीजिए, चली प्रेपियो पी जीजिए, अगर आप चलेंगे ना तो उससे बहुत नेत्रों में सुख मिलेगा, क्योंकि आप प्रतिमा के जब आपको साक्षात देखेंगे तो कैसा लगेगा, और आप आपके विशेष प्रेम में मत वाली है, जब आप देखोगी तो आपको सुख मिलेगा और जब आपको वो देखेगी तो उनको सुख मिलेगा। चलो प्रिया जी, बड़ी कोमल चित लाडली, बहुत कोई है ही नहीं, कोई नहीं, प्रभु भी नहीं आप, इसीलिए तो पता नहीं कौन सा तत्व सी किशोरी जो है, किसी के परिचय का नहीं है, आतर लाल जो परिचय नहीं जान पाए, हमारे दुआ दिनंत बिहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, स्वामी जी महाराज श्री हरिदास जी कह रहे कि प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, तैसो भ्रम होत देख पहचान नहीं हो पाई, कैसे कोई जानेगा इस महा युगल सरकार प्रेमिकों की, आज तक पहचान नहीं हो पाई प्रिया प्रीतम में, आज तक दो आदिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई ना, प्रतिपल ये नए प्रेमी है, अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, उनको नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम ब्रशुभान किशोर, प्रतिपल नवीन नव किशोर। श्री जी इतनी कोमल चित्त है, बस उसी कोमल चित्त की वृत्ति को गुरु कृपा से समझ के ऐसे गए, भगवत प्राप्ति तो भी सस्ती थी, हमारी महारानी जी के दरबार से सुनो, भगवत प्राप्ति तो हमारे घर की जेब की बात है, ये केवल महारानी जी के ही बल पर है, किसी साधन बल पर ऐसा नहीं, अगर साधन बल पर सुनी के रंग में रंगे हुए वेदांत दर्शन से सुनो तो कांप जाओगे कि क्या किसे कहते हैं मोक्ष, किसे कहते हैं अखंडानंद, कांप जाओगे भैया हम नहीं चल पाएंगे, और यहां ऐसे लगे चलने की बात क्या पक्का, क्योंकि जैसी हरिवंश परम कोमल चित, परम कोमल जीव ही ये कहा श्री जी को मान छोड़, कोई हमें इतना प्यार करता है, राधा राधा बोल श्री जी के अश्रु चल रहे, श्री जी के कैसे तुम्हें बताए कितना हो, अरे प्रेम मूर्ति है लाड, कोई राधा की सेवा कर रहा है, ये जो आप लोग

भोग लगाते, नाचते, आरती करते, निहाल हो गए महारानी जी के सामने। मैं किसी और की नहीं सुन रहा है, श्री जी देख रहे, एक एक पल देख रहे। मांच किशोरी के भयो, इतनी प्रेम में विवशता हुई कि पास में खड़ी सखियों ने संभाल लिया, गले का हार जैसे ऐसे सपशंक करती सखियां प्यारी। बहुत पलकन को जैसे अधिक पुतरिन सोमति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण ही लाडली पी किशोर सुकुमार। ये वृंदावन है, ये वृंदावन का प्रेम है। सखियों ने संभाला किस बात में, कोई राधा राधा कह रहा है, पूजन कर रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है। श्री जी कैसे, श्री जी

जन प्यारी जी के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं, जैसे मानो मानव ले मेरे को पुकार रहा है। परम कोमल चित लाड़ी परम मदन टेन के बाबा का जो चरित्र आता है, तो उन्होंने लाड़ली लाल के संग में आप भी कठोर हो, वो तो ऐसे ही बोल रहे थे। इतने वर्ष हो गए वृंदावन वास करते, आंखों से अंधा हो, पूरा जीवन हो गया आपके चरणों में, आज तक आप दीन पर दया नहीं आई, आपके दरवाजे में पड़ा राधा राधा पुकार रहा हूं। उनको क्या पता कि सामने युगल सरकार प्रतिपल रहते हैं। दीप जाग के कहा, बाबा ये तू कैसे कह रहे हो कि लाडली जो कठोर हो गई, तो उनका संग दोष चढ़ता है ना, लालजू कठोर हृदय के हैं इसलिए बड़ी कोमल। नहीं नहीं मैं कठोर ना है, लालजू का भेद ही खोल दिया, हम तो केवल दूर से रसा लालजी जो ऐसे बाकी नेत्र दिव्य ने देखा चरणों में। लाडली जी से कहा, पहला कार्य करो मेरे को अंधा करो और देखना, बस अब तुरंत हमारी आंखें हटाओ, बस यही रूप में पधारे श्री जी। बड़ी करुणामयी सरकार, देखो कोई मेरा नाम मेरी सेवा कर रहा है तो देखो, प्रेम चले भरी नैन मैन रस में, स्वामिनी जी के आंखों से अश्रु टपक रहा है और कुंज में जैसे मोती बिखेरते हुए जा रही हो, ऐसी चपल चली शीघ्रता ऐसा हम सबके प्रति उनका प्यार है, ऐसा आप न समझना। बस एक ही कमी है कि हम अपनी ममता को दिन मुड़ोगे आप इधर ना, आप खुद देख लेना कि श्री जी का प्यार क्या है, उन्हीं के प्यार से कहीं कुछ प्यार दिखाई दे तो उन्हीं के प्यार का अंश है। पुंज छवीली भामिनी सखी अंश भुजा गति हंस चली गजगामिनी, गजगामिनी प्रिया जो मत वाली चाल से पर अपनी भुजा पधराए हुए हंस गति से चल रही, आगे आगे सखियां लताएं निवारती जा रही, जो वृंदावन के पशु पक्षी दर्शन के लिए भाग के मनरत वाम करें इतमाम लिए छवि की छड़ी, फूलों की छड़ी लिए हुए हटाती जा रही, लताएं देख रही प्रिया जो आ रही तो ऐसे वो नृत्य करती कि सब लताएं अपने पुष्पों से श्री लाडली जू के चरणों में पावड़े बिछा रही। महारानी जू गजगामिनी जो पधार रही हंस गति से

सभी पहुंची उधर नूपुरों की ध्वनि सुन करके देखा हो जिनकी प्रतिमा वही स्वामी जी धारण नेत्र लाडली जी के नेत्र दो चकोर दो चंद्र दो सखियों ने देखा तो बाल तमाल बीच गुलाल उड़ा वही मधुपुंजन को जला वही नेत्रों को देखकर युगल सरकार की उस पर सखियां गुलाल उड़ा रही है। श्री लाडली जो देख के उनके इस अनुराग को ऐसे प्रेम में विथकित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। कीरत की बिटिया विथकी अखियन की पुतरी पुतरी भई पेख है। आप ध्यान से सुनिए, आप जो भोग लगाते हैं उसमें जो आप प्यार प्रकट करते हैं ना, प्यारी जुटी जो पा रहे निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ये बस अंदर से आप श्री जी की सेवा में हैं, बस ध्यान रखो। ये जो महल रचना करते हो, कुंज की पवाते हो, जो आरती करते हो, जो दुलार करते हो, ये लाडले देख रहे हैं। बस इनका देखना ही हमारे लिए काफी है।

लकी। श्री जी ने कहा कि सखी हमारे कोई बहुत पुण्य होंगे जिससे आदर्शन कुंजों में पाया। ऐसा प्रेम राधा नाम से, ऐसा प्रेम राधा रूप से, तुम्हारा नाम क्या है? कौन तिहारो नाम ते मेरो मन मोहोरी सखी सांवरी। क्या नाम है आपका, किस गांव से आई हो और मेरे इस मान सरोवर की कुंज में क्या कामना रखती हो? श्री लालजू महाराज सहचरी बप्पू है, उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा जू है। श्यामा जू मेरा नाम, और नंद गांव से आए हो आप, जानते हो नंद गांव? श्री जी ने कहा पर पूरे ब्रज में श्यामा जी तो मेरा ही नाम है। तो ये ऐसे ही है, इनमें पता ही नहीं, खुद को पता नहीं कि इनमें कौन श्यामा जी और कौन रंगी। श्यामा के रंग श्याम, जैसे दो शीशी में एक ही रंग भर दे, ऐसे ही दो देह केवल है, वही एक परम रस है। तो कभी प्रिया जू पुकारने लगती है, हा प्यारी जू, तो लालजू को लगता है तो हमारी बात बोल रहे हैं। अब प्रिया जू भाव में प्रीतम के हैं बुला रहे, हा प्रिया। कभी कभी लालजू कहते हे प्रीतम हे प्यार। सखिया ये नहीं समझ पाती कि लाडिलो एकांतिक प्रेम है। उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा, मैं नंदगांव की हूं और आपकी अनन्य भक्त हूं, आपकी अनन्य, बस इससे सब कुछ हो जाएगा। मान लीजिए बस एक ठसक ले आइए हमारी भोरी सखी के लिए, लाडली जी के लिए, मैं आपकी हूं बस। देखो ना महाप्रत्रयत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, मुझे कोई परवाह नहीं, नरक भेज दो या कहीं भी जन्म दे दो, बस महारानी जो आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में स्फुरित रहो। यत्र यत्र मम थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। क्या फर्क पड़ता है, यहां प्यारी जो वहां निकुंज, ये कहीं भी भेज दो, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा रहा को पड़ता है। मैं आपकी अनन्य भक्त हूं, अब सब कुछ छुप सकते हैं। चितवन वो अपनी पहचान बता ही देती है चितवन। जैसे श्री सेवक जी महाराज जब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए आए, तो बंचन महाप्रभु ने पहले आदेश कर दिया था जिस दिन भंडारा लुटा देंगे राधा वल्लभ लाल का, ऐसे महाप्रेमी के आगमन पर। सेवक जी को लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, श्री जी की सेवा की सौंध नहीं लुटानी चाहिए, तो छुप करके ऐसे वेश ढक करके वल्लभ लाल जी के नेत्र चंचल हो गए। महाप्रभु गोस्वामी श्री बनचंद जो सेवा में थे, उन्होंने कहा श्री जी के नेत्र चंचल हो गए, कोई ऐसा प्रेमी आ गया। तो नीचे जब देखा तुम ऐसे सेवक जी ही होंगे, जब निज जनों को भेजा कि आप दामोदर दास सेवक जी है, महाप्रभु आनंद नेत्र से पता चल जाता है। प्रेम उशासन लेत मिले दो प्रेम सो, मानहु श्याम चुनी सुबनी खचिहे मुसो।

आनंद को धुंधार रूप उपासक ऐसा प्रेम आओ हमारे हृदय से लोगो लाडली हमने अपने हृदय से अब हृदय से लगने पर थोड़ी छुपाया जा सकता है क्योंकि हृदय की गति प्रेमियों की अलग होती है। जैसे हृदय मशलता रहता है प्रतिपल कोई मशले ऐसे प्रेम की पीड़ा उत्पन्न होती रहती प्रेमियों और जब उनके हृदय मिलते हैं तो वही हृदय जानता लालजू का हृदय से लगाना और नेत्र में नेत्र मिलना सखियों से श्री जी ने कहा और कोई नहीं ये तो प्रीतम है ये प्रीतम ही हम समझ गए इतना तो अनन्य धर्म का पालन प्रीतम ही कर सकते।

ऋषि अनुष्टुप छंदः आदित्य हृदय भूमा देवता

0: महत्व देना शुरू कर देंगे। दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी के विचार।
1: आप में से कितने हैं जो अभी किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सब लोग आप किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इनका ये कहना है कि मार्केट में इतनी आप एक इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्यों एंटर कर रहे हो, जहां पर कि पहले तो एंट्रेंस को क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में अच्छी जगह पर जॉब मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि आने वाले टाइम में और मुश्किल होने वाला है। व्हाई आर यू डूइंग दैट? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। कोई है आप में से जो बोलना चाहेगा, जवाब देना चाहेगा?
2: रिस्क नहीं होता बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। तो रिस्क जहां पे आ जाते हैं ना, तो वो चीज उसमें भी काफी वो हट जाता है। सपोर्ट करते हैं, फिर हम सोचते हैं सब सपोर्ट ही करें तो ठीक ही होगा, यहाँ पे जा रहे हैं तो। हम
1: इन्होंने कहा कि हम एंट्रेंस के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर उस पार्ट पर कोई रिस्क नहीं होता है। क्या ये सच है झूठ है? कितने एग्री करते हैं इनकी बात? और बहुत रिस्क है क्योंकि लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से कुछ का होता है, ये बात हमको पता है। तो फिर क्यों इस पाथ को आप चुनते हो जब यहाँ पे रिस्क भी है और कोई श्योरिटी भी नहीं है? क्यों इस पाथ को चुनते हो? क्यों
3: सर, पैसे की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, तो जितना बिजनेस नॉर्मली स्टार्ट किया था उसे कई गुना ज्यादा पढ़ाई में लग जाता है।
1: कितना लग जाता होगा? आप में से कोई बताएगा जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है?
4: कोचिंग की फीस
1: 6-7 लाख होती है।
4: जी सर, फिर जी मैं सर 6-7 ले ले।
1: नहीं नहीं, 6-7 लाख थोड़ी होती होगी।
4: यस सर,
1: मुझे आइडिया नहीं है, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मतलब एवरेज फीस क्या होती है कोचिंग की एक साल की?
4: 2-3 लाख सर।
1: 2-3 लाख रुपए साल की? तो 6 लाख लगाने के बाद में होने की क्या पॉसिबिलिटी है और नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी है?
4: 99% है कि तो नहीं होगा सर।
1: 99% है कि नहीं होगा?
4: यस सर।
1: तो रिस्क तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, बहुत कर रहे हैं इनसे कि 99% है। या अगर ऑप्टिमिस्टिकली भी देखा जाए तो 90% है कि नहीं होगा, 10% है कि हो जाएगा। अगर हम सिर्फ उन्हीं की बात करें जो बच्चे सीरियस है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा जो कोचिंग ले रहा है वो सीरियस भी हो, पढ़ाई करे, एफर्ट भी पूरा कर रहे हैं और डिजर्व भी करते हैं, तब भी जो पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन होने की अच्छी जगह पर वो 10% है। 90% है कि नहीं होगा?
4: Yes, sir,
1: और जब नहीं होगा तो क्या होगा? व्हाट इज योर बैकअप प्लान?
4: प्राइवेट कॉलेज सर।
1: तो वहां पे कितना पैसा लगता है? 4 साल का नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है? 20 लाख रुपए। अच्छा, मेडिकल का तो 80-90 लाख है, बट अगर इंजीनियरिंग की भी बात करी जाए तो 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए तो लगा दिए अपने घर वालों का। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं हो, मेजोरिटी ऑफ यू। आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास से हैं? हाथ ऊपर करिए। मेरा मिडिल क्लास वाला सेशन देखा है आप लोगों ने? मिडिल क्लास मतलब अगर मैं सिंपल वे में पूछूं तो आप में से कितने हैं जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो साल की 12 लाख से ज्यादा है? आप हाथ ऊपर करो। इसको मैं दूसरी तरीके से पूछता हूँ, आप में से कितने हैं जिनके घर मतलब अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाथ ऊपर करो। इसका मतलब आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर आपके घर वालों को लोन लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पे ये निकल कर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं दे आर अनएम्प्लॉयबल, मतलब उनकी इतनी स्किल ही नहीं होती कि उनको एम्प्लॉय किया जा सके, यानी कि उनको वो काम मिल ही नहीं सकता जिस फील्ड से उन्होंने पढ़ाई करी है, या तो उनको अपनी फील्ड। तो 25 लाख की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे?
3: 9-10 years।
1: 25 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 25 लाख रुपए जोड़ना पड़ेगा।
3: Yes.
1: और जोड़ करके विद इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ेगा। नियर अबाउट मान करके चलते हैं, इन द बेस्ट केस सिनेरियो आपको 20 साल लगेंगे 25 लाख रुपए का जो लोन है उसको चुकाने के लिए या अपने घर वालों को वापस करने के लिए, मतलब चीज करोगे तो रिस्क मेरे हिसाब से कम तो नहीं है। और ये सिनेरियो है कि अगर आपकी जॉब लग गई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम नहीं है हमारी कंट्री में, ये भी हो सकता है कि जॉब ना। जेन्युइन क्वेश्चन।
5: 25-30 लाख देने के लिए भी पेरेंट्स ही मोटिवेट करता है, उनकी ही जिद होती है कि हमें ये करना चाहिए। वही कहते हैं यूपीएससी निकालो, वही कहते हैं नीट निकालो, वही आईआईटी जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। उनकी ही जिद होती है कि हम चाहेंगे तो वो हम ही है करोड़ों में से एक। तो इट्स लाइक हमारी विश तब भी नहीं होती है।
1: ये और ज्यादा गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार को ये होता कि आपके अंदर से होता कि मुझे एंट्रेंस के लिए जाते तैयारी करने के लिए, तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपके पेरेंट्स ने फोर्स करके या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपको भेज दिया है। अब पॉसिबल आपका मन ही नहीं है वो काम करने का, करना पड़ रहा है। एक है कि आप खुद अपने अंदर से मोटिवेटेड हो, बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, तब फिर भी होने की पॉसिबिलिटी है, बशर्ते कि आपके अंदर वो। लेकिन अगर आपका खुद का ही मन नहीं है लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, उसकी वजह से आप जा रहे हो, तो वहां

0: करके क्या करोगे? बहाने ढूंढोगे क्लास बंक करने के, टाइम पास करने के तरीके ढूंढोगे रात को, या क्या करोगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में, आपकी हंसी से पता लग रहा है। घर वालों को तो ये लगता है कि मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या कर जाएगा, अगला सुंदर पिचाई यही है, हमारे घर में ही पैदा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, वो पैसा पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। बड़ा नुकसान किसका है, आपके पेरेंट्स का या आपका? क्यों, आपका क्यों है, जवाब दो।
1: सर हमारे लिए टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है पैसों से भी, क्योंकि अगर हमने टाइम भी वेस्ट कर दिया, बट हमारा जो टाइम चला गया वो टाइम अब नहीं आने वाला।
0: तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, दैट इज वन। टू, फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब जा करके आपको कोई भी जॉब होगी, कैसी भी जॉब होगी,
1: लेनी पड़ जाएगी,
0: करनी पड़। तो नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ पूरी लाइफ के लिए?
1: हमारे ही हुआ।
0: आपके पेरेंट्स का तो पैसों का नुकसान हुआ, आपकी तो लाइफ ही खराब हो गई।
1: yes.
0: तो अब बताओ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, लगाओ दिमाग। और अभी तो मैंने AI का एजुकेशन के ऊपर क्या असर आने वाला है और जॉब मार्केट पे क्या असर आने वाला है उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी।
2: सर इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, मुझे जो लगता है हर जगह आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं खुद बताऊं तो मैं 10 ईयर्स जब था 10 साल का तब मैं यूथ स्पोर्ट्स भी खेला, फिर मैं एक सर प्रोफेशनल लेवल अंडर 16 क्रिकेट करियर भी चूज किया था मैंने, वहाँ पर सर ड्यू टू फिजिकल इश्यूज वहाँ पर मैं नहीं कर पाया। बाकी सर अब मैं आया हूँ इस डिजिटल मार्केटिंग के एरा में, यहाँ पर सर टीम बिल्ड कर लिया जिससे कि मेनली मेरा 52-1 लाख रुपीज महीने का जनरेट होता है।
0: अभी आपकी एज कितनी है?
2: 15.5 ऑलमोस्ट लाइक 16 राउंड फिगर।
0: 16 साल?
2: यस सर।
0: तो आपके घर वाले खुश है?
2: साल का लड़का घर में सर 1 लाख रुपए अगर महीने का दे रहा है तो खुश तो होंगे।
0: लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है, प्लीज डोंट माइंड इट, कि अभी ये जो क्विक आपको सक्सेस मिली है ना, इसको दिमाग में मत चढ़ने देना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये मत समझने लग जाना कि मैं 50,000 रुपए 1 लाख रुपए महीने का कमा, आज आप कमा रहे हो कल कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ऑलवेज कीप योर फीट ऑन ग्राउंड एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। जो आप कर रहे हो वो सही है।
2: सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मैंने टारगेट, तो वो मैंने एक बार दो बार टारगेट को अचीव कर लिया, बट सर जब मैं नेक्स्ट अब टारगेट को अपना बड़ा करता हूँ, जब उसको इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा, तो सर वो कंफर्ट जोन वाली फीलिंग आने लगती है, मन में ये होता है कि यार पहले भी तो किया है अब कर सकता हूँ। सर
0: आप कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहाँ पे बाकी लोग उल्टी कर देंगे, उनके मुंह से झाग निकलने लग जाए, क्या बोल रहे हो आप, ये बेचारे अभी अपना पता नहीं कितने साल कितनी तैयारी करने वाले हैं, उसके बाद जाकर के कोई पैकेज लगे, मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। सर सर कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं ना 2 लाख रुपए अचीव कर जाऊं। बस भाई बस, इतना लालच नहीं करते, बहुत है अभी इस एज के हिसाब से, आगे जैसे से एज बढ़ेगी अपने आप ही रास्ते खुलेंगे। ये जो टेम्पररी सक्सेस है इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, गड़बड़ हो जाएगी। तो एक सोल्यूशन हमको दिखा है यहाँ पर, अभी सोल्यूशन कितना जेन्युइन है कितना नहीं है I can't comment on that, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं। With confidence and with my understanding of the digital world, कि ये possible तो है। इनके साथ ये हो रहा है नहीं हो रहा है, I'm not sure, but ये possible तो है।
1: मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क के बारे में जो भी ट्राई करना चाहते कि चलो हम भी चलते, इतना अच्छा पैसा है, जाते हैं वो कुछ पैसे लेते हैं हमसे वही 1-2 हजार कि हाँ हम आपको सिखाएंगे ये करेंगे वो, फिर हमें वो 3-4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और उसमें ना तो वो ना पूरे माइंड को हमारे इधर से उधर कर देते हैं, हमें बहुत सारा पैसा दिखाते हैं कि इतना पैसा है, क्या करोगे बताओ, बंगला खरीदोगे क्या खरीदोगे, जबकि खुद उनके पास कुछ नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा एक मोटर
0: पैसों से खरीदी होती है।
1: हाँ, और कहते हैं कि देखो मैंने ये टारगेट बनाया, मैंने ये अचीव करा, आप क्यों नहीं कर सकते हो, बस 1 साल देख के देखो, ये करके देखो, ऐसे करते हैं। और एक बार जब इंसान इस चीज में जाता है, फ्रॉड है।
0: आपने कभी ऐसा ट्राई किया?
1: हाँ मैंने किया है।
0: आपने कितने पैसे दिए थे?
1: मैंने दिए थे 500 रुपए, उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग होगी सब वापस हो जाएगा अगर ये सब हुआ तो, मैंने कहा चलो सही है, कौन सा ज्यादा ही लग रहे हैं। फिर उन्होंने 4th डे बताया है, फिर आप एक लेवल पे आओगे, उसके बाद आपको लोगों को पकड़ने, अब लोग कहाँ से पकड़े वो भी सिखा रहे हैं कि अपने दोस्तों को कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करो। मैंने कहा लोगों को तो मैसेज करेंगे, अब कौन कैसा हमें क्या पता, फिर उनसे रिलेशन बनाओ और उनको उसमें घुसाओ।
0: ये जो इस तरह के कोर्सेज कराते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, उसमें से 100 में से 99 फ्रॉड है। इस बात को लिख के कि पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता है, चैलेंज ये है कि जेन्युइन कौन है और फ्रॉड कौन है। पहले तो एक बात को मेरी अच्छे से समझ लो कि जो आने वाले 10 साल हैं उसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो जहां तक आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं या आप खुद हो, जहां तक नहीं देख पा रहे हैं। एआई की दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन, और इतनी तेजी से हो रहा है, इतनी तेजी से हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब्स जो आज की डेट में है वो फ्यूचर में नहीं रहेगी। इस बात को समझ लो अगर समझ सकते हो तो। अब मैं बताता हूं, अगर मैं आप लोगों की जगह हूं तो मैं क्या करूंगा। नंबर वन, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना आप लोगों का, ये सबसे प्रेशियस है पूरी लाइफ में। अभी आपका दिमाग खुला हुआ है, आप कुछ भी नया बड़ी जल्दी सीख, आपके लिए कुछ भी नया सीखना, या नया सीखना तो बहुत दूर की बात है, नए आइडियाज को एंटरटेन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो जाकर के अपने पेरेंट्स को देख लो, तुमसे जाकर के किसी भी नई चीज के बारे में बात करो, वो एकदम से घर उगाएंगे, नहीं नहीं ये सब बेकार होता है, बिना समझे। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, कितने मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, डोंट वेस्ट इट। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये डिग्री लूंगा या लूंगी, उसके बाद में मेरी यहां पर जॉब लग जाएगी, उसके बाद में लाइफ सेट है, तो इस गलत फहमी से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। आने वाले टाइम में जगह नहीं बचने वाली है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है। कौन होंगे वो लोग? जो मीडियोकर है, इन द सेंस कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ साथ में, कि 5-10 साल पहले बस कॉलेज जाते हैं, लाइफ सेट है। ये जिनकी लाइफ सेट है ना, उनकी लाइफ ऐसी हिलने वाली है कि उन्हें खुद भी नहीं समझ आएगा कि हुआ क्या है। कितने मेरी इस बात को मानते हैं कि अगर आप अपने काम के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए चैट जीपीटी सिर्फ इसको आप यूज करते हैं, तो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। तो जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो 10 गुना से, तो 10 लोगों का काम एक इंसान कर सकता है, और वहां पर 1 लाख लोग काम करते हैं और वो काम 10,000 लोग कर सकते हैं, तो मैं बाकी 90,000 का क्या करूंगा? निकाल दूंगा, तो 90,000 लोगों का क्या होगा? या तो अपनी लाइन को चेंज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं देखो, मेरी इस बात को ना गांठ बांध लो, आने वाले टाइम में मीडियोक्रिटी नहीं चलने वाली है, मशीन्स का जमाना आने वाला है, और जिसको मशीन्स को यूज करना आता होगा उसका जो आउटपुट है बहुत ज्यादा होगा, और वो इंसान कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो, अगर बिजनेस करते हैं तब भी अगर आपको मशीन्स को यूज करना आता है तो आपके पास में एक एज होगा इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, सीखना ही पड़ेगा। तो अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, अपने टाइम को कहां यूटिलाइज करूंगा? जो भी कुछ नया हो रहा है एआई की दुनिया में, वो सब कुछ सीखने के लिए अपडेटेड रखूंगा। डेली कुछ नया आ रहा है, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं एग्जिस्टिंग जो एआई एप्लीकेशंस है उनमें, और डेली नए नए एप्स आ रही हैं, तो यू नीड टू बी अपडेटेड ना पड़ेगा कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ भी नया डिसरप्शन आ रहा है मार्केट के अंदर, आप फटाफट से उसको सीख जाओ और फटाफट से अपने आप को अडेप्ट कर लो उसके अकॉर्डिंग। जरूरत पड़े तो आप अपने आप को बदल दो, अगर ये कर सकते हो, यानी कि अगर आप इन टूल्स को यूज करना जानते हो तो आप सर्वाइव करोगे फ्यूचर में, अगर नहीं जानते हो तो दिक्कत आने वाली है। तो अपनी जो स्पीड है, क्या नया हो रहा है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सीखो, टाइम वेस्ट मत करो फालतू का कंटेंट देखने में, इधर उधर टाइम पास करने में। आप में से कोई ऐसा है जो ये बता सके टॉप 10 एआई टूल? यू हैव नो आइडिया, नो क्लू। तो ये आइदर और के चक्कर से बाहर निकल आओ कि सर हम पढ़ाई करें या बिजनेस करें, दोनों करना पड़ेगा। पढ़ाई इसलिए करनी पड़ेगी ताकि एक बेसिक आ जाएगा, कल को जॉब मार्केट में जाओगे तो एटलीस्ट कुछ तो हो दिखाने के लिए, अगर आपको जॉब ही करनी है तो। लेकिन साथ साथ में बिजनेस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है, कुछ क्रिएट करना। क्योंकि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, यानी पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको बोल दिया जाए सर्वाइव करो, क्या कर सकते हो सर्वाइव? अगर कर सकते हो तो कह सकते हैं कि हाँ, अब आप अंदर से एक एंटरप्रेन्योर, आप एक क्रिएटर हो। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब क्रिएटर्स, आई एम सेइंग समवन हु कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक लाइव्स बेटर ऑफ अदर पीपल इन सम वे, जिसके लिए वो लोग पैसा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपकी एज में हूं, यानी मेरी एज है मान लो 18 साल, अब मेरे आगे एक चैलेंज है, मैं क्या करूं? जॉब की भी तैयारी करनी है, तो क्या उसको छोड़ दूं? अब वो मेरी अपनी कॉल है कि मैं छोड़ने के लिए, नंबर वन। बट एक बात पक्की है कि मैं साथ साथ में कुछ ना कुछ तो और करूंगा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गया। जो एजुकेशन की पूरी जो डेफिनेशन है वो चेंज होने वाली आने वाले टाइम में। क्या है, अपने माइंड के अंदर भर दिया है और कुछ कर रहे हो, आने वाले टाइम में वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कौन वो लोग होंगे जो बचेंगे आने वाले टाइम में, और कौन वो लोग हैं जो नहीं। कैन कनेक्ट दी डॉट्स, यानी अलग अलग चीजों को देख करके आप किसी तरीके से कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जहां से आप पैसा कमा सकते हो और सर्वाइव कर सकते हो फाइनेंशियली, इंडिपेंडेंटली, अपने बेस पर, तो फ्यूचर आपके लिए इस डिग्री के बेस पे सर्वाइव कर सकता हूं। तो आने वाले टाइम में उस डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी, इस स्किल की वैल्यू होगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यानी कि कुछ अलग अलग हो, उसको जोड़ दिया जाए और कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि जहां से पैसा कमाया जाए। हर दूसरा इंसान यूट्यूबर बनने के बारे में सोच रहा है, तो यूट्यूब में जो सबसे हाई पेइंग जो सेक्टर है वो है BFSI सेक्टर, यानी बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस। तो मैं क्या करूंगा, जहां पर मैं ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर कुछ वीडियोस बना सकूं, और पहले मैं YouTube पे जाकर के देखूंगा कि कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जिसके ऊपर बहुत व्यूज आ रहे हैं या जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है गूगल पे और YouTube पे। पॉसिबिलिटी की YouTube पे भी ज्यादा होगी। अब मेरी इस थॉट प्रोसेस को समझना, आइडिया को मत पकड़ना, गड़बड़ हो जाएगी। आइडिया को पकड़ोगे फिर वही बंद दिमाग की तरह कॉपी करने लग जाओगे, लेकिन अगर थॉट प्रोसेस को समझोगे तो कुछ भी कर जाओगे। एक वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ pictory.ai, जहां पे आप टेक्स्ट इनपुट करोगे और वो उसको वीडियोस में कन्वर्ट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर। ये काम करने में यूजुअली 2 से 4 दिन लगते हैं। आ है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कह सकते हैं कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप एक क्रिएटर हो, आप क्रिएटिव हो। तो एक दिन में कितनी वीडियोस बन सकती हैं? बहुत सारी ना होगा। कौन सी वीडियोस ऐसी हैं जिसके वायरल होने के चांसेस हैं? तो पहले मैं ये स्टडी करूंगा लोग सर्च क्या कर रहे हैं गूगल पे और यूट्यूब पे। फिर वो स्टडी करके, फॉर एग्जांपल, इफ पीपल आर सर्चिंग फॉर व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, तो क्या हो अगर इस तरह की, अब मुझे उसके लिए कॉन्टेंट चाहिएगा। कॉन्टेंट राइटिंग स्किल्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मान लो मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी पे जा करके लिख दूंगा What is the mutual fund? What are the benefits of it? पूरा का पूरा मेरे को टेक्स्ट दे देगा। उस टेक्स्ट को मैं रन करूंगा पायरेसी के लिए कि कहीं किसी तरीके से किसी के राइट्स वॉयलेट तो नहीं हो रहे हैं। ऐसी भी कुछ वेबसाइट्स हैं। तो जब मैंने चेक कर लिया और मुझे ये श्योरिटी आ गई कि किसी के राइट्स वॉयलेट नहीं हो, स्टोरी में वो एक पूरी की पूरी वीडियो जनरेट कर देगा कुछ सेकेंड्स के अंदर, जिसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन यूट्यूब आप क्या कर रहा है वो भी मैंने पढ़ा कि वो जो AI वॉइसेस है, जैसे ही YouTube पकड़ लेता है कि इसमें AI की वॉइस है, कर देता है या इतना तेजी से प्रमोट नहीं करता है। तो मुझे इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, YouTube म्यूजिक लाइब्रेरी में जा करके जो YouTube का कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है वो निकाल करके उसके बैकग्राउंड में उसको लगा दूंगा। अलग अलग टूल्स को यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो बहुत ही कमाल का है और जिसकी मार्केट में नीड है। अब अगर मैं खुद बैठ करके वीडियोस बनाऊं तो पहले तो मुझे वो स्किल्स एक्वायर करने में कई महीने लगेंगे, कई साल लगाने में 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लग जाएंगे। अब यहां पर एक दिन में मैं 10 वीडियोस जनरेट कर सकता हूं, यानी यूट्यूब पर मैं 10 अलग अलग चैनल्स ओपन कर सकता हूं। और अगर मैं कंसिस्टेंटली इस काम को पार्ट टाइम बेसिस पे, ये नहीं कि दो चार पांच दिन किया, दस दिन किया, रिजल्ट नहीं आया तो उसको छोड़ दिया। पढ़ाई लिखाई में ऐसे करते हो क्या कि कहीं गए किसी कॉलेज में, दो चार दिन को समझ नहीं आया, बेकार है, छोड़ दो? ऐसे नहीं करते ना। चार साल पता है ना कि वहां पे लगाना है। तो एक साल तक अगर मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने 10 चैनल्स पे, तो एक साल में मैंने कितनी वीडियो अपलोड कर दी? 365 × 10, यानी कि 3650 वीडियोस। उसको करने में टाइम का डेली, इतना तो आप टाइम कहां खराब कर देते हो, आपको खुद भी पता नहीं होगा। बट इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, या तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिल गई तो बहुत बढ़िया है, तो ज्यादा खुश नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है कि मैं महीने का 50,000 कमाऊं। यूट्यूब एक नई पॉलिसी ले आए और कहे कि ये जो एआई जनरेटेड वीडियोस है इसको हम डीमोनेटाइज कर देंगे, तो कहां गया आपको वो लाख रुपए महीना? गायब हो गया ना। तो एक्साइटेड नहीं होना है, उस पैसे को जोड़ना है और उसको यूज करना है और मल्टी, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि यहां से पैसा आएगा, तो उस पैसे को उड़ाना नहीं है, एक्साइटेड नहीं होना है, घर वालों को ये नहीं बोलना है कि अब मैं लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं, मेरे को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। छोड़ना है और दिमाग लगाना है कि उसमें रिस्क क्या है। कल को अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे, वैसा होता है तो क्या करोगे, वो होता है तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूट्यूब का एल्गोरिथम पकड़ लेता है एआई जितने हो कि वीडियो वहां से बना ली, कॉन्टेंट चैट जीपीटी से मिल गया, पायरेसी चेक कहीं और से हो गया, कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए कैसी नहीं वो आपने और जो सॉफ्टवेयर है वहां से पता कर लिया, सर्च वॉल्यूम किसका है किसका नहीं है, प्लस साउंड के लिए आपने क्या किया, 10 मिनट का एक ऑडियो स्पीकर में वो सीख जाएगा कि आपकी साउंड क्या है। तो अगर आपने ये कर लिया तो अब वो आपकी साउंड है, म्यूजिक यूट्यूब का है, कॉन्टेंट रॉयल्टी फ्री है, अब इन वीडियोज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर इस तरह के लिए जगह है, इसको एक्चुअल में स्किल्स बोलते हैं कि आपने कुछ ऐसी स्किल्स एक्वायर कर ली जो वैल्यूएबल है। हो सकता है आज इमीडिएटली नहीं है लेकिन फ्यूचर में आप कहीं जाओ और वो आपसे पूछे कि अच्छा आप में से कौन है जिसको ये काम, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मतलब आने वाले टाइम में वो लोग सरवाइव करेंगे दुनिया में जो कुछ भी कर सकते हैं, जो सिर्फ एक काम कर सकता है, वो पास्ट में रेलेवेंट थे, फ्यूचर में नहीं होंगे, आज नहीं तो कल मशीन कर लेगी, फिर आप क्या करोगे? लेकिन वो इंसान जो कुछ भी कर सकता है उसकी वैल्यू क्या होगी? आई होप आज के सेशन से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, कुछ नया समझ में आया है, कुछ। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के
2: तारा देखो आप मेरी लड़ी है। अरे
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो

0: IQ हमें बताता है, लेकिन EQ बताता है हम कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, कब रिएक्ट करना है, कब रिस्पॉन्ड करना है और कब चुप रहना है। ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आरजे पर टॉक अबाउट इट सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। और आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस पर, क्यों आज के फास्ट पेस्ड और स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में ये एक स्किल नहीं जरूरत बन चुकी है। वेलकम मैम।
1: ओम शांति। थैंक यू।
0: ओके ज्योति जी, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअली क्या होती है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है। इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसा कि नाम में ही है, इंटेलिजेंस माना समझ, जो भावनाओं की समझ रखे उसे ही कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस।
0: सही बात है।
1: आज हम सब इंटेलिजेंट बहुत हैं, हर चीज की नॉलेज है, उससे भी बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंतरिक्ष तक जा रहे हैं, पाताल तक पहुंच रहे हैं, मतलब धरती के गर्भ तक हम पहुंच रहे हैं। लेकिन आज सारी दुनिया में हम बाहर तक जाते जाते कहीं ना कहीं हम अपने भीतर वो खोजना भूल गए हैं।
0: सही बात है।
1: हम अपने आप की भावनाओं को समझना भूल गए हैं, एक दूसरे की भावनाओं से हम दूर हो गए हैं। मेरे आस पास में मेरे प्रति लोगों की या उनके प्रति मेरी भावना कैसी है, इसको आज हम शायद नहीं समझ पा रहे हैं।
0: सही बात है।
1: इसीलिए आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है। तो इंटेलिजेंस का नाम दिया गया इमोशनल इंटेलिजेंस, माना जिसने दूसरों की भावनाओं को समझना सीख लिया वो सबसे ज्यादा अपने आप में ही बहुत बुद्धिमान कहलाता है। आज माइंडेड बहुत है, बहुत सारी मशीनों को मैनेज कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि मटेरियल मैनेज हो रहा है, मशीन मैनेज हो रही है, मनी मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन जो हमारी इमोशन, हमारा जो मन है, अर्थात मन को अगर हिंदी करें तो मन की भी बात करें तो मन को हम नहीं समझ पा रहे हैं, मन की भावनाओं को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज जो भावनाओं को समझने की, जब मन की भावनाओं को जो समझना सीख लेता है, आप देखेंगे अगर आपसे पूछे कि आपको इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा अच्छे से आपको कौन जानता है, शायद अगर मदर की बात करें तो दुनियावी ज्ञान उनके पास शायद ना हो,
0: बिल्कुल
1: बहुत सारी किताबी ज्ञान ना हो, लेकिन उनके पास कोई तो ऐसा ज्ञान है जो रहते हुए भी आपने उनका नाम लिया, क्योंकि उनके पास है इमोशनल इंटेलिजेंस।
0: सही बात।
1: क्योंकि वो आपकी भावनाओं को समझती है, आपके भावों को समझती है, आपका चेहरा उदास है उसको वो समझ रहे हैं, अगर आप खुशी दिखा रहे हैं तो भी वो पकड़ लेते हैं कि आज झूठी खुशी दिखाई जा रही
0: है। सही बात है।
1: तो वो क्या है? वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सबसे ज्यादा आज जीवन में जरूरत है हमारी, आज बहुत बहुत कमी होती जा रही है।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ मौजूद हैं
1: जी। एक होता है कि वो करियर वाइज या एकेडमिक वाइज बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल सोचता है, बट उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। तो क्या आज के टाइम में इमोशनली इंटेलिजेंट है या फिर एकेडमिक्स में बेटर होना?
2: जी बिल्कुल, अभी आप स्कूल में हैं तो एकेडमिकली बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल।
2: लेकिन अगर आप हायर लेवल पर जाते हैं जहाँ जॉब प्रोफाइल्स देखी जाती हैं, आपका एक्सपीरियंस देखा, आज की डेट का जो देखते हैं वो इमोशनल जो बैलेंस्ड है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है।
1: बिल्कुल सही बात।
2: उसके एग्जाम्स भी होते हैं, वो प्रैक्टिकली भी उनका देखते हैं, नोटिस किया जाता है कि कैसे आप अपने सारा सिस्टम मेनली मैन पावर को डील कर पाना आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है।
1: सही बात।
2: और वो इमोशनल इंटेलिजेंट जो होगा वही डील कर पाएगा। एकेडमिकली तो आप साउंड बस एक लेवल पे एंट्री के लिए करते हैं, रिलेशनशिप में भी वही मैटर करता है, दुनिया में भी वही मैटर करता है, और आपकी आपका एंटरप्रेन्योरशिप है या आप कहीं जॉब कर रहे हैं उसमें भी यही चीज जो है

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ मौजूद हैं बीके ज्योति जी। और क्या अपने इमोशन समझना ज्यादा मुश्किल है या फिर दूसरों के?
1: इसका जवाब तो हर कोई अपने हिसाब से दे सकता है कि आज खुद को ही हम समझ नहीं पा रहे।
0: बिल्कुल,
1: हमारा मन क्या सोच रहा है ये नहीं पता।
0: सही बात है।
1: और इसके लिए कि हमारे मन में दो बातें हैं, ये क्या शोर कर रहा है उसका भी पता नहीं है।
0: सही बात है।
1: तो उस शोर को समझ नहीं पा रहे हैं, अंदर में कितने थॉट्स चल रहे हैं इस चीज का भी हम समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी आज की डेट में है खुद के इमोशंस को समझना।
0: सही बात।
1: हम दूसरों की भावनाओं को फटाफट हम भावों को समझ लेते हैं और वही दूसरे ने जैसा हमें सिखाया। आज हम लोगों के हिसाब से चल रहे हैं, एक हमारी लाइफ ऐसी बन गई है कि हम बिना किसी के सजेशन के अपने आप के सजेशन। फैक्ट, अगर हम एक ड्रेस भी लेने जा रहे हैं और हमें पहननी है, खुद को पहननी है, तब भी हम किसी न किसी को साथ लेके जाएंगे कि आप थोड़ा सा बताओ,
0: एडवाइस चाहिए।
1: और फिर उसके बाद भी अगर हमने उसको अप्रिशिएट नहीं किया तो भी हम डाउटफुल हो जाए।
0: जी बिल्कुल।
1: चाहे वो मेरे लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, जैसा भी है, लेकिन हमें दूसरे की ओपिनियन
0: डिपेंड है।
1: तो सबसे पहले जरूरी है और यही सबसे ज्यादा आज मुश्किल हो गया।
0: जी बिल्कुल।
1: और उसके पीछे कारण क्या है, मुश्किल क्यों हो गया है, क्योंकि हम अपने लिए टाइम निकालते ही नहीं।
0: सही बात है।
1: अगर जब तक हम अपने आप को समझने के लिए अपने आप ही हम तब हैं जब चारों तरफ शोर है और हमारे काम का लोड बढ़ गया है, और सो हम तब रहे हैं जब हमारी आंखें बिल्कुल मोबाइल देखते देखते थक करके

0: बिल्कुल बोझिल हो जाती है और फिर
1: सही बात।
0: और वो भी हम कहाँ देख रहे हैं, तो बाहर की दुनिया में अपने इमोशंस तो देख ही नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम, मुश्किल कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, लेकिन थोड़ा सा टाइम बस हमें अपने साथ स्पेंड करने के लिए चाहिए, अपने आप को एटलीस्ट जान सके।
1: सही बात।
0: हमें क्या पसंद है, हम क्या चाहते हैं, हमारे भाव दूसरों के प्रति कैसे हैं। हम कई बार कह भी देते हैं मेरे भाव सबके प्रति बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें डिपेंडेंसी हमारी उसमें जरूर छुपी हुई होती है। तो भावनाओं को पहले खुद के समझे तो हम दूसरों की भावनाओं को भी बहुत ईजिली समझ सकते।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल

0: Let's just talk about it. और मेरे साथ मौजूद हैं बी के ज्योति जी और बी के प्रिया जी.
1: प्रिया जी, किसी भी रिलेशनशिप में हमने ये सुना ही होगा कि वो उसमें इमोशनली इंटेलिजेंस है ही नहीं, वो सोचता ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं करता. तो एक रिलेशनशिप के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस कितने इम्पोर्टेंट है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी?
2: जितनी एक रिलेशनशिप में बातचीत जरूरी बैलेंस्ड रहे वो बहुत जरूरी हो गया है, होना ही चाहिए अगर एक रिलेशनशिप को हम बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशन है.
1: जी.
2: एक बच्चा अपने माँ के साथ भी डील करता है तो माँ बच्चे से ज्यादा इमोशनली मैच्योर साल तक पालती है.
1: सही बात है.
2: और जब बच्चा उस लेवल पर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो उतना इमोशनली मैच्योर नहीं है तो फिर उसके बाद चीजें बिगड़ने लगती है.
1: जी.
2: आप कभी इस बात को नोटिस करिएगा, जब तक माँ को ही सुन रहा था, क्योंकि वो मैच्योर एक लेवल पर आ जाते हैं, एज नहीं लेकिन लेवल एक आ जाता है यंग का, और अब मैं अपनी मैच्योरिटी दिखा रहा हूँ लेकिन मैं मैच्योर हूँ नहीं, तब क्लैशेस शुरू होती
1: है.
2: तो सेम इन ईच एंड एवरी रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ तो रहूंगा नहीं.
1: जी, बिल्कुल.
2: और करूंगा तो अगर मेरे वर्ड्स में वो चीजें नहीं है जो हाँ मेरी मैच्योरिटी शो करती हो, जैसे हर बात में मैं ब्लेम गेम करता हूँ, कोई अगर लेट आ रहा है तो मैं ऑलवेज ही ब्लेम कर रहा हूँ कि हो सकता है मेरे पास जो चीजें हैं वो उनसे बेहतर हैं, और वो जिस सिचुएशन से निकल कर आ रहे या आती है या आता है जो भी, वो वर्स्ट है, फिर भी वो मैनेज कर रहे हैं कैसे आने के लिए मिलिए, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ. एक बार दो बार लेट हुआ तो अब मैंने ब्लेम डालना ही शुरू कर दिया, ऑलवेज लेट एंड यू वेस्ट माई टाइम. ठीक है, तो ये चीजें हमें समझनी होगी. फिर दूसरा, ब्लेम गेम में भी हम आप अपनी बात जो है वो हम प्यार से नहीं रखते, हम चिल्ला कर रहे हैं, हमारा वॉल्यूम राइज होने लगता है, जबकि जितना हम आगे बढ़ रहे हैं किसी भी रिश्ते में तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए.
1: जी.
2: लेकिन आज की डेट में अंडरस्टैंडिंग खत्म होती जा रही, बढ़ता जा रहा है, यानी हम अंदर की बातों को नहीं समझना चाहते, हम ऊपर जो दिख रहा है उस बेस पे चलने लगते हैं. आपने ऐसे बोला था, ऐसे रिएक्ट किया था, ये कहा था, ऐसे कहा था, अंदर कितनी उसको चोट थी जिस वजह से उसने ऐसा बोला, क्योंकि हम अपनी चोट से घायल हैं और अपनी चोट को प्रेफरेंस दे रहे हैं. हम ये चाहते कि मेरी हर्टनेस को आप देखो कि मेरे को चोट लगी है, अपनी मत दिखा. हाँ, सामने वाले ने अगर मेरी चोट देख ली फिर अच्छा ठीक है तुम भी अपनी दिखा लो दादा है. तो अगर ये चीज हम रिलेशनशिप में रखेंगे तो फिर तो चोट चोट चोट चोट, और फिर आप जानते ही है फिर घाव बढ़ता ही चला जाता है, फिर उसे नासूर कहा जाता है.
1: बिल्कुल सही बात.
2: और जहाँ नासूर हो गया तो फिर कहीं सुर और ताल मिलने वाले. अपनी इमोशनली बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है, हम एक दूसरे को समझें, चीजों को समझें, और जहाँ हम आगे बढ़ते हैं किसी भी रिश्ते में तो बाहर की चीजों को समझना कम करें, अंदर की चीजों को समझना हम ज्यादा. आना है तो सिर्फ वो अकेला व्यक्ति नहीं है जो मेरी लाइफ में आने वाला है, उसके साथ 100 चीजें जुड़ी हुई हैं जो मेरी लाइफ में आने वाली हैं. तो अगर आप 100 को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते तो उस एक को समझने में आपसे भूल रहा है. तो इसीलिए चीजों को और बेहतरीन समझने के लिए इमोशनली मैच्योर होना आज की डेट में बहुत जरूरी है.
1: सही बात है.
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे. शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट.

0: जॉनी जॉनी,
1: यस पापा,
0: बाइक चलाना है?
1: यस पापा,
0: हेलमेट हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे?
1: नो पापा,
0: यू आर वेरी गुड बच्चा। हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बनाए दूरी, आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी।
2: 89.6 FM रेडियो महा

को चीट है रेडियो महारानी 89.6 FM की आवाज़। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक शो। मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: कहते हैं कि अगर सामने वाले पार्टनर को बोला जा रहा है कि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, आप इसको अडाप्ट करो या फिर सीखो, तो क्या इमोशनल नेचुरल ही आती है? आप दोनों का इस पे क्या कहना है?
2: नेचुरल की बात कही तो ये नेचुरल भी होती है और सीखी भी जाती है। तो
1: जी
2: वो चीज़ें हैं, किसी किसी के अंदर जन्मजात ही फीचर डेवलप दूसरे के पास।
1: जी
2: हर एक को आप घर में भी देखेंगे, कुछ लोग होते हैं जो बहुत भावनात्मक होते हैं और वो सबकी भावनाओं को समझ करके ही काम करते हैं।
1: जी
2: कई बार ऐसे लोगों को लोग पागल कह देते हैं कि वो सेंसिटिव नेचर होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सीखना भी पड़ता है और कई बार परिस्थितियां हमें सिखा देती हैं। आप अगर देखेंगे तो कई बार कोई व्यक्ति अपनी लाइफ था है, लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, बस उसके सामने सिचुएशंस हार्ड आती जाती है, तो उसका बिहेवियर उस समय के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। वो व्यक्ति एकदम पते है कि आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, अभी आप ऐसे कैसे हो गए?
1: सही बात है।
2: और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सेंसिटिव व्यक्ति एकदम से हार्डनेस पे आ जाता है और वो किसी की इमोशंस की परवाह नहीं करता है। वो सीखी भी जाती है और जन्मजात भी होती है, लेकिन हमें ये चीज अगर कहीं हमारे पास नहीं है ये फीचर्स, तो हम सीख सकते हैं। हम परिस्थितियों से भी हमें सीखते हैं और हम सबसे पहली गुरु माँ होती है। वो बहुत अच्छी इस चीज में बच्चे को कैसा बनाना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है।
1: सही बात है।
2: उसकी परवरिश पे डिपेंड करता है। जैसे कोई बच्चा गिरता है तो एक ही अच्छा बेटा कुछ नहीं हुआ है, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो।
1: सही बात है।
2: तो उसके माइंड की अब ग्रोथ कैसी हो रही है, उसमें स्ट्रांगनेस आ रही है। एक मदर है गिरने पे बच्चे को दूसरे को ठोकती है कि अच्छा इससे तुझे गिराया है, इससे तुझे मारे, कि अपनी हर गलती का ब्लेम वो दूसरों पे डालता है, उसकी वैसे ही परवरिश चल रही है।
1: जी
2: एक मदर है जो वो कहती है कि देख के भी इग्नोर कर देती है कि ये खुद खड़ा होगा, तो उसको समझ आ जाती है कि मुझे इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो हर एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ये हमारे बचपन के परवरिश में कुछ जन्म जाते हैं, कुछ परवरिश है, कुछ हमारा माहौल हमें सिखा देता है। और अगर नहीं तो हम अपने कर सकते हैं, हमारे अंदर वो विल पावर है कि हम अपनी इमोशनल जो नहीं हम दूसरों के समझ पा रहे हैं वो थोड़ा सा मेडिटेशन करके, थोड़े अपने आप को जान करके हम दूसरों की भावनाओं की कदर करना सीख लेते हैं। तो ये
1: बिल्कुल सही बात है।
0: ये जैसा कि ज्योति जी ने कहा और ऐसे ही विचार एक साइकोलॉजिस्ट हैं डेनन कोलमैन, उन्होंने भी यही कहा है कि एक स्किल है जो समय के साथ साथ आपकी बढ़ती जा सकती है या ट्रेन की जा सकती है, और वो
1: जी
0: तो इसको सच में हमें बढ़ाने की आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें चलिए ठीक है दुनिया के सारे लोगों को हम साइड कर देते हैं बिकॉज मेरी किसी से अंडरस्टैंडिंग या मैचिंग नहीं हो रही है, ओके फाइन आई कैन लिव विदाउट, मैं अकेला घूम भी सकती हूँ, अकेले पका के खा भी सकती हूँ। आज की डेट में ऐसे बहुत से लोग होते जा रहे हैं, लेकिन स्टिल यू हैव टू हैव EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने इमोशंस को खुद नहीं डील कर पा रहे हैं तो भी जीना जो है वो दिक्कत में आ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए हम देखते भी हैं कि कितने यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, वो दुनिया से तो कट ही रहे थे लेकिन खुद से भी कट गए। तो खुद से अगर हम कट जाएंगे तो फिर जीना तो बिल्कुल ही हमारा जो है नहीं हो पाएगा। इसलिए हर हालत में इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत।
3: छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: यहाँ तो अर्ज किया है।
1: आहो
0: सुनो तो
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हाँ वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी वो तो हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे, ईएमआई पे।
2: स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ मौजूद हैं बी के ज्योति जी और बी के प्रेम।
1: करना भी इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है,
2: क्योंकि गुस्सा भी हमारी एक इमोशन ही है और उसे कंट्रोल करना, एक्चुअल में हमारा नेचर जो है वो गुस्से वाला है नहीं।
1: बिल्कुल,
2: लोगों को देख करके हम ऐसा बनते जा रहे हैं और कुछ चीज़ें परिस्थिति हमें ऐसा बना देती है। हम देखते हैं कि थोड़ा सा गुस्सा करने पे काम जल्दी हो जाता है, तो हम उसी तरीके का अपना धीरे धीरे धीरे वो करते हुए, जब हम वही काम बार बार करते हैं गुस्सा करने का, तेज बोलने का, तो वो फिर हमारी नेचर बन जाती है, फिर हमारा वो नेचुरल हो जाता है।
1: सही बात है।
2: कहीं ना कहीं हम ना चाहते हुए भी इसके लिए, जैसे हमने गुस्से को अपनी नेचर बना लिया है, आज उस पर थोड़ा सा अगर अटेंशन देते हैं तो हम उस भावना को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ही अगर मैं कहूँ, क्योंकि हम रोज ही इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है या जो भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह का रिएक्ट किया है या कुछ गलत भी अगर उसने किया है, तो उस समय उसके लेवल से वो राइट था ना है कोई चीज, तो गुस्सा करके क्या हम राइट पाथ पे हैं?
1: नहीं।
2: तो जब हम राइट नहीं है तो हम रॉन्ग कभी रॉन्ग को सही नहीं कर सकते।
1: सही बात।
2: राइट पाथ पे हम रहेंगे, पीसफुली हम किसी को समझेगा। जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो फिर हमारा वही जो क्रोध का हमारा भी नेचर बन गया था, फिर वही इमोशंस हमारे वो वापस हमारे पीसफुल वाला इमोशन हो जाता है। हमारे जो हमारे अंदर बार बार उस तरह की फीलिंग्स आ रही है, वो हमारी कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है।
1: सही बात है।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ मौजूद हैं बीके ज्योति जी।
1: की यूथ के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है?
2: मेरे हिसाब से आज के यूथ के लिए नहीं, हर एक के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। जैसे कि जो हमारी पूरी चर्चा चली कि डेट में एक सॉफ्ट स्किल नहीं, एक सर्वाइवल स्किल बन चुकी है।
1: सही बात है,
2: यानी अगर जीना है तो इमोशनल इंटेलिजेंस होकर जीना है, अदरवाइज जीना बेकार या फिर जीना बहाल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल
1: जी।
2: सोशल मीडिया आपका जो इतना हम कहें कॉम्पिटिटिव बन चुका है, जो हम लाइफ में सब चीजें जोड़ते चले जा रहे हैं, फास्ट ट्रैक में भागते चले जा रहे हैं, वहाँ हमारा इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत इंटेलिजेंट नहीं है और बाह्य चीजों से हम उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत जल्दी हो जाता है। चार लोगों ने गाड़ी खरीदी, उसका इम्पैक्ट हो गया। चार लोगों ने हमारे लिए कुछ का, उसका इम्पैक्ट हो गया। चार लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश है, उसका इम्पैक्ट हम पर हो रहा है। तो यानी मैं इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हूँ।
1: सही बात है।
2: और चार लोगों का मेरे पर असर हो रहा है तो मैं कहाँ हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी क्या रखता हूँ, मेरी अपनी सोच क्या है, मैं कैसा फील करूं या नहीं, ये मैं हूं जो मुझे डिसाइड करना है।
1: सही बात है।
2: सारी दुनिया, पेरेंट्स या जो भी रिलेशंस में है, वो जो भी कह रहे हैं वो मुझे सुनना जरूर है, लेकिन समझ तो मुझे अपनी यूज करनी है।
1: सही बात है।
2: अगर घर अगर डेथ भी होती है तो उस दौरान भी एक व्यक्ति आप देखेंगे पूरी फैमिली में, वो स्ट्रांगली खड़ा होगा।
1: सही बात है।
2: वो पीछे जाके रो रहा होगा लेकिन आगे सबके सामने सब चीजों को डील कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा। तो क्यों, अगर हर कोई रोने बैठ गया तो घर में कुछ भी चलेगा नहीं और सारे के सारे डेथबेड पे ही पहुंच जाएंगे। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना, स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है और यूथ के लिए इस वाली दुनिया में अपना जीवन शुरू कर रहे
1: हैं। सही बात।
2: और इतने ड्रास्टिक चेंजेस में, इतने नेगेटिव जो मैं कहूँ आपका सर्कमस्टांसेस होते जा रहे हैं, चैलेंजेस आपके इतने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं जो कि जो इमोशंस को बहुत बुरी तरह हिला देते हैं। हम देखते हैं एक छोटी छोटी बातों में है आज के बच्चे जो है वो बहुत हिल जाते हैं, माँ बाप से नाराज हो जाते हैं, फ्रेंड सर्कल तोड़ देते हैं, हर चीजों से दूर होने लगते हैं, उल्टी खोल लेते हैं।
1: सही बात है।
2: उन्हें सॉल्यूशन चैट जीपीटी से मिलता है। तो ये अगर हमारा समाज होता जा रहा है वेयर आई डोंट फील मींस एक कि मैं मम्मी से पूछूं या पापा से पूछूं, उसके आने वाले टाइम पे वो कौन सी जीपीटी पे जाएंगे, आने वाला वर्ल्ड हमारा कैसा होगा, आई डोंट नो। वो रोबोटिक ही होगा क्योंकि मैं रोबोट से ही तो अपने चीजें पूछ रहा हूँ।
1: सही बात है।
2: तो मेरा लाइफ क्या, फीलिंग्स रोबोटिक हो जाएगी। मुझे किसी को गिफ्ट करना है तो आई लास्ट चैट जीपीटी, उसकी शादी क्या, उसे गिफ्ट क्या दूं।
1: सही बात है।
2: तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, इंसानी दुनिया में जा रहा हूँ या चैट जीपीटी वर्ल्ड में जा रहा हूँ, एआई में, बिकॉज इट इज देयर, बट मैं इंसान हूँ और इंसानों के बीच मुझे रहना है। मैं चैट जीपीटी के साथ 24/7 नहीं रह सकता।
1: बिल्कुल।
2: मेरा खाना मुझे वो नहीं देने वाला है। व्हाट आई लव टू ईट ही कैन डिसाइड, और इधर ही के बना के तो कोई इंसान ही देगा।
1: सही बात है।
2: बनाना तो मुझे ही पड़ेगा और खाके उसका स्वाद भी मैं ही लूंगा। वो वहां यम्मी लिख देगा, आई कैन स्पेल द यम्मी वर्ड, बट वो यम्मी है या नहीं, वो मेरा मुंह, मेरा स्लाइवा, मेरा जिस तो बॉडी ह्यूमन का ही बताएगा ना।
1: सही बात है।
2: तो इसीलिए मुझे इंटेलिजेंट इमोशनली बहुत होना जरूरी है क्योंकि इंसानों के साथ आज कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ रही है और रोबोट्स के साथ बहुत सिंपल हो रहा है क्योंकि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जीपी जैसे किसी भी चीज को फर्क नहीं पड़ रहा कि आप उसे कितना यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
1: सही बात है।
2: लेकिन इंसान को फर्क जरूर पड़ता है कि आपने उसके साथ कितना समय बिताया, कितना हेल्दी समय बिताया।
1: सही बात है।
2: और शायद यही मुझे चोट देने लग गया है कि वो मेरी हर बात को नोट कर रहा है और एआई तो मुझे कुछ कहता ही नहीं है, चैट जीपीटी तो मुझे कहता, जो मैं कह रहा हूँ मुझे आंसर दे रहा है, दैट्स इट। वो भी मैं जितना मांग रहा हूँ उतना इंसान तो ज्यादा बोल रहा है, लाइक मी, कि मैं तो बोले चले जा रही हूँ, जबकि अगर एआई होता तो आई कैन स्टॉप इट। तो इसीलिए आपको इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं इंसान हूँ और मुझे इंसानों के साथ, एंड आई लव टू हैव इंसान अराउंड मी।
1: सही बात है। लिसनर्स के लिए अगर कोई एक मैसेज तो आप दोनों क्या देना चाहेंगे?
2: मेरा तो यही है सभी को कहना कि सभी अपनी भावनाओं को समझें, लेकिन थोड़े सा कोशिश करें। अगर करते हैं तो अपने जीवन में, क्योंकि इंटेलिजेंट बनना है तो सभी चीज़ों में इंटेलिजेंट बनना है, फिर इस एक फील्ड को हम क्यों छोड़ दें?
1: सही बात।
2: तो इस फील्ड को भी पूरा करें और एक संपूर्ण तक,
3: मैं इंसान हूँ और मुझे इंसानों के साथ जीना है, ये याद रखना है। इंसानों के साथ हम रहने आए हैं, भगवान ने मुझे इंसान बना के भेजा है और मुझे इस जीवन में बहुत खुश रहना है, और खुश रहमेंट है उसे भी मुझे खुश रखना है।
1: इंसानों वाला
3: ऑब्वियसली।
1: ओके जी, थैंक यू।
0: आज की कॉन्वर्सेशन से हमें ये समझ आता है कि लाइफ में सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफी नहीं, इमोशनली इंटेलिजेंट होना को समझना और दूसरों के इमोशंस की रिस्पेक्ट करना ही रियल मैच्योरिटी है। बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे थे जस्ट टॉक अबाउट इट सेफ रेडियो महारानी 89।

0: FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते, आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मना

0: रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है, द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदा।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोतिया, ये मुकुट है पर तूने हेलमेट पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट 2.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: जानते हैं हमारे किशोर दा को प्यूदा पौधों से प्यार।
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था। जानिए ऐसे ही किसे सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात।

मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी मुझे फिर से बच गई हूँ भागते भागते खुद से। अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग अब टूटा उनका ही खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से जो दिया वक्त पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी मुझे फिर से बच्चा होना है।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महाराज 89.6 FM। कुछ छक्के।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो मनाता है, रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: ऐसा देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है, इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें।

0: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ पर किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
1: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरा के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके। बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
0: मुझे सब दिखाई दे रहा है
1: बेटा जी। जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ही इको फ्रेंडली पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं कुछ।

वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अपनी सक्सेस से नहीं बल्कि अपने इम्पैक्ट से याद किए जाते हैं। कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जिनकी जर्नी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने के लिए सिर्फ टैलेंट। हे आई एम मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ऑन रेडियो महारानी। और आज संघर्ष की कहानी में मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसी वुमन की कहानी जिन्होंने उस वक्त एक चैलेंजिंग फील्ड चूज की जब वहाँ वुमन करती थी। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, फिर अपने एक्सपीरियंस को सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूज किया। एक इंजीनियर, एक ऑथर, जिनकी कहानी हमें बताती है कि असली सक्सेस बल्कि जब आपकी मेहनत और नॉलेज किसी और की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आए तब वो सक्सेस मीनिंगफुल बन जाती है। तो आज संघर्ष की कहानी में हम सुनेंगे कैसे इंस्पायरिंग जर्नी जहां स्ट्रगल है, करेज है और एक पर्पस के रही है। रेडियो महारानी पर संघर्ष की कहानी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।

0: इसलिए जासूस हूँ।
1: सुनो पुम्मी बहन जी,
2: बोलो सिम्मी बहन जी,
1: तुम्हें पति के साथ भाग गई और ये खबर सबको सबसे पहले मैंने ही बताई थी। और पता है एक दिन स्वीटी के घर चार लड़के आए। हाय, वो तो बाद में पता चला कि वो टिल्लो का पति रोज पीकर आता है, और जब ये बात मैं सबको बताने जाती हूँ तो लोग मेरे को जासूस बताते हैं। ले अब ये भी कोई बात हुई भला।
2: सही कह रहे हो पैंट जी, जो जासूस ही कहते हैं।

0: तो पता नहीं, पर तेरे साथ तो इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता और भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिर्फ महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू संघर्ष की कहानी। मैं हूँ आपकी होस्ट मोनिका। और है एक ऐसी पर्सनालिटी की जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई, वो है सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी का जन्म 19 अगस्त 1950 को सिंह गांव कर्नाटका में हुआ था। लर्निंग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई

बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हबली से कंप्लीट की और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंक डिग्री हासिल की। और 1970s के दौर में जब इंजीनियरिंग फील्ड में वुमेन्स की पार्टिसिपेशन बहुत कम हुआ करती थी, तब सुधा मूर्ति ने इस फील्ड में अपनी जगह बनाई। वो टाटा मोटर्स में काम करने वाली पहली फीमेल। सिर्फ एक जॉब नहीं थी, एक मैसेज था कि टैलेंट और डेडिकेशन के सामने बैरियर्स ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। और आप अगर कुछ नया चूज करते हो कुछ करने के लिए, तो उस चीज में आगे आपको सक्सेस जरूर मिलती है। तो कहानी में आगे क्या हुआ, तरह से आगे बढ़ाए, हम सारी चीजों के बारे में जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी 89.6 FM, आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनिका। और लिसनर्स, हर इंस्पायरिंग जर्नी में एक मोमेंट आता है जब एहसास क्या होगा। और सुधा मूर्ति जी की जर्नी भी सिर्फ करियर सक्सेस तक लिमिटेड नहीं रही। उन्होंने टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सपीरियंस लेने के बाद सोसाइटी के लिए काम करने का रास्ता चूज किया। 1996 में जिसके थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर जैसे एरियाज में काम किया गया। सुधा मूर्ति ने राइटिंग की दुनिया में भी अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी बनाई। उन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ की बुक्स जैसे वाइज एंड अदरवाइज, डॉलर बहू, 3000 स्टीचर्स एंड ग्रैंडमा बैग्स ऑफ स्टोरीज रीडर्स के बीच बहुत पॉपुलर रही हैं। उनकी राइटिंग की सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि सिंपल नेस्टी एंड ह्यूमनिटी जैसे वैल्यूज को हाईलाइट किया है। उनकी जर्नी के थ्रू हमें ये सीखने को मिलता है कि नॉलेज तब और पावरफुल बन जाती है जब वो दूसरों के लिए काम आए। तो किस तरह से सुधा मूर्ति जी की जर्नी आगे बढ़ी, हम सारी बात के बाद।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और आपकी सुरक्षा नहीं अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर संघर्ष की कहानी। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड द होस्ट मोनिका। और आज संघर्ष की कहानी में कहानी चल रही है सुधा मूर्ति जी की। सुधा मूर्ति जी एक लेसन मिलता है कि लाइफ में सक्सेस पाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सक्सेस के लिए अपनी वैल्यूज को मेंटेन करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पास नॉलेज है तो उसे यूज करिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी और अगर चैलेंजेस आए तो उन्हें अपनी वीकनेस नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ का चांस समझिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और कंसिस्टेंट एफर्ट्स किसी भी ऑर्डिनरी जर्नी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। और मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं, और आज का शो मेरा लास्ट शो है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। आप रेडियो महारानी के थ्रू और भी इंस्पायरिंग जर्नी सुनेंगे और भी इंस्पायरिंग कहानियां सुनेंगे।

0: हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है।

0: बात अगर पेरेंट बनने की हो ना, तो ये हर कपल का एक खूबसूरत सपना होता है। लेकिन कई बार सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान नहीं होता। ऐसे में मेडिकल साइंस ने एक नई, वेलकम टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ, और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ हम हेल्थ से जुड़े हर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, और हमारे साथ मौजूद होता है एक एक्सपर्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। अगर IVF की बात करें तो IVF का नाम बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल और बहुत सारे मिथ हैं जो आज भी हमारे माइंड में है। तो आज जानेंगे कि IVF की जरूरत कब पड़ती है, कभी किस किन बातों पर डिपेंड करती है, और ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दीपा, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और परफेक्ट गेस्ट हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। डॉक्टर, आज हम IVF को लेकर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि बहुत ही आसान शब्दों में ये समझाइए कि आखिर IVF होता क्या, तो ये नेचुरल प्रेगनेंसी से किस तरह अलग होता है।
1: थैंक यू सो मच अंजलि फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। वर्ल्ड IVF डे हर साल 25 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया में पहले IVF से जन्मी बच्ची लुईस ब्राउन के बर्थ 25 जुलाई 1978 की इनविट्रो फर्टिलाइजेशन एक एडवांस्ड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जो उन कपल्स की मदद करता है जिनको नेचुरल प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ रही हो। इनविट्रो का मतलब है बॉडी के बाहर, लैबोरेटरी में। नेचुरल प्रेगनेंसी में फीमेल एंड स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज्ड एग फिर यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट होता है और प्रेगनेंसी डेवलप करती है। IVF में ये फर्टिलाइजेशन लैब में किया जाता है। इस प्रोसेस में फीमेल को हार्मोन इंजेक्शंस दी और एग्स बन सके। इन मैच्योर एग्स को रिट्रीव किया जाता है, मेल स्पर्म्स लिए जाते हैं, लैब में स्पर्म और एग को मिलाया जाता है, या जरूरत हो तो ICSI टेक्निक से एक स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, लैब में ग्रो किया जाता है, फिर एक हेल्दी एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, जहां इम्प्लांटेशन होने पर प्रेगनेंसी शुरू होती है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस फर्टिलाइजेशन की साइट का होता है। बाद में प्रेगनेंसी डेवलप, IVF से पैदा होने वाले बच्चों की ग्रोथ, इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट नेचुरल कंसेप्शन से पैदा हुए बच्चों के समान ही होती है।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह से आपने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है कि IVF है क्या, होगा कि IVF किस तरह से काम करता है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं आज आपसे जानने के लिए, तो इन सवालों पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं ये म्यूजिक ब्रेक और आकर जानेंगे कि IVF की जरूरत आखिर किन कपल्स को पड़ती है। 0.6 FM के साथ

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं एनआईवी आईवीएफ होता क्या है। लेकिन अब ये बताइए, किन कपल को आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही अगर बात की जाए प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में हर तरह की दिक्कत का सोल्यूशन सिर्फ आईवीएफ ही हो तो एक पेशेंट की कंडीशन को ध्यान में रखकर किया जाता है।
1: हर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आईवीएफ नहीं होता। सबसे पहले डॉक्टर डिटेल्ड इवैल्यूएशन

0: मोस्ट पेशेंट्स कंसीव विद हार्मोनल ट्रीटमेंट। जब इन मेथड से प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती तभी IVF की सलाह दी जाती है। IVF पहला नहीं बल्कि सही समय पर सही मरीज के लिए चुना जाने वाला एक बिल्कुल पर्सनलाइज्ड मेथड लिए ट्रीटमेंट एज, मेडिकल हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन और इनफर्टिलिटी के कॉज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है।
1: बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर आज आपने हमारे साथ शेयर की है, और साथ ही ये भी बताया है कि अगर बाकी पेशेंट की कंडीशन को देखकर ही डिसाइड किया जाता है, सिर्फ IVF ही हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है, ये भी आज आपने बताया है हमें। और बहुत सारे ऐसे ही सवाल है जिनके बारे में जानेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रे के साथ।

0: फरीदाबाद और बटखले की कहानी ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
1: नाइन पॉइंट सिक्स एफ एम कुछ।

0: शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ हम बात कर रहे हैं IVF के बारे में। तो डॉक्टर दीपा हमारे साथ स्टूडियो में है। डॉक्टर, अगर मैं IVF की बात करूँ तो कहा जाता है कि IVF के सक्सेस की गारंटी नहीं होती। पहले तो ये करें IVF की सक्सेस की, तो ये जो सक्सेस रेट है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और क्या एक ही साइकिल में प्रेगनेंसी होना जरूरी होता है?
1: बिल्कुल सही बात है, मेडिसिन में किसी भी ट्रीटमेंट की 100% गारंटी नहीं होती। ट्रीटमेंट है लेकिन प्रेगनेंसी होना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कई फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं, इसलिए हर पेशेंट की सक्सेस रेट अलग होती है। IVF की सक्सेस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एग की क्वालिटी और क्वांटिटी, दोनों काम होते हैं। जैसे लेस देन 35 इयर्स में लाइव बर्थ रेट पर एम्ब्रियो ट्रांसफर 45-55%, मगर यही नंबर मोर देन 42 इयर्स में 5-10 वजह है कि यंगर एज में IVF की सक्सेस ज्यादा होती है। दूसरा, अच्छे क्वालिटी के एग्स और स्पर्म से हेल्दी एम्ब्रियोज बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, सभी एम्ब्रियोज इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल में इम्प्लांटेशन चांस काफी कम होता है। एम्ब्रियो अच्छा होने के बाद भी यूट्रस हेल्दी होना बहुत जरूरी है। फाइब्रॉइड्स, एडिशंस, थिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी इम्प्लांटेशन को इफेक्ट करते हैं। इन सब लाइफस्टाइल और IVF की लैब की क्वालिटी भी सक्सेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम इस बात पर बात करें कि क्या एक ही साइकिल में प्रेगनेंसी होना जरूरी है, तो बहुत से कपल्स को पहले साइकिल में मगर बहुतों को फिर भी मिल जाती है, जबकि बहुत सारे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको दूसरा या तीसरा साइकिल की जरूरत पड़ सकती है। रिसर्च के अनुसार फर्स्ट IVF साइकिल में क्यूमुलेटिव सक्सेस एज डिपेंडेंट अराउंड 42 बाद 70-85% तक क्यूमुलेटिव लाइव बर्थ चांसेस हो सकते हैं।
0: जी डॉक्टर, यानी IVF की सक्सेस की अगर बात करें तो सक्सेस कई मेडिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपने अभी बताया, और सारे की जो ट्रीटमेंट की जर्नी है वो एक दूसरे से बहुत अलग होती है, और इन्हीं चीजों का ख्याल हमें अक्सर रखना चाहिए। कभी भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, और अगर आप इस जर्नी में हैं या फिर सोच रहे हैं IVF रूट ले, अपने डॉक्टर के साथ उनके साथ बैठे, अपने सारे डाउट्स क्लियर करें एंड उसके बाद ही आगे बढ़े। साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: पर अभी बाकी है जून का जुनून। इस आग उगलती गर्मी से अगर खुद को है बचाना तो
1: साथ आसमां जीरे, अब साथ समंदर तीरे, चल साथ सुनो में कर दे ये ऐलान।
2: सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का रखो ख्याल। साइबर क्राइम में हैकिंग, फिशिंग और डू योर पार्ट, बी साइबर स्मार्ट।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम IVF के बारे में बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि ट्रीटमेंट काम करता है। तो डॉक्टर, अगर मैं IVF की बात करूँ ना, तो IVF को लेकर एक और कॉमन कंसर्न है, वो है इसका कॉस्ट। तो लगभग कितना कॉस्ट आता है इस IVF की जर्नी के साथ, साथ ही आज के समय में IVF ट्रीटमेंट की कॉस्ट, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कपल को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो?
1: सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि IVF की कॉस्ट, यह पेशेंट की मेडिकल कंडीशन और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर डिपेंड करती है। इसलिए सिर्फ पैकेज प्राइस देख करके डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लगभग एक सेल्फ एग IVF साइकिल की कॉस्ट इंडिया में 1.5 से 2 लाख चार्जेस, मेडिसिन, इंजेक्शंस, अल्ट्रासाउंड, एग रिट्रीवल एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर इंक्लूडेड होता है। IVF की कॉस्ट किन बातों पर डिपेंड करती है, इसका जवाब मैं ऐसे दूंगी कि IVF में सबसे बड़ा और वेरिएबल खर्चा, पेशेंट्स में कम इंजेक्शन लगते हैं जबकि लो ओवेरियन रिजर्व या एडवांस्ड एज में ज्यादा मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मेडिसिन का खर्चा टोटल बिल का 25-40% तक हो सकता है। लैबोरेटरी यूटिलाइजेशन, एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो ट्रांसफर IVF का कोर हिस्सा है और इनका कॉस्ट 30-40% तक हो सकता है। एडवांस टेक्निक जैसे कि ICSI, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, अगर ये सब परसेंट उससे ज्यादा हो सकता है। डोनर एग्स, डोनर स्पर्म तो ट्रीटमेंट का खर्चा काफी बढ़ा देते हैं। कुछ कपल्स को 2 से 3 साइकिल्स की जरूरत पड़ सकती है जिससे ओवरऑल खर्चा बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले फाइन बहुत जरूरी है। IVF सेंटर से रिटर्न कॉस्ट एस्टीमेट जरूर ले, जाने कि पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या एक्स्ट्रा चार्जेबल है। सबकी ब्लड टेस्ट, स्कैन्स की अलग कॉस्ट के बारे में पहले से ही जानकारी ले लें। फाइनेंसिंग ऑप्शंस के बारे में पूछें। सिर्फ कम कॉस्ट देखकर क्लिनिक ना चुनें। एक्सपीरियंस्ड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, क्वालिटी IVF लैब, ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। IVF एक इन्वेस्टमेंट है, हेल्दी बेबी के गोल के लिए होता है।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह से आपने बताया है इससे सिर्फ यही समझ आता है कि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले सही इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये खुद से। सो जितने भी लिसनर्स आज हमें सुन रहे हैं, प्लीज जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर ही आगे बढ़े। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला। जहाँ आज हम बात कर रहे हैं IVF को लेकर बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे डर भी आते हैं जब हम इस ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो सेफ्टी को किस तरह से इंश्योर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी परेशान है सेफ्टी को लेकर। और साथ ही ये भी बताइए कि वाकई IVF या बाद में किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
1: IVF जनरली एक सेफ और एक वेल एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट माना जाता है। आज तक 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे IVF से जन्म ले चुके हैं। 95% IVF ट्रीटमेंट को बिना किसी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के सेफली कंप्लीट कर लेती हैं। पहले IVF में ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम एक कॉमन कंसर्न था। आजकल अच्छे इंजेक्शंस की वजह से यह रिस्क भी बहुत कम हो गया है। रिसर्च किए जाते थे इसलिए मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ता था। आजकल ज्यादातर सेंटर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर को प्रेफर करते हैं। नेचुरल प्रेगनेंसी में मेजर बर्थ डिफेक्ट्स का रिस्क लगभग 2-3% होता है। IVF% होता है जो अक्सर इनफर्टिलिटी के कॉज या पेरेंट्स की एज की वजह से होता है, ना कि IVF प्रोसीजर की वजह से। IVF के दौरान या बाद में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? IVF इंजेक्शंस और मेडिसिंस बिल्कुल नहीं है। हेल्दी डाइट, एडवोकेट प्रोटीन, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, स्मोकिंग और अल्कोहल से तो बिल्कुल दूर रहें। रोज की नॉर्मल एक्टिविटीज ज्यादातर सेफ होती हैं। एक्सर्शन से बचें, फीवर पेन या किसी प्रकार अलाहले। बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट करने से अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ता है। सही काउंसलिंग, एक्सपीरियंस टीम और प्रॉपर फॉलो अप के साथ IVF एक सेफ एंड इफेक्टिव ऑप्शन है।
0: जी बिल्कुल सही, डॉक्टर और बहुत ही एक्सपर्ट की गाइडेंस में हो और साथ ही हर कपल सही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, साथ ही पॉजिटिविटी भी आती है। इसी के साथ डॉक्टर, बहुत सारे मिथ हैं IVF से जुड़े जिनके बारे में बात करेंगे, लेकिन वापस आकर 0.6 FM के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजू अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं IVF के बारे में। डॉक्टर, अगर मैं बात करूँ ना IVF की, तो बहुत सारे मिथ भी आते हैं, जिनमें से एक बहुत अपनी मनपसंद जेंडर के बच्चे चूज कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बारे में अगर हम इंडिया के लॉ की बात करें तो मेडिकल एथिक्स क्या कहते हैं?
1: यह IVF से सबसे जुड़ा सबसे कॉमन मिथ में से एक है। IVF का मेन पर्पस जो कि बेबी का जेंडर चूज करना। साइंटिफिकली अगर एम्ब्रियो की प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की जाए तो एम्ब्रियो के सेक्स क्रोमोसोम्स देखे जा सकते हैं, लेकिन इंडिया में PCPNDT एक्ट के तहत IVF के दौरान है सिर्फ जेंडर जानने या जेंडर चूज करने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग करना कानूनी रूप से मना है। रेयर मेडिकल सिचुएशंस जैसे किसी फैमिली में एक्सलिंक जेनेटिक डिजीज का रिस्क ज्यादा हो, तब उससे बचने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग का यूज किया जा सकता है, लेकिन सेंट लीगल गाइडलाइंस के हिसाब से होता है, ना कि पेशेंट की पर्सनल प्रेफरेंस से।
0: डॉक्टर, जिस मिथ के बारे में आज हमने बात की है, इस मिथ को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर बात की जाए ना IVF को लेकर तो लोगों के बीच काफी। थैंक यू सो मच, आज आपने हमारे लिसनर्स को बताया कि आखिर IVF होता क्या है, क्यों जरूरी है, किस तरह से इस जर्नी में आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही डॉक्टर एक और सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक 6 FM के साथ।

0: मेरी गुड्डा।
1: नहीं
2: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: आप मानना यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूदा तो मैं मर जाऊंगा।
3: ज़ाले डर गया, क्यों बुलाई?
2: तू क्यों गया?
3: अबे पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
2: क्यों?
3: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
2: अगर ये लाश नहीं मिल रहा तो जला देना मेरी चीजें, नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति।

0: सब ठीक चल रहा था, या हम ऐसा सोचते थे। उन पहाड़ों के पीछे कुछ ऐसे हादसे हो रहे थे जो हमारी जिंदगी को हमेशा
1: ट्रिक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ। रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ, और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं IVF को लेकर, जान रहे हैं इस ट्रीटमेंट के बारे में। तो डॉक्टर, ये बताइए, अगर किसी कपल का IVF साइकिल सक्सेस पर क्या वजह हो सकती है, साथ ही ऐसे कपल को आप इमोशनली और मेडिकली क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: एक IVF साइकिल फेल होना इसका मतलब यह नहीं है कि फ्यूचर में प्रेगनेंसी नहीं होगी। बहुत से कपल्स दूसरे ही आते हैं। IVF फेलियर का सबसे बड़ा कारण एम्ब्रियो में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होता है। उम्र बढ़ने के साथ एग की क्वालिटी कम होती है, जिससे क्रोमोसोमल एरर्स बढ़ जाते हैं। एम्ब्रियो दिखने में अच्छा हो सकता है, लेकिन एम्ब्रियो अच्छा हो लेकिन कभी कभी वह सक्सेसफुली इम्प्लांट नहीं हो पाता। हर IVF फेलियर के बाद दूसरा केस रीवैल्यूएट किया जाता है। सब फैक्टर्स, एग, स्पर्म क्वालिटी, फर्टिलाइजेशन रेट, एंडोमेट्रियल, दोबारा स्टडी किए जाते हैं और नेक्स्ट साइकिल में चेंजेस किए जाते हैं। IVF फेलियर इमोशनली बहुत टफ हो सकता है। हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें और अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से डिटेल डिस्कशन करें क्या था और अगले साइकिल में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट प्लान के साथ ज्यादातर कपल्स हैप्पीली पेरेंटहुड अचीव करते हैं।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर। और आज अगर बात करें तो आपने IVF को बहुत ही आसान भाषा में हमें समझाया है, और साथ ही उम्मीद है कि आज की बातचीत ने हमारे लिसनर को IVF को लेकर काफी क्लैरिटी दी होगी, और साथ ही जो कपल इस जर्नी से गुजर रहे हैं उन्हें भी सही जानकारी। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपा, आज आप आए और आपने अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस से इस सेशन को और भी ज्यादा फ्रूटफुल बनाया। इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया यहाँ से जाने का। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.4।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मैं कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। ठीक मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं की गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई मोटरसाइकिल यात्रा मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में गया यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह इसका प्रतीक है। इसी महीने डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिक सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही डीआरडीओ ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस कारगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर, सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपकी चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, उन्होंने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घात निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित। नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं
या बावड़ी की जिम्मेदारी ले, पानी की आज बताई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स की भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने अर से यह मुकाबला जीता, लेकिन बात सिर्फ इतनी से नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। एर्नाकुलम के साउथ चितूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जो समझाया जाता है, इससे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब के स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बते हैं इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार। हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने, केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखा रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे
और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद हाथों से बुनाई का काम, दो कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में सर्दियों में गर्माहट, पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन तंजिला जी ने एक संकल्प लिया, दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। बहुत गर्व है, आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आप एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके

कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के बने हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में कुछ शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, स्वयं सेवक और आम नागरिक, सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला। 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर इनमें बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाल सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण आ हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण, साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूल, सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही टीका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज

केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है उसके बजाय हमें घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है, उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दो गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति है मार्डो रेशराम जी, नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं, विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम सूरज झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सी भी का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। ये का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं भी जगमगा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत उठे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भरे। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है।
कुछ लोग कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी की। खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है, 1000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। ये यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम हो, सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं, आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने अन्य है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। वो भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे और भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी ऊपर जरूर साझा कीजिए, मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे देशवासियों और प्रेरक प्रयासों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: प्रोडक्टिव नहीं करा। तो इस प्रोडक्टिविटी गिल्ट के पीछे क्या वजह हो सकती है, और अगर एक्चुअल में ये गिल्ट है तो इससे निकला कैसे जा सकता है?
1: जी क्योंकि हमारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग, अगर आप देखो कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दीवारें ताक रहे हो, तो वो प्रोडक्टिविटी गिल्ट नहीं है, वो बेसिकली कंडीशनिंग गिल्ट है। हमारा माइंडसेट ये हो गया है, अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ। इतने सारे लोग हैं, जब हम उनको कि हम दो दो घंटा मेडिटेशन करने नहीं बैठ सकते,
0: बिल्कुल,
1: क्यों, क्योंकि मैं दो घंटा मैं आईज क्लोज करके कैसे वेस्ट करूं?
0: जी।
1: मैं तो रात को 7-8 घंटे सोए रहा हूँ ना, आई कैन नॉट स्लीप मेडिटेट एंड वेस्ट माई टाइम फॉर 2 hours। आज यू आर इन योर 30s, आप जॉब कर रहे हो, आप प्रोडक्टिव हो, टिल योर 60s ऑल्सो यू आर प्रोडक्टिव, यू आर वेरी प्रोडक्टिव, आप इतने प्रोडक्टिव हो कॉर्पोरेट के लिए दैट यू डोंट हैव फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स, यू डोंट हैव टाइम फॉर योर पास कोई नहीं है। एक टाइम आएगा आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं दे रही है, तब आपको खुद के साथ बैठना है। अगर आज वो हैबिट नहीं बिल्ड करोगे खुद के साथ बैठने की, तब वी विल ब्लेम आवर चिल्ड्रन,
0: जी,
1: बच्चों के बच्चे, पड़ोसी, क्रैंकी ओल्ड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, क्यों बनना है? वो क्रैंकी ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स भी अपने हसल कल्चर के हिसाब से भी नीड है, बट चूजिंग टू सिट विद योर सेल्फ इज अ चॉइस विच यू हैव टू मेक। अब बाय 60s लाइफ आपको फोर्स करके वो एबिलिटी दे, एंड देन यू कैन नॉट सिट विद योर सेल्फ, यू लर्न टू सिट विद योर सेल्फ एंड यू अंडरस्टैंड वॉट इट फील्स लाइक टू बी मी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पर्पस हर इंसान का इस पृथ्वी पे आने का कुछ है, वो सिर्फ कॉर्पोरेट से पैसा कमाना नहीं है, इट्स टू अंडरस्टैंड जो मैं खुद के साथ बैठूंगा।
0: बिल्कुल सही बात है। अब तक की बातचीत से एक बात तो साफ है कि कामयाबी सिर्फ अचीवमेंट्स का नाम नहीं है, और ब्रेक के बाद बात करेंगे सोशल मीडिया प्रेशर और रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया। मैम, सोशल मीडिया पर हर रोज दूसरों की सक्सेस देखकर कंपैरिजन और प्रेशर बढ़ता है। प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहेंगी।
1: टू थिंग्स, सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ क्लैरिटी। मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ
0: जी?
1: अगर मैं घर खरीद रहा हूँ तो मेरी नीड क्या है टू बाय अ होम, एंड इफ मेरे को ये क्लैरिटी है कि मैं अपना घर क्यों खरीद रहा हूँ, जितने भी कमरे हो, इट डजंट मैटर कि किसी और के पास कितने घर है या कितने फ्लोर्स है, सेम गोज फॉर अ कार एंड अ फोन। मेरा सेंस ऑफ पर्पस टू गेट एनीथिंग इज नीड्स टू बी क्लियर।

0: कि मैं कोई काम क्यों कर रहा हूँ. सो काम हो गया मेरा पर्पस, और क्यों कर रहा हूँ मेरी क्लैरिटी हो गई. जिस दिन मेरे पास वो क्लैरिटी है, किसी के पास मुझसे बहुत बड़ा घर हो सकता है और किसी के पास मुझसे बहुत छोटी गाड़ी हो सकती है, डजंट मैटर. में मेरी सराउंडिंग खुश है मेरे डिसीजन में, दैट्स द ओनली थिंग मैटर्स, बिकॉज मैं खुद को सेलिब्रेट कर रहा हूँ. कल फॉर 30 years आई वॉज लिविंग ऑन रेंट, आज मैंने घर लिया है, मैं अपने घर में शिफ्ट हो रहा हूँ विद माई अपना घर. ये मेरे लिए जो अचीवमेंट है, वो जो 20 years से अपने खुद के घर में रहते थे, टुडे दे आर शिफ्टिंग इन अ न्यू होम, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट से बहुत डिफरेंट है. एंड मेरे को अपने सेंस ऑफ अचीवमेंट की क्यों कर रहा हूँ, क्लैरिटी एंड पर्पस.
1: बिल्कुल सही बात है मैम. कॉर्पोरेट वर्ल्ड और आकाशिक रीडिंग, ये दोनों बिल्कुल अलग जर्नीज लगती हैं. तो आपके हिसाब से सक्सेस और इन सकता है?
0: वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन,
1: थैंक यू.
0: बट कॉर्पोरेट, अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर किसी के पास सेंस ऑफ पर्पस भी नहीं है या लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना आपको नहीं पता है, कॉर्पोरेट इज अ वेरी गुड स्टार्ट.
1: बिल्कुल
0: कॉर्पोरेट में अपना जर्नी स्टार्ट करो. बट अगर लाइफ में कंफ्यूज्ड हो करना क्या है, तो कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ. धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, मे बी यूर एन आर्टिस्ट, मे बी यूर अ हीलर, मे बी यूर अ डांसर, बट जितनी न्यू करना एक्सप्लोर करना. मेरे लिए मेरी जर्नी में मुझे समझ में आया हीलिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. आई वॉन्टेड टू लर्न हीलिंग, मैं समझना चाहती थी कॉन्सेप्ट क्या है. सो आई यूज टू मेक मनी फ्रॉम कॉर्पोरेट एंड आई यूज टू इन्वेस्ट इन कोर्सेज, इन न्यू बुक्स. बहुत सारी बुक्स है, आई हैव लॉट ऑफ मास्टर्स, ओशो, पत्री जी एंड रॉबर्ट श्वार्ट्ज, और एंडलेस है मेरे पास जो लिस्ट है इतने सारे ऑथर्स की जिनसे मैंने सीखा है. सो दे आर माई मेंटर्स इन देयर ओन वे. बट
1: जी,
0: ये जो मैंने चीजें सीखी थ्रू दीज ऑथर्स, थ्रू दीज मेंटर्स, थ्रू दीज मास्टर्स, मेरे लिए वो सक्सेस है, ये मेरी लर्निंग्स है. बट मैं ये सब कर नहीं पाती अगर मेरे पास कॉर्पोरेट नहीं होता.
1: बिल्कुल.
0: सो कॉर्पोरेट भी
1: जी.
0: अब इसमें घूम फिर के मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि आपका सेंस ऑफ सक्सेस का मीनिंग क्या है.
1: जी,
0: इट कुड बी मेकिंग लॉट ऑफ मनी, कि भैया एट द एंड ऑफ दिस ईयर मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, गो दैट आउट. बट एक पाथ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को ये करना है, मुझे ऐसे करना है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर हैप्पी बीइंग मैनेजर्स, क्योंकि उनको अपने नीचे यंग बच्चे ट्रेन करने को मिलते हैं एंड वो उन बच्चों को कैसे चलना है, कैसे बनना है. एंड दोस किड्स ऑल्सो इन देयर अर्ली 20s, वो आज भी अब 30s के हो जाएंगे, 40s के हो जाएंगे, बट वो अपना पहला मैनेजर जरूर याद रखते हैं कि अगर मेरे पास वो मैनेजर नहीं होता ना, तो मुझे कॉर्पोरेट इन हाउ पावरफुल देयर रोल इज इन द कॉर्पोरेट इटसेल्फ, उन्होंने एक सेंस ऑफ पर्पस बनाया. तो पॉलिटिक्स में पढ़ना ना पढ़ना इट्स योर कॉल, बट अगेन अंडरस्टैंड आप जैसे घर में हो वैसे. सो अगर कोई बहुत टॉक्सिक आपको अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट में मिला है, तो उसका घर का भी एनवायरनमेंट इतना हेल्दी नहीं है. आप अगर घर में भी बाउंड्री बनाने में स्ट्रगल करते हो, तो आपको कॉर्पोरेट में भी वो बाउंड्री बनाने में, यू हैव टू चूज टू बी इन अ बेटर स्टेट.
1: बिल्कुल.
0: एंड व्हेन यू डू दैट चॉइस, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. सो इरिस्पेक्टिव, इट डजंट मैटर दैट हाउ यू आर मेकिंग मनी, वॉट मैटर्स इज हाउ हैप्पीली अपना वर्क करते रहो, तो आपको अपने पाथ की क्लैरिटी होती है. एज लॉन्ग एज यू आर अचीविंग, आपके पाथ में जो जो था, यू आर सक्सेसफुल.
1: बिल्कुल.
0: तो अपना सक्सेस का डेफिनेशन, इट कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड. डोंट कंपेयर.
1: बात है, डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है. बस एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लेंगे आज का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल. सुनते रहिए नया नजरिया, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर.

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया। और मैम, अगर इस वक्त कोई स्टूडेंट या यंग प्रोफेशनल खुद को मेंटली एग्जॉस्टेड, कंफ्यूज्ड या बर्नआउट फील कर रहा हो, तो वो आज से कौन से सिंपल स्टेप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता है?
1: अच्छा है, क्योंकि अभी बच्चों के कॉलेज एडमिशन का भी टाइम है।
0: बिल्कुल।
1: सो किड्स आर वेरी कंफ्यूज्ड। सीएस ले, इलेक्ट्रिकल ले, मैकेनिकल लेनी चाहिए क्या? एआई का इतना जमाना है, एंड दिस इज जस्ट द इंजीनियरिंग पार्ट। सो आई एम प्रीटी श्योर कि मेरा स्ट्रगल है, एंड बर्नआउट भी है। बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है, बहुत घरों में सिर्फ किसी फील्ड में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं वो उस फील्ड में।
0: बिल्कुल।
1: वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, उन्हें Even पता नहीं है।
0: करा है तो आप भी यही करिए,
1: सेफ चॉइस है
0: जी।
1: इंजीनियर बन जाओगे तो जॉब लग जाएगी।
0: Exactly.
1: बाहर बहुत इंडस्ट्रीज है। मेरा सबको एक सजेशन, सिंपल एक सजेशन है, मेडिटेट एज मनी एज। मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल देती हूँ। माई ब्रदर 18 साल का लड़का है, वो भी अभी कॉलेज फिगर आउट कर रहा है। ही हैज 2-3 ऑप्शंस।
0: जी।
1: हम जाते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, कैंपस विजिट करते हैं। मैं उसके चेहरे पे कंफ्यूजन देखती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स से, ओनली रोल इन माय हाउस राइट नाउ इज एट द एंड ऑफ द डे हर कोई 30 मिनट्स मेडिटेट करने बैठ जाए। लेट द बेस्ट डिसीजन कम टू मी, लेट मी वॉक टूवर्ड्स द बेस्ट डिसीजन विद क्लैरिटी।
0: बिल्कुल।
1: आपको क्लैरिटी कहाँ से? मेरी लाइफ में यंगर स्टेज में मेडिटेशन नहीं था। जब मेरी लाइफ में मेडिटेशन आया तब मुझे पता था कि मुझे हीलिंग के पाथ से जुड़ना है, मुझे ही

0: लिंक के थ्रू लोगों को सर्विस देनी है. आज भी आई काउंसल लॉट ऑफ वुमेन हु डू नॉट हैव द काउंसलिंग के लिए आती है, तो मैं उनको तीन चीजें सिखा के भेजती हूँ. एक द की नोट दैट द कॉन्वर्सेशन कैन टेक फ्रॉम, टू हाउ टू डू मेडिटेशन, थ्री उनकी लाइफ में जो मेजर लाइफ प्रॉब्लम है कौन सी बुक उनको वाले को इंडिपेंडेंट बना दी.
1: बिल्कुल.
0: अब वो अपने पेन के साथ उसको इट विल नॉट वेयर इट लाइक अ विक्टिम, नॉट लाइक अ पेन कि मैं इसका क्या करूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं. जो बर्नआउट में है वो कंफ्यूज्ड है. जिस बच्चे को उसे कहा जाना है वो कंफ्यूज्ड है. इट्स ओके टू बी कंफ्यूज्ड. व्हाट्स नॉट ओके इज टू स्टे इन कंफ्यूजन एंड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. एक चीज कर लो, मेडिटेट. द आंसर्स विल कम टू यू, द क्लैरिटी विल कम टू यू, यू विल वॉक क्लोजर टू योर पर्पस. You'll make this world a better place through your purpose.
1: बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है. And ma'am, आप हमारे listeners के लिए क्या message देना चाहेंगी?
0: Listeners के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगी, boy, girl, man, woman, any age, it makes you happy.
1: बिल्कुल.
0: हम जितने बड़े होते जाते हैं ना, हम happiness से तो दूर होते जाते हैं, हम खुशी से तो दूर होते हैं ना, हम प्यार के emotion से दूर होते हैं. Everything, everybody is capable of love. जानवर में भी प्यार मिल जाता है
1: जी,
0: और वहाँ खुशी भी मिल जाती है. जहाँ प्यार है वहाँ खुशी ऑटोमेटिकली है. बट अपनी खुशी ढूंढो, वो आर्ट में है, डांस में है, किसी भी एज और स्टेज में है. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती, ड्यूटीज है, मेरी खुशी कहाँ है, मैं कैसे ढूंढूं, मेरे पे टाइम ही नहीं है. गिव योर सेल्फ द राइट वर्ड्स. आई वॉन्ट यू टू टेक अवे टूडे कि मेरे शब्दों में बहुत ताकत है, मैं खुद को क्या बोल है जो मेरे शब्द है. आज सिट विद योर सेल्फ एंड थिंक कि मैंने क्या क्या सोचा, मेरी लाइफ में उससे क्या क्या क्रिएट हुआ है. तो आज मैं क्या क्या सोचना चाहता हूँ और उस पर एडिक हो जाओ. यही सोचूंगा, बी डिल्यूशनल, लेट द वर्ल्ड टेल यू योर डिल्यूशनल.
1: बिल्कुल,
0: बी डिल्यूशनल.
1: बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है. थैंक यू सो मच मैम.
0: थैंक यू फॉर यू आर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. आई एम वेरी ग्रेटफुल. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड पलक यू हैव बहुत वाइब्रेंट लाइट, बिल्कुल लाइटफुल एनर्जी है आपकी.
1: तो याद रखिए, सक्सेस तभी मीनिंगफुल लगती है जब उसके साथ सुकून भी हो. अपने गोल्स का पीछा जरूर कीजिए, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ और इनर पीस की कीमत पर नहीं. मैं हूँ आरजे पलक, आप नया नजरिया के अगले एपिसोड में. तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM.

0: इसलिए गदा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: की नौकरी होगी लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाइवा इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है। और ये बात जब मैं घर वालों को
2: ठीक कह रहे तो अंदर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गदाई।

0: दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी एक ऐसे मोड़ से गुजरता है, लेकिन कुछ लोग वहीं से अपनी नई कहानी लिखते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी लेखक मौजूद है जो सिर्फ एक लेखक नहीं है, एक एडवोकेट भी हैं और एक माँ भी हैं, जिन्होंने अपनी किताब फीनिक्स अनबाउंड में रिकवरी और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की एक गहरी और सच्ची जर्नी को शब्दों में उतारा है। स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में, और सभी लिसनर्स को बता देना चाहता हूँ आज खास मुलाकात में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट रूपा। मैम तहे दिल
1: शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसी के साथ साथ मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, आप एक ऑथर भी हैं, और सभी लिसनर्स को बता देना चाहता हूँ मैम एक आरजे भी रह चुकी है और साथ ही साथ एडवोकेट भी है, तो मैम इतने अलग अलग रोल्स और साथ में माँ भी हैं तो इतने सारे अलग अलग रोल्स कैसे बैलेंस करती हैं आप?
1: मुझे लगता है योगा बहुत हेल्प करता है। मोमेंट यू स्टार्ट स्टॉप थिंकिंग लाइफ बिगिंस।
0: ओके,
1: हमारी प्रॉब्लम यह है हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं, तो एंड योगा बहुत हेल्प कर देते हैं। देखो, हमारी जिम्मेदारियां तो कभी कम नहीं होगी,
0: बिल्कुल,
1: और निभानी भी पड़ेगी
0: जी,
1: ना इंक्रीज होगा
0: जी।
1: सो व्हाट यू कैन डू इज इंक्रीज योर एनर्जी, व्हिच आई फील योगा प्राणायाम हेल्प्स अ लॉट। कीप योरसेल्फ एनर्जेटिक डिसिप्लिन्ड, उससे बहुत फर्क पड़ता है।
0: तो आप मेडिटेशन भी करते हो? ओके ओके ओके, तो मैम सब चीज एक साथ बता रही है और मैम बता रही है कि आप लोग अगर योगा करोगे तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आप लोगों को अपनी लाइफ में। और मैम इसी के साथ साथ मैं सभी लिसनर्स को बता देना चाहता हूँ कि मैम का जो ये आप बीइंग बेस्ड इन फरीदाबाद और दुबई आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये चीज कैसे हैंडल करती हैं आप?
1: वही जैसे मैंने बताया, कोई ऑप्शन तो है नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वर्क मैटर्स जो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के है, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में है, तो इसीलिए जाना तो पड़ता ही है, बट इट इज ऑलवेज एडवेंचरस
0: जी। तो मैम एक यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल है, जैसे कि मैंने सभी को बताया कि आप आरजे भी रही हैं, रेडियो स्टूडियो दोनों में आवाज ही पहचान होती है, तो आपके लिए दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है?
1: आई थिंक कोर्ट में आरजे ही नहीं कर सकते योरसेल्फ।
0: ओके,
1: So,
0: रेडियो में तो हम लोग अपने दिल की बात खुल के बोल
1: सकते हैं, वहाँ पे ना दिल की बात नहीं खुल के बोल सकते, वहाँ पे जो क्लाइंट चाहते हैं वही बोल सकते हैं, जो जज सुनना चाहते हैं वही बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैम ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फीनिक्स अनबाउंड, मगर करेंगे उसके बारे में बात मगर इस छोटे से गाने के बाद। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ, एंड मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट रूपा।

0: शब्द होता है फीनिक्स, जो कि एक काल्पनिक पक्षी है जो ग्रीक और इजिप्शियन माइथोलॉजी में मिलता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि जब फीनिक्स बूढ़ा हो जाता है तो वो आग में जलकर राख हो जाता है और उसी राख से एक नया फीनिक्स। आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं खास मुलाकात। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट रूपा। और फीनिक्स की बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मैम इज एन ऑथर ऑफ राउंड। मैम फीनिक्स ही क्यों?
1: क्योंकि एज यू एक्सप्लेन कि इट्स अ बर्ड दैट

0: सब इकट्ठा करके बैठे हैं। और मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैम ने ये सब अभी नहीं सीखा, ये बहुत टाइम से सीख रखा है। तो मैम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एडवोकेट से योगा में कैसे गए?
1: सी, या कोई भी प्रोफेशन ले लो।
0: हाँ जी,
1: योगा जो है ना, इट मेक्स यू सेंटर्ड, फोकस्ड, क्लियर, यू नो, यू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो इसीलिए इट बिकेम, सब कुछ हैंडल करने के लिए वो क्षमता भी, तो ऑटोमेटिकली इट वेंट इनटू योगा।
0: जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैम ने जो बुक लिखी है फिनिक्स अनबाउंड, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इन्होंने अपना रुख बताया था। तो मैम स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे आपका रुख बढ़ा?
1: तो हमारे साथ है,
0: बिल्कुल।
1: आई स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट, मुझे बस ये लगता है कि वो सिर्फ अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। सम पीपल बिलीव इन साई बाबा, सम इन अल्लाह, सम इन राम, सम इन कृष्णा, शिवा
0: जी,
1: लेकिन कोई है,
0: बिल्कुल,
1: तो उसको बस अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वो प्रेजेंस जो है, जब लाइफ में ना स्ट्रगल, दुख, ट्रॉमा, कुछ भी एक्सपीरियंस करते ना, तब साथ खड़ा है। इट्स एन इनविजिबल फोर्स, तो दैट फोर्स इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी।
0: ओके,
1: अदरवाइज आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, बट देयर इज वन डिवाइन फोर्स।
0: सो देयर इज वन डिवाइन फोर्स व्हिच वी, बात मैं भी अच्छे से समझता हूँ और मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। और मुझे लगता है कि इस बात को जब स्टार्ट किया है तो आगे बात और भी बढ़ेगी, मगर करेंगे इसके बारे में और भी बात, लेकिन इस गाने के बाद। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6, एडवोकेट रूपायण, आप सुन रहे हैं खास मुलाकात।

0: यहाँ होगी साइबर क्राइम सृजन।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

पूजा पाठ रोजे उपास आता नहीं है मुझको, पर दिल कहता है यू शुड नो, है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

0: ऑथर आरजे और साथ ही साथ थिएटर आर्टिस्ट, भरतनाट्यम डांसर एंड अगर मैं बोलूं सबसे ऊपर एक माँ और एक विमेन। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी जी 9.6 पर। मैं हूँ, तारीफ नहीं थी, ये सारी क्वालिफिकेशंस थी एडवोकेट रूपा की। तो मैम फिर से स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच।
0: एंड इसी के साथ तो मैम एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, सारे लिसनर्स के लिए सवाल है और जितने भी फीमेल लिसनर्स हमें सुन रही हैं, फीमेल फ्रेंड्स या फिर अगर आप अपनी फैमिली में किसी भी फीमेल को ये चीज़ ज़रूर बताइएगा मैम, अगर हर वुमेन को सिर्फ एक लीगल राइट पता होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए?
1: एक लीगल, दो बता सकती हूँ?
0: जी बिल्कुल।
1: क्योंकि स्पेशली फॉर वुमेन ना, ये जानना बहुत जरूरी है दैट दे कैन नॉट बी कॉल्ड टू एनी पुलिस स्टेशन और एनी प्लेस या कुछ रिलेटेड मैटर हो, कोई लीगल केस हो, दे कैन नॉट बी कॉल्ड एनीवेयर आफ्टर सनसेट।
0: ओके मैम, इसमें मेरा एक सवाल छोटा सा है कि क्या फीमेल ऑफिसर्स भी नहीं बुला सकती?
1: नहीं, फीमेल ऑफिसर कम आफ्टर सनसेट, वो भी बहुत ही इमरजेंसी वाले केस में हो सकता है, जैसे मर्डर का सस्पेक्ट हो तो फरार होने का डर लग सकता है, तो तब लेके आना एडवाइजेबल, बट विथ अ लेडी कॉन्स्टेबल और अ लेडी पुलिस ऑफिसर। तो आफ्टर सनसेट दे कैन नॉट बी फोर्स टू गो एनीवेयर इन पुलिस इंक्वायरी और कम टू अ थाना। और दूसरी बात, ये मेरे सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वीमेन भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आफ्टर सनसेट आफ्टर एंड ऑफ डे जो बोलते हैं ना ईओडी, हाँ दैट इज 6 PM के बाद, इट इज एडवाइजेबल करें अंटिल अनलेस इट्स अ वेरी इमरजेंसी मैटर। ऑफिस का अगर कोई मैटर हो वो जो कल में हो सकता है, इट्स बेटर टू पोस्टपोन इट देन कॉलिंग अप अ लेडी आफ्टर सी पुट्स अ कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, इट फॉल्स अंडर इट। तो इवन मेकिंग हर वर्क लेट वो एडवाइजेबल नहीं है।
0: बट काफी बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ लॉ फर्म्स तो नहीं बोलूंगा काफी बार ऐसा किसी फीमेल एम्प्लॉय, जस्ट नॉट ओनली फीमेल एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉयज को टाइम है मान लीजिए 7 बजे तक का, 10 से 7 उनकी शिफ्ट है एंड काम करते करते उनको 9 बज जाते हैं, तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्म की?
1: यस, it is mandatory to arrange for a cab, a safe driver, preferably who's on the payroll of the company itself.
0: Okay. अगर ऐसा वो follow नहीं करते हैं तो एक employee क्या कर सकता है?
1: God forbid, but the female can always approach the human resources and tell that it is it was not required, I could have done that work at home itself. तो ऐसा कोई ऑप्शन मिले ना, इट इज बेटर टू एडवाइज देम टू वर्क फ्रॉम होम कि ओके यू रीच होम एंड यू डू इट, फिर 11 बजते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो थोड़ा सा वो सेंसिटिविटी माइंड में रख के काम करना जरूरी है।
0: तो यूं ही सवालों का सिलसिला जारी रहेगा मगर थोड़ी देर बाद, उससे पहले म्यूजिकल ब्रेक आप सभी के लिए। आप सुन रहे हैं खास मुलाकात मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद
2: द लास्ट राइड King.

0: सरदार सुरक्षित रहो। अरुण रानी
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज बनी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जब भी हम एक एडवोकेट की बात करते हैं तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और सवाल ये आता है कि हम लोग कैसे बनेंगे। सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट रूपा मैम, जो कि एक ऑथर भी हैं, आरजे भी रह चुकी हैं और लॉ फर्म दुबई और इंडिया दोनों में चला रही हैं और योगा टीचर, न जाने क्या क्या क्वालिफिकेशन मैम के पास है। तो मैम फिर से स्वागत है आपका। एंड मैम एक सिंपल सवाल पूछूंगा कि आज के यूथ में लॉ को करियर के रूप में आप कैसे देखते हैं?
1: सी, लॉ इज अ वेरी वर्सेटाइल प्रोफेशन। ये ऐसा प्रोफेशन है वेर वी आर मास्टर ऑफ एवरीथिंग। देखो, अगर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस आता है
0: जी,
1: तो यू आर बेटर देन अ डॉक्टर, क्योंकि वो प्रूव करना होता है कि कैसे हुआ या सर्जरी में क्या गया। अगर कोई टेलीकॉम या टेक्नोलॉजी रिलेटेड, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कहाँ हुआ डिले। एंड अगर कंस्ट्रक्शन का देखें तो यू आर ऑलरेडी अ सिविल इंजीनियर। सो लॉ एक डाइवर्स प्रोफेशन है, तो जहाँ पे जिनका इंटरेस्ट है ना, सो इसमें काफी प्रैक्टिस एरियाज है।
0: ओके,
1: तो इफ द यूथ इज इंटरेस्टेड से फॉर एग्जाम्पल इन मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, तो दे कैन ऑब्वियसली गो फॉर IPR, intellectual property areas है, which they can explore.
0: क्या lawyer का मतलब सिर्फ वो होता है कि हम लोग कोर्ट के बाहर बैठे हैं, या फिर lawyer का मतलब इससे काफी ज्यादा बड़ा है?
1: अरे बहुत ज्यादा बड़ा है। जो कोर्ट के बाहर लिटिगेटर्स और जो बाहर कंपनीज में है और आर्बिट्रेशन में है, सो दे आर not only litigators but they are also corporate lawyers, they are all corporate advisors, very vast. मुझे तो लगता है हर department में एक legal professional होना चाहिए।
0: बिल्कुल, और आजकल तो हर एक content creator को भी एक legal advisor चाहिए होता है।
1: Yes, don't fall into controversy.
0: बिल्कुल। What do you think कि क्या opportunities बढ़ रही है?
1: Opportunities है, अगर explore किया जाए, that is beyond the courtroom.
0: जी।
1: कोर्ट में जो है वो लिटिगेटर्स हैं, उससे बियॉन्ड भी लॉ ऑल एनकम्पासिंग।
0: बिल्कुल,
1: इट इज देयर इन एवरी सेक्टर, इन एवरी डिपार्टमेंट। आप ये देख लो, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज भी देख ले, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज हैव टू बी फॉलोड, कंप्लायंसेस हैव टू बी डन, अगेन देयर इज अ नीड ऑफ अ लॉयर। सो इट इज देयर एवरीवेयर इन ऑल डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग ऑल्सो, कॉपीराइट इश्यूज।
0: बिल्कुल। तो जितने भी लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लॉ फॉर इट एंड इसी के साथ साथ रेडियो महारानी भी सुनते चाहिए, हम लोग बात कर रहे हैं खास मुलाकात में एडवोकेट रूपा जी के साथ। एंड आगे हम लोग और भी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले, मगर इसी से पहले अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप लोग हमारे नंबर 5489689 फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही क्षण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। आप सुन रहे हैं खास मुलाकात और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद एक एडवोकेट नहीं है, जो भी लिसनर्स नए नए जुड़े उन सभी को बता दूं मैम हमारे साथ बैठी हैं, तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है फीनिक्स अनबाउंड। मैम इस बुक का आइडिया कब आया था और कब लिखी थी ये बुक?
1: ओके स्टार्टिंग में ही दैट मैं इंसान हूँ, गलतियाँ होती है, तो मैंने भी गलती करी
0: जी,
1: जिसके वजह से मेरा सब कुछ लूट गया। यू कैन से एक्चुअली आई वाज सेविंग्स थी वो चली गई, धोखा हुआ मेरे साथ एज अ लेडी, मेरा घर
0: जी,
1: गाड़ी, आई मीन जो भी आप कमाते हो
0: जी
1: अपनी लाइफ में वो सब कुछ गई। सो एट द एज ऑफ 40 यू नो व्हेन यू आर ऑन द रोड पेनीलेस
0: जी,
1: आई एम पुटिंग इट वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, पेनीलेस, तब ऐसे लगता है कि इस साल के नहीं हो, कॉलेज के नहीं हो, कि आज आपने सब कुछ खो दिया है, यू स्टिल हैव कॉन्फिडेंस कि यू कैन रीस्टार्ट। एट 40 यू नो आई रियलाइज्ड एट दैट मोमेंट मेरे सिर के ऊपर छत नहीं है
0: जी।
1: अब यहाँ मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो जो मुझे बचाए रखी वो थी मेरी स्किल्स, मेरे जितने भी ये स्किल्स हैं, मेरी जॉब, और वो धीरे धीरे से, मतलब मेरा कर्जा जो है यू कैन से इट वाज अराउंड 10 folds, माय सैलरी मस्ट हैव बीन दिस मच 1 fold एंड कर्जा इज 10 fold, ट्रस्टिंग पीपल है ना, बैकवर्ड ही जा रहा था। तो At the age of 40 to restart again or touch wood, Gaurav, I have to say, it has been rocket.
0: ये life जब पलटती है तो 0 से 100 जाने में time नहीं लगाती।
1: Time नहीं लगाती। And अपने ऊपर भरोसा करना। So I feel that at the age of 40 also ना, you can be anything you want. Now, restatured, everything is perfect just because of the change of mind. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव सोचना, नेगेटिविटी को थोड़ा दूर रखना, ये नहीं क्योंकि नेगेटिविटी हर जगह, लेकिन थोड़ा सा उसको एट बे रख के अपने ऊपर फोकस करना, अपनी खुदाई में रहना, जस्ट फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे धीरे धीरे जो है everything happens the way you want।
0: अपनी बुक में एक चैप्टर है द पावर ऑफ फॉरगिवनेस।
1: यस।
0: तो वो चैप्टर लिखते वक्त मतलब आप क्या किसी को माफ करना ज्यादा मुश्किल था या फिर खुद को माफ करना ज्यादा मुश्किल था?
1: मुझे लगता है दोनों, क्योंकि पहले तो दूसरे लंबा प्रोसेस है, यू हैव टू, मेरे को तो अ लॉट ऑफ हेल्प केम फ्रॉम योगा, मेडिटेशन एज वेल एज लाइफ कोचिंग। सो मेरी फ्रेंड है प्रियंका मदान, उनकी है पाथ टू हार्मनी, फी चेंजेस आए लाइफ कोचिंग में। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, Forgiveness is one of the toughest thing to
0: do. बिल्कुल।
1: You know it's not easy. तो बहुत exercises हुए, continuously crying, लिखना, उनके बारे में लिख के फिर उसको जलाना, but last में ना हम realize करते हैं कि forgiveness हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। Because I mean अपनी मुट्ठी hard करके रखो।
0: बिल्कुल।
1: Make it harder.
0: Okay.
1: Keep making it harder. Is it easy?
0: हमें ही दर्द होएगा last.
1: हाँ. And now I tell you, for your hand, क्या feeling आती है?
0: बहुत relaxation.
1: So तभी realize होता है forgiveness हम दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए. It's good for us. क्योंकि वो जो negative chemicals that release in our body, that also stops. अगर रखते हैं अपने अंदर, उतनी ही केमिकल्स निकलती है, तभी तो वो बोलते हैं स्ट्रेस रिलेटेड लाइफस्टाइल डिजीजेस।
0: जी जी जी। तो जितने भी लोग स्ट्रेस में हैं, जो भी लोग अगर किसी को माफ नहीं कर पा रहे, एक बार माफ करके देखिए। आपको आज कोई लिसनर अपनी लाइफ के एशेज वाले फेज में है, मतलब उसको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, जहाँ सब कुछ खत्म सा लग रहा हो उसे, तो आप उन्हें एक छोटा सा क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो अपनी लाइफ का वो
1: फेथ In that invisible force that I said, देर इज अ डिवाइन प्रेजेंस, वो हमेशा रहेगी. वो जो है ना शरणागति, सरेंडर, ब्लाइंड फेथ के साथ, यू नो फीलिंग दैट दिस इज ओवर, दैट इज नॉट. वो बोलते हैं ना कि यू गॉड गिव्स यू टेस्ट विच यू कैन ओनली अकम्प्लिश. तो यही सोचना कि ओ गॉड वाई मी ना करके. एंड इवन फॉरगिवनेस पे मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ. फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि आपने फॉरगिव कर दिया, ये नहीं कि यू नो गो बैक एंड हग दैट पर्सन. द थिंग इज
0: बोल जाओ
1: फॉरगिव. यस,
0: जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा. और मैम आज हमारे साथ जुड़ने और हमारे इतना ज्यादा मैं कहता हूँ मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच. और मैं सभी लिसनर्स को बता देना चाहता हूँ फिनिबल है.
1: yes,
0: आप लोग इसको जरूर पढ़िए, एक बार मंगाइए अपने पास और पढ़िए. और अगर आपको लगता है कि आपको कहीं नहीं मिल रही, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर आइए, वहां पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड मैम रेडियो महारानी की तरफ से आपको ढेर शुभकामनाएं.
1: ओ माय गॉड, मोस्ट वांटेड मुंडा ही डेफिनेटली इज.
0: जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे सारे लिसनर्स के लिए.
1: Live each day as if it is the last day of your life.
0: अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. और इसी के सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8 तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. दिस इज गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम खास मुलाकात.
2: Say whoa!

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए हो, जिंदगी को बचाए, वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं, एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है।
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो, अरूर सेफ्टी कैंपेन 0.6 FM कुछ हटके।

0: केवाईसी अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

कभी कभी एक आवाज सिर्फ गाती नहीं, वो हवा की तरह दिल के कोने कोने में घुल जाती है। और जब वो आवाज पहाड़ों से आती हो तो उसमें एक अजीब सा सुकून होता है। आज हम बात कर रहे हैं उसी सुकून से, रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं मोहित चौहान की। 1966, हिमाचल प्रदेश का नहन, शांत शहर पहाड़ी, इसी माहौल में पैदा हुए मोहित चौहान। बचपन से ही उनका रिश्ता नेचर से गहरा था। उनके पिता एक जियोलॉजिस्ट थे, इसलिए मोहित का बचपन अलग अलग पहाड़ी इलाकों में गुजरा। स्कूल के दिनों में ही उन्हें म्यूजिक का शौक लग गया। वो क्लासिकल या बॉलीवुड के गाने नहीं बल्कि फोक एंड सूफी म्यूजिक सुनते थे। उन्हें लगता था कि गाना सिर्फ सुर नहीं एक एहसास होता है। कॉलेज के दिनों में उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, शायद इसी वजह से उनकी, लेकिन तब तक उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया था कि उन्हें सिंगर ही बनना है। एक तरफ सेफ करियर ऑप्शंस थे, दूसरी तरफ एक अनजाना सपना। पर मोहित ने दिल की सुनी, उन्होंने दिल्ली की तरफ रुख किया और वहीं से एक कहानी स्ट्रगल की, एक कहानी दोस्ती की और एक बैंड की जिसका नाम था सिल्क रूट। और इसी सिल्क रूट ने मोहित चौहान को एक पहचान दी, लेकिन सफर अभी सिर्फ शुरू ही हुआ था। अडुबा से होते हुए वो आगे गए, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना।

0: क्या?
1: अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
1: इरशाद।
0: अरे आगे खाली हो जाएगी।
1: क्या
0: बोल?
1: कौन है?
0: रोडवेज वाले।
1: ओके ओके।
0: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
1: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी।
0: सुनो
1: सुनाओ।
0: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
1: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी।
0: सुन

था एक गाना, डूबा डूबा, यूथ एंथम बन गया। ये गाना लाउड नहीं था, इसमें डांस बीट्स नहीं थे, इसमें सिर्फ एक सिंपल सी मेलोडी थी और मोहित की खुल। हर कॉलेज फेस्ट में, हर गिटार वाले लड़के के प्लेलिस्ट में ये गाना बजने लगा। मोहित की आवाज में एक रॉ होनेस्टी थी, वो परफेक्ट नहीं लगती थी और शायद इसीलिए परफेक्ट लगती थी। लेकिन जैसे अक्सर होता है, सिल्क रूट का सफर ज्यादा लंबा नहीं चला, बैंड टूट गया। अब मोहित के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या उनकी पहचान सिर्फ डूबा डूबा तक ही रही थी? इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं था बॉलीवुड में, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक दरवाजा खोला और उस दरवाजे के पीछे खड़े थे एआर रहमान। और कैसे उन्होंने जीता एआर रहमान का विश्वास, करेंगे इसके बारे में बात मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो मजाना, आप सब सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ में स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

कभी कभी जिंदगी में एक इंसान का विश्वास सब कुछ बदल देता है, और मोहित चौहान की जिंदगी में वो इंसान थे A.R. रहमान। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.7 एंड आप सुन रहे कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं मोहित चौहान की। 2000s की शुरुआत में मोहित चौहान को रहमान के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म थी रंग दे बसंती, और फिर आया गाना ने मोहित की आवाज को एक नई गहराई दी। अब वो सिर्फ इंडी सिंगर नहीं थे, वो बॉलीवुड का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। साल 2009, फिल्म आई लव आजकल, गाना था तुमसे ही। इस गाने ने मोहित हर ब्रेकअप, हर प्यार, हर तन्हा रात में ये गाना बजने लगा। उनकी आवाज में जो सॉफ्टनेस थी, वो सिंप्लिसिटी थी, उसने यूथ को कनेक्ट कर लिया। फिर आया मसकली दिल्ली 6 से मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, और फिर जो भी मैं, हाँ बिल्कुल आपने सही समझा, रॉकस्टार से जो भी मैं, जो ये गाना था उसमें मोहित ने सिर्फ गाना नहीं, उनकी आवाज में एक दर्द था, एक रेबल था और आजादी थी। वो सिंगर जो कभी नाहन के पहाड़ियों में खामोशी में गाता था, अब पूरे देश की आवाज बन चुका था। और कैसे वो रॉकस्टार से एक उन्होंने नई पहचान बनाई, करेंगे इसके बारे में बात, लेकिन इस गाने के बाद।

0: बाहर का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस कैंप के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर
0: ओडीएर भाई स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़ रहे साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन टॉप से बी सेफ बी अवेयर।

0: किया है।
1: आहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वाले
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो
0: भाई, सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था
0: हैंड पे, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल। बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

अगर मोहित चौहान की लाइफ एक मूवी होती तो उसका टर्निंग पॉइंट होता रॉकस्टार। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं दब। साल 2011, रणबीर कपूर स्टारर रॉकस्टार, म्यूजिक बाय एआर रहमान, और मोहित चौहान की आवाज जॉर्डन के कैरेक्टर की रूह बन गई। फिर से आजादी का एहसास, और उसके बाद गाना आया साड़ा हक एथे रख, यानी कि एक रेबल की चीख थी, और फिर गाना आया तुम हो, और उस गाने में प्यार की खामोशी, हर इमोशन को कि लोग भूल गए कि स्क्रीन पर एक्टर है। उन्हें लगा जैसे मोहित खुद अपनी कहानी सुना रहे हैं। इस फिल्म के बाद उन्हें कई अवार्ड्स मिले, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड था लोगों का प्यार। ना ही कॉन्ट्रोवर्सीज में रहे, वो वही सिंपल ग्राउंडेड इंसान रहे जो नेचर से प्यार करता है। उन्होंने अपने होम टाउन में म्यूजिक फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने शुरू किए ताकि नए टैलेंट को मौका मिले। उनकी फिलॉसफी सिंपल है, म्यूजिक शुड हिट। उनकी आवाज आज भी सुकून देती है, और कैसे वो आवाज जो कभी पुरानी नहीं होती वो लेजेंड बनी, करेंगे इसके बारे में बात। मगर इस गाने के बाद आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूं द मोस्ट।

0: अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे की सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो?
1: बच्चियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पी।

0: नहीं पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही
0: अवेयर भी बन। और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें, किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। इस्तेमाल से बचे, हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 बी अवेयर।

कुछ आवाजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं इंडियन रॉक स्टार मोहित चौहान की। मोहित चौहान की जर्नी सिर्फ सक्सेशंस की, साइलेंस की और अपने रूट से जुड़े रहने की। उन्होंने कभी अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं की, ना ही ट्रेंड के पीछे भागे। उन्होंने वही गाया जो उनके दिल को सही लगा। इसीलिए आज भी जब तुमसे ही बचता है लोग रुक जाते हैं, या फिर डूबा डूबा सुनते ही 90s याद आ जाता है, फिर से उड़ चला सुनते ही दिल को आजादी चाहिए होती है। मोहित चौहान ने हमें सिखाया कि सक्सेस कहां से मिलती है। नाहन के पहाड़ों से निकली वो आवाज आज भी हवा के साथ कहीं ना कहीं गूंज रही है। और शायद इसीलिए मोहित चौहान सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक एहसास है। और यस, तो कैसी लगी आपको इनकी लाइफ स्टोरी बताइएगा जरूर। नंबर है हमारा 9654896896। और अगली कहानी आप किसके बारे में सुनना चाहते हैं ये भी हमें मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ 9654896। रेडियो महारानी पर ये गाना और मैं लेता हूँ इजाजत। मिलूंगा आप सभी से फिर से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है
1: भाई? मैं तो लंबी
0: रे। भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आप रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा, और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
4: प्यार हुआ, इकरार हुआ है प्यार से फिर
3: की। ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
4: आवारा हूँ, आवारा
3: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग। सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान।
1: और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्र और अनोखी कहानियां लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं, प्रत्यारोपण विशेषज्ञ के साथ चर्चा करने वाले हैं, जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देंगे। कहीं मत जाइएगा, हम थोड़ी ही देर में वापस आते हैं।

0: करने का रूल बच्चा बच्चा जानता है।
1: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर
2: सर्विस, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह
4: पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आप सभी का ऑर्गन इंडिया के इस खास कार्यक्रम। जैसे कि हमने आपको ब्रेक के पहले बताया था कि आज हमारे साथ ऑर्गन इंडिया से डॉ

0: किन विशेष परिस्थितियों में हम ये इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और किन पेशेंट्स में इनका हम लाभ नहीं ले सकते। तो आइए चलते हैं हम डॉक्टर त्रिपाठी के पास। डॉक्टर त्रिपाठी जी, आप हमारे श्रोताओं को स्वैप ट्रांसप्लांट के बारे में बताइए कि ये किस तरह का ट्रांसप्लांट होता है और इसकी विशेषता क्या होती है।
1: देखिए, स्वैप ट्रांसप्लांट को समझने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नौ की किडनी खराब होती है तो ऐसी स्थिति में ट्रांसप्लांट के लिए उसे किसी अपने परिजन की, जिसका उसके साथ ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है और वो मेडिकली फिट है, उसकी किडनी उसके शरीर से लेके मरीज के शरीर में प्रत्यारोपित की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, सिर्फ निकट संबंधी ही आपको किडनी दे सकता है, डोनेट कर सकता है
0: जी।
1: तो अगर आपके परिवार में कोई भी ब्लड ग्रुप मैच डोनर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपके पास विकल्प बहुत कम रह जाते हैं। या तो आपको बिना ब्लड ग्रुप के ट्रांसप्लांट पे जाना पड़े, स्वैप ट्रांसप्लांट बहुत जरूरी होता है। स्वैप ट्रांसप्लांट क्या है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपके परिवार में किसी का ब्लड ग्रुप बी है, ऐसी स्थिति में वो आपको नॉर्मल ट्रांसप्लांट के लिए किडनी नहीं दे सकता। इसी तरह से एक और परिवार है जिसमें मरीज का, वो भी डोनर अपने मरीज को नॉर्मल कंपेटिबल ट्रांसप्लांट के लिए वो भी उपयुक्त तो नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आपका डोनर जिसका ग्रुप बी है और दूसरे मरीज जिसके मरीज का बी है और डोनर का ए है, अगर आप आपस में, अगर आप इस किडनी को एक्सचेंज कर लें आपस में, तो एक कंपेटिबल ट्रांसप्लांट संभव हो सकता है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, आपको महंगे बिना ब्लड ग्रुप के ट्रांसप्लांट पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको नॉर्मल रेट पे कंपेटिबल ट्रांसप्लांट उपलब्ध होगा। ह्यूमन ट्रांसप्लांट एक्ट है उसके हिसाब से ये लीगल है कि इस तरह के एक्सचेंज संभव हैं, किए जा सकते हैं। तो इसे हम स्वैप ट्रांसप्लांट कहते हैं।
0: डॉक्टर साहब, आपने जो बताया कि ये ट्रांसप्लांट लीगल है, तो इसमें कुछ विशेष मेंट की तरफ से या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, थोड़ा सा इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं।
1: जी बिल्कुल, इसके लिए रूल्स की ज़रूरत होती है। जो हमारा लास्ट अमेंडमेंट है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट का, उसमें अलग अलग से स्वैप ट्रांसप्लांट का उसमें नाम है, उसकी जो प्रोसीजर लीगल वर्कअप करते हैं उसमें स्वैप ट्रांसप्लांट के लिए भी अलग फॉर्मेट होते हैं, उसमें दोनों ही परिवारों की सारी लीगल डिटेल्स लगाई जाती है। तो जैसे हम एक फाइल में एक मरीज और डोनर के पेपर्स लगाते हैं, इस केस में दोनों परिवार आ गए साथ में उसके रिलेशन। और इसमें भी ये जरूरी है कि आपस में कोई पैसे का लेन देन ना हो, ऑर्गन की किसी तरह से खरीद फरोख्त ना हो। तो यहाँ भी आपके अकाउंट स्टेटमेंट चेक करना कि आप चूंकि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अदला बदली है, तो ये मान पैसे के लेन देन की जरूरत ना पड़े। तो इन सब चीज़ों की जो रूटीन जाँचें सामान्य ट्रांसप्लांट में होती है वो इसमें भी होती है। और जो आपकी ऑथराइजेशन कमेटी है वो स्वैप ट्रांसप्लांट के लिए इन सब चीज़ों को देखती है और उसकी परमिशन के बाद ही हम ट्रांसप्लांट पे जा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, जो आपने ये स्वैप ट्रांसप्लांट दोनों मरीज के परिवार जनों के हम ये एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इसमें भी ये चीज़ अप्लाई होती है, ये चीज़ लागू होती है कि जो डोनर है वो पेशेंट का परिवारजन निकट संबंधी ही होना चाहिए या फिर उन लोगों को भी इसमें, या डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं जो दूर के रिश्तेदार हैं, हम उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं?
1: नहीं, यहाँ पर भी निकट संबंधियों का कानून तो वही रहेगा जो सामान्य ट्रांसप्लांट पे है। अगर स्वैप का जो एक ग्रुप है ट्रांसप्लांट पे लगते हैं, उसका निकट संबंधी होना चाहिए, उसके जो भी जो कागज हैं, जो सरकारी कागज हैं उसकी मैचिंग के वो जरूरी होगा। अगर वो जेनेटिकली रिलेटेड है तो उनके केस में जो HLA टाइपिंग हम करते हैं वो सब की जाती है। अंतर सिर्फ ये है कि जरूरी नहीं है, क्योंकि इस मरीज का डोनर दूसरे मरीज का परिजन है तो उनका आपस में संबंध तो नहीं होगा। तो आपको अपना जो डोनर है, जो एक्चुअल डोनर नहीं है, जो एक्सचेंज में जा रहा है, उसके साथ आपके संबंध को स्थापित करना पड़ेगा।
0: अगर वो आपका नहीं है
1: तो नहीं है। केस में आपका संबंधी तो होना चाहिए, दो संबंधियों के बीच में ये एक्सचेंज ना कि अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट है। इसे भी हम रिलेटेड ही ट्रांसप्लांट मानेंगे।
0: जो सामान्य ट्रांसप्लांट है उसकी प्रक्रिया में आप दूर के रिश्तेदारों से, अपने दुकान वालों से एक विशेष प्रक्रिया के तहत अंग ले सकते हैं, जिसमें सरकार की परमिशन की ज़रूरत होती है और सरकार पूरी चीज़ें चेक करके, सारी चीज़ें देख के कि कोई मनी का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, कोई लेन देन नहीं हो रहा है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसमें निकट संबंधी ही होने चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट में अगर आपका नियर रिलेटेड ना हो, आपके माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी ये नहीं है, तो ऐसे केस में इनकी भी किडनी लेते हैं। लेकिन स्वैप ट्रांसप्लांट में सिर्फ रिलेटेड डोनर ही हो सकता है, आप उसी का ही एक्सचेंज दूसरे परिवार से कर सकते हैं
0: जी। सर, हम यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम थोड़े ही समय में वापस आएंगे और अपनी इस बातचीत को

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: दोस्तों हम फिर से यहाँ पर उपस्थित हैं अपने इस कार्यक्रम को लेके, जिसका नाम है, बात कर रहे थे डॉक्टर त्रिपाठी से जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और बंसल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं जो कि भोपाल में स्थित है। तो दोस्तों हम अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हमने अभी इस बारे में बातचीत की कि इसकी क्या विशेषता है, थोड़ा सा ये हमारे श्रोताओं को कि किन मरीजों में स्वैप ट्रांसप्लांट पॉसिबल है और किन मरीजों को स्वैप ट्रांसप्लांट सजेस्ट नहीं किया जाता, उनको पहले ही मनाही कर दी जाती है कि स्वैप ट्रांसप्लांट किस पर्टिकुलर केस में पॉसिबल नहीं किया जाता है। सबसे पहले तो अगर आपके परिवार में, पहले हम देखते हैं कि आपके परिवार में ब्लड ग्रुप मैच डोनर है या नहीं है। तो सपोज किसी की फैमिली में ब्लड ग्रुप मैच लोग मिल रहे हैं, वैसी स्थिति में हम उन्हें स्वैप ट्रांसप्लांट की सलाह भी नहीं देंगे और अलाउ भी नहीं। तो आप जाहिर सी बात है कि आप नॉर्मल ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे। दूसरी चीज आती है कि एक डिफिकल्टी होती है कि सपोज आपका रिसिपिएंट जो है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो ऐसी स्थिति में उसके घर में अगर डोनर नहीं है तो जो कि किडनी चाहिए, और उस दूसरे परिवार के डोनर का अगर ओ ग्रुप है तो वो अपने परिवार को भी किडनी दे सकता है। तो इन ग्रुप्स के ट्रांसप्लांट बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इनमें स्वैप में उन्हें डोनर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इन लोगों को किडनी कम मिलती है। अगर आपके डोनर के साथ आपका ब्लड ग्रुप मैच तो कर रहा है लेकिन डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडी है आपके शरीर में, अर्थात मैचिंग नहीं है उसमें, अगर आपका ट्रांसप्लांट होता है तो शायद आपकी किडनी रिजेक्ट कर जाएगी और डोनर का ब्लड ग्रुप दे सकता है ब्लड ग्रुप के हिसाब से लेकिन उसमें एंटीबॉडी होने की वजह से वो फिट नहीं है, ऐसी स्थिति में ओ ग्रुप के रेसिपिएंट को भी अपोजिट से किडनी मिल सकती है। तो आमतौर पे जब भी कोई पेशेंट रजिस्ट्री के लिए आता है तो हम ओ ग्रुप, हम उन्हें बताते हैं कि आपके केस में स्वैप के लिए डिफिकल्टी है, और ऐसे केसेस जब भी आएंगे जो मैंने आपको बताया डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडी वाले, तो वैसे केसेस में हम इन डोनर्स को आपस में मिलाते हैं।
2: डॉक्टर साहब, आपने कुछ देर पहले ऐसे ट्रांसप्लांट की बात की थी, एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, थोड़ा सा हमें इस बारे में विस्तार से बताएंगे कि ये किस तरह का ट्रांसप्लांट होता है।
3: देखिए, सामान्य रूप से जब भी आप रूटीन में सुनते हैं कि किसी को ब्लड चढ़ाना है तो ब्लड ग्रुप कंपेटिबिलिटी किसको हम बोलते हैं कि ओ ग्रुप किसी से भी ब्लड ले सकता है, ए ग्रुप का ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, तो यही चीज़ें मृदा प्रत्यारोपण में भी यही संभावनाएँ लागू होती हैं। तो अगर ऐसा कोई डोनर आपके पास है आप ट्रांसप्लांट पे चले जाते हैं, लेकिन अगर आपका ग्रुप ए है और डोनर का बी है, बी ग्रुप की किडनी आपके शरीर में जाएगी तो किडनी रिजेक्ट हो जाएगी। इन मरीजों में अगर ट्रांसप्लांट होता है तो इसे हम एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ऐसा कैसे संभव है? तो जब किसी डोनर का ब्लड ग्रुप बी है और रेसिपिएंट जो बी ग्रुप का एंटीबॉडी है, उसको हम कुछ दवाइयों प्लाज्मा फेरेसिस के माध्यम से शरीर से एंटीबॉडीज को हटा देते हैं। तो एक प्लाज्मा फेरेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो वाइट वाला ब्लड है, प्लाज्मा है, इसी में सारी एंटीबॉडीज होती हैं। उस एंटीबॉडी ना बने इसके लिए काफ़ी पहले से इम्यूनोसप्रेशन दिए जाते हैं, कुछ महंगे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि शरीर में रिबाउंड ना हो, फिर से एंटीबॉडीज ना बने। जब एंटीबॉडी की मात्रा एक खास लिमिट में आ जाती है, ना के काफ़ी कम हो जाए, उसका अपना क्राइटेरिया होता है, हर सेंटर का अपना क्राइटेरिया होता है, उस स्थिति में गुर्दा प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। क्योंकि एंटीबॉडीज लेवल कम है तो शरीर उस किडनी को एक्सेप्ट कर लेता है और धीरे धीरे एक एकोमोडेशन की प्रोसेस होती है, एकोमोडेट कर जाती है। भविष्य में चूंकि आप ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में हैं, आपने एंटीबॉडीज का लेवल एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बनता, और इन मरीजों में भी ये देखा गया है कि ये ट्रांसप्लांट का सफलता का रेट भी करीब करीब कंपेटिबल ट्रांसप्लांट के बराबर ही होता है, जिसमें थोड़ा 6-7-8 लाख तक का जा रहा है तो करीब करीब 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं इसमें, क्योंकि प्लाज्मा फेरेसिस और इन दवाइयों का कॉस्ट होता है। लेकिन अगर इनिशियल फेज अच्छी निकल जाती है, बॉडी एक्सेप्ट करती है, तो लॉन्ग टर्म आउटकम इसमें भी बहुत अच्छा होता है।
2: जैसा कि आपकी बात से मैं ये समझ से है, तो इस पूरे प्लाज्मा फेरेसिस की प्रोसेस में उस एंटीबॉडीज को कम करने में, उस लेवल तक आने में कितना समय लगता है मरीजों को?
3: देखिए, समय इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स नहीं होता कितना समय लगे कि शरीर में एंटीबॉडीज लेवल कितने हैं। तो जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है और डोनर का बी है, तो बी ग्रुप का एंटीबॉडी का लेवल टेस्ट किया जाता है सबसे पहले। तो कई लोगों में ये एंटीबॉडी लेवल बहुत हाई होते हैं, जैसे 500 से ऊपर होते हैं, कई लोगों में 38 में ही एंटीबॉडी टाइटर आते हैं। तो जिन लोगों के एंटीबॉडी टाइटर कम हैं उनमें 3-4-5 साइकिल्स में कंट्रोल हो जाता है, एक दिन छोड़ के साइकिल की जाती हैं। जिन लोगों में लेवल बहुत ज़्यादा है कई बार उनमें 2-3 हफ्ते तक भी लग जाते हैं एंटीबॉडीज़ को निकालने में पड़ता है। दूसरा, आजकल कुछ नई चीज़ें मार्केट में हैं, जैसे ग्लाइकोसोम कॉलम्स होते हैं, तो कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जिनको प्लाज्माफेरेसिस के साथ हम जोड़ देते हैं, तो एक सिंगल लंबी साइकिल में हम 1-2 दिन में ही सारी एंटीबॉडीज़ को हटा देते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट आजकल कर रहे हैं हम, कई सभी ट्रांसप्लांट ग्लाइकोसोम कॉलम्स के साथ कर रहे हैं, तो इसमें नॉर्मल ट्रांसप्लांट के कंपेयर में सिर्फ 2-3 दिन एक्स्ट्रा हमें चाहिए होते हैं और हम एंटीबॉडी पूरी तरह से निकाल के टारगेट लेवल पे आते हैं और मरीज को इस ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया।
2: डॉक्टर साहब, इस प्रोसेस के बाद जो शरीर में जो हमने चेंजेस किए, प्लाज्मा निकाल लिया, जो एंटीबॉडीज हैं उनको कम कर दिया, तो ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद वो क्या अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है या ये परमानेंट चेंजेस होते हैं?
3: क्योंकि ये प्रोसेस रिसिपिएंट में होती है, हमें रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज को हटाना है। डोनर की किडनी रिसिपिएंट के शरीर में जानी है, तो डोनर की किडनी रिजेक्ट ना हो इसलिए रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज हमें हटानी है। तो रिसिपिएंट की मैंने आपको बताया एंटीबॉडीज हमने हटा दी, किडनी को हम

0: सप्रेशन में है। अब हमने ऐसी दवाइयां दी है कि शरीर का जो एंटीबॉडीज जनरेशन कैपेसिटी है वो हमने काफी कम कर दी है, तो भविष्य में ये एंटीबॉडी का लेवल एक लिमिट से ज्यादा नहीं जाता। पहले हमने देखा है, पहले 2-3 हफ्ते तक आया, और कई बार ट्रांसप्लांट के बाद हमें फिर से प्लाज्मा करनी पड़ती है पहले हफ्ते में, लेकिन समय के साथ साथ ये एंटीबॉडी जनरेशन बहुत कम हो जाता है, और 2-3 हफ्ते बाद आप मान सकते हैं करीब करीब एबीओ एंटीबॉडीज बहुत हाई लेवल आने की संभावना नहीं है। डोनर तो बिल्कुल सामान्य मरीज की तरह है, जो सामान्य मरीज का डोनर है उसकी तो किडनी वैसे ही निकाली गई है, जो भी परिवर्तन है वो रिसिपिएंट के शरीर में है।
1: सर, किन मरीजों में एबीओ इनकंपैटिबल ट्रांसप्लांट की मनाही होती है?
0: देखिए, ऐसा सामान्य गुर्दा प्रत्यारोपण के कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं, जैसे एक्टिव इन्फेक्शन हैं, किसी को कैंसर है जो कि क्योरेबल नहीं है, या क्योर भी रिसेंटली हुआ है, जिसके लिए अपने अपने हर कैंसर्स की अपने टाइम पीरियड होता है, किसी पेशेंट को एडवांस कार्डियक डिसीज के बाद, तो ऐसे लोगों में ट्रांसप्लांट की मनाही है। मेडिकल रीजन से तो अगर किसी के पास भी डोनर उपलब्ध नहीं है कंपैटिबल, और उसके पास इनकंपैटिबल डोनर उपलब्ध है जिसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं है, तो ये भी इनकंपैटिबल ट्रांसप्लांट में जा सकता है।
1: सर, हम यहाँ पर और अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे। दोस्तों, हम थोड़ी ही देर में वापस आते हैं।

0: ही अलग। मेरी बात सुनते हो? काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000.

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दो।
0: मेरे सब दिखाई दे रहा है
1: बेटा जी। जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली पाए अपना ब्राइट फ्यूचर। बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी, आप सुन रहे हो महारानी 89.6 FM। कुछ छक्के हैं।

0: कुछ पुरानी यादें, पुराने किरदार, आज के जमाने के लिए यादगार।
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: जिंदगी
0: वो एक कल जब बीते थे अपनों के संग कुछ पल,
3: एक दूसरे से करते हैं प्यार हम,
0: जब इशारों में होती थी बातें।

0: का रंग अपनों के संग, शो रात बाकी बाद बाकी में सपना के संग।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है।
0: हर और रविवार रात 8 से 10, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हट।

तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम, तू मेरा दिल है।

0: मिलके एक दिया जलाएं। अंतरतम के विश्वास संग बाती नेहि की सजाएं, दिया जलाएं। एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। अंतरतम के विश्वास संग बाती नेहि की एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। अंतरतम के विश्वास संग बाती नहीं की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
2: दोस्तों हम अपनी इस चर्चा को जारी करते हुए डॉक्टर त्रिपाठी से बात करते हैं। हम बात कर रहे थे एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट और एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट, दोनों के लिए कोई नेशनल रजिस्ट्री या स्टेट लेवल रजिस्ट्री मौजूद है?
3: देखिए बिल्कुल, बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत पहले से काम कर रही हैं। जैसे हमारा 3 रजिस्ट्रीज हैं, वहाँ पे इस तरह से कुछ ऐप बने हुए हैं जिसमें देश के कहीं से किसी कोने से भी कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट अपने मरीज को ऑनलाइन वहाँ पे रजिस्टर करा सकता है और उसके लिए डोनर जहाँ भी उपलब्ध हो जैसे। लेकिन क्योंकि मैं सिंगल सेंटर है, मेरे पास रजिस्ट्री छोटी है, मेरे अपने जितने पेशेंट्स हैं, कई बार हमें उसके कंपेटेबल डोनर के लिए दूसरा स्वैप ढूंढना पड़ता है, कई बार सालों हम वेट करते हैं कि इस मरीज के लिए डोनर कब मिलेगा। ऐसी स्थिति में इस तरह की रजिस्ट्री है
2: महाराष्ट्र,
3: वहाँ पे हमारे पेशेंट्स को स्वैप उसका कंपेटेबल स्वैप मिलना बहुत आसान है, शायद तुरंत मिल सकता है क्योंकि रजिस्ट्री बहुत बड़ी है। तो इस तरह की रजिस्ट्री है। साउथ में बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ बहुत एक्टिवली इन सब चीज़ों पर काम हो रहा है और इसके नंबर हमारे देश में लगातार बढ़ रहे हैं, स्वैप के नंबर बढ़ रहे हैं, ईवीएम कंपेटेबल बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग इस क्षेत्र में काफ़ी तेजी से अपना काम बढ़ा रहे हैं।
2: एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से है कि हम आप मध्य प्रदेश में वो प्रैक्टिस करते हैं नेफ्रोलॉजी की, तो अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में उपलक्ष्य में बात करें तो मध्य प्रदेश में स्वैप ट्रांसप्लांट या एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट कहाँ कहाँ ये सुविधा उपलब्ध है? और
3: देखिए मध्य प्रदेश में भी स्वैप और एबीओ 2019 में हमने ही एबीओ इनकम्पेटेबल और स्वैप दोनों ही ट्रांसप्लांट भोपाल शहर में स्टार्ट किया था। एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट इसके पहले भी इंदौर में कुछ हुए हैं, मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता पाऊंगा। पिछले साल हमारे यहाँ एक मरीज था जिसमें के साथ उसकी मैचिंग नहीं थी और दूसरा एक मुस्लिम फैमिली थी जो कि उत्तर प्रदेश से थी। तो इस तरह से दो अलग अलग स्टेट, दो अलग अलग रिलीजन के लोग हमें मिले और हमने उसकी शुरुआत की स्वैप की। एमपी में उनका सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया, दो फैमिलीज के बीच में हमने स्वैप ट्रांसप्लांट किया। तो कुल 4 रेसिपिएंट्स हमारे स्वैप ट्रांसप्लांट से अब तक फ़ायदा ले चुके हैं। यहाँ पर एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट भी पिछले 6 महीने में हमने 4 एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट यहाँ पर किए हैं। कॉलम्स से होता है जिसमें कि 1 से 2 दिन में ही हम एंटीबॉडीज़ को रिमूव करते हैं, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बहुत कम होता है। तो इस तरीके से 4 एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट भोपाल शहर में हमने पिछले 6 महीने में किए हैं
2: जी। सो इसमें खर्चे की बात करें तो लगभग कितना खर्चा?
3: मैं अपने सेंटर का खर्चा बताऊं तो जो नॉर्मल कंपेटेबल ट्रांसप्लांट है ब्लड ग्रुप मैचिंग, उसका एक्सपेंस सब कुछ मिला के करीब करीब 6 से 7 लाख तक आता है। अगर हम एबीओ इनकम्पेटेबल की बात करें तो ये खर्चा 10 से 12 लाख के बीच, मैटर कम है तो शायद 10 से 11 लाख या 1-2 लाख और एक्स्ट्रा अगर टैक्टर्स ज़्यादा है। तो स्वैप ट्रांसप्लांट का एक्सपेंस में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि जब हमने उसकी डिटेल अभी समझी है कि वो ट्रांसप्लांट पूरी तरह से कंपेटेबल ट्रांसप्लांट जैसा ही है, सिर्फ इसमें डोनर मेडिकली हुआ है, तो उसका खर्चा भी आप करीब करीब 6 से 7 लाख के बीच वाले
2: जी। दोस्तों अब मैं डॉक्टर त्रिपाठी से अपील करूंगा कि वो हमारे श्रोताओं के लिए अगर कोई अपील करना चाहें तो।
3: देखिए मैं जो किडनी की बीमारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमेशा एक पॉजिटिव थॉट रखें। अगर आपकी किडनी ख़राब है, आपकी किडनी पूरी तरह से डैमेज है, आपको डायलिसिस लग रहा है, यहाँ से ज़िंदगी का अंत नहीं है। किसी भी गुर्दा फेलियर के मरीज में एक सही ट्रीटमेंट जो आपको एक लग रहा है या जैसे आप पहले थे, आप सब कुछ खा सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं, आपको रूटीन बहुत सारी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं तो ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा विकल्प है। नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करें, उनसे ट्रांसप्लांट के बारे में सलाह लें। अगर आपके पास डोनर नहीं है तो ये चीज जिनकी हमने बातें की, स्वैप ट्रांसप्लांट, एवियन कंपेटेबल ट्रांसप्लांट, इन सब की सुविधाएं आजकल ज़्यादातर सेंटर्स में उपलब्ध हैं। तो इन सब के बारे में खुल के अपने आप कोशिश करें कि ट्रांसप्लांट पे जाएं। डायलिसिस पे बहुत लंबा समय निकालना बहुत कम संभावनाएं होती हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ में ट्रांसप्लांट की तुलना में बहुत खराब।
2: धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पर आए और हमसे जानकारी हमें उपलब्ध करवाई, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, अगर आप भी अंगदान के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइंस पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं, हमें ईमेल के जरिए समय लेता हूँ। हम जल्दी ही वापस आएंगे एक नए शो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।
4: हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम से आपको स्वैप ट्रांसप्लांट के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली होगी और इन प्रयारों को फायदा होगा। डॉक्टर त्रिपाठी ने बहुत ही सरल भाषा में हमें एक बहुत ही जटिल इलाज के बारे में समझाया और हम सभी का मार्गदर्शन किया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800 पर फोन कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताइए और अपने कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।

0: अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण। द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग योर स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहाँ सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता में दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सक विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं लेते।

फ्रॉम द मूवी फालतू। और इसी गाने के साथ स्वागत है शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ हूँ गीत। कि जिंदगी में कुछ चीजें इतनी घुल मिल जाती हैं कि हम उन्हें क्वेश्चन करना ही बंद कर देते हैं। सुबह उठते ही कॉफी की एक सिप, रात को लेट हो जाएं तो किचन में दो मिनट का सल्यूशन और बचपन से लेकर एक ही भरोसा। तो बिजनेस अनप्लग्ड में आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो एक ब्रांड की नहीं है, एक हैबिट की कहानी है। आज के एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी कंपनी की जो सिर्फ फूड नहीं बनाती बल्कि रूटीन बनाती है। रेस्टोरेंट से लेकर छोटे शहरों के किराने की दुकान तक हर जगह मौजूद है। ऐसी कंपनी जिसका नाम आप रोज सुनते हैं, शायद रोज यूज भी करते होंगे, लेकिन उसके पीछे की जर्नी ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये ट्रेंड बनाती है। सोचिए, जब दुनिया वॉर से गुजर रही थी तब अनसर्टेनिटी ही सर्टेनिटी थी। जब लोग सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोच रहे थे तब उसी वक्त एक कंपनी क्वाइटली अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रही थी। उनकी इम्पोर्टेंस क्वालिटी का नॉन नेगोशिएबल स्टैंड। ये सिर्फ बिजनेस डिसीजंस नहीं थे, ये विजन थे। बिजनेस अनप्लग्ड का ये एपिसोड नंबर्स या प्रॉफिट से शुरू नहीं होता, ये शुरू होता है भरोसे से। एक ऐसा भरोसा जो जेनेरेंस ने जो खाया वो बच्चों ने खाया और वही आज चॉइस है। नेक्स्ट जनरेशन भी वही अप्लाई भी कर रही है, लेकिन हर बड़ा एम्पायर एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू होता है। क्वेश्चन क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है? और जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसने लग्जरी से शुरुआत नहीं की, उसने शुरुआत की जरूरत से। एक जरूरत जो साइंस से जुड़ी थी, न्यूट्रिशन से जुड़ी थी और इंसानियत से जुड़ी थी, और शायद इसी वजह से ये ट्रस्ट सेल करती है। आज ये कंपनी मल्टीनेशनल है, ग्लोबल है और दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनीज में से एक गिनी जाती है। इसके प्रोडक्ट्स कॉफी से लेकर चॉकलेट्स तक, बेबी फूड से लेकर इंस्टेंट मील्स। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंपनी का असली मैजिक फैक्ट्री में नहीं बल्कि सोच में छुपा हुआ है। एक ऐसी सोच जो हर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने का दम रखती है। जब दुनिया लड़ रही थी ये कंपनी एक्सपेंड कर रही थी, जब मर रही थी और जब लोग सिर्फ सर्वाइवल मोड में थे ये फ्यूचर प्लान कर रही थी। सोचो, अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जो वॉर्स देख चुकी है, जनरेशंस बदलते देखे हो, फूड हैबिट्स इवॉल्व होते देखे हो, तो बिजनेस अनप्लग्ड का आज का एपिसोड इसी विजन को अनप्लग करने वाला है। लेकिन अभी नहीं, पहले गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महान।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा उनके लिए सब कुछ बदल सकता है, इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

वंस अगेन 9.6 एफएम कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड, और मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाली हूँ जो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाती बल्कि हैबिट्स बनाती है। एक ऐसी कंपनी जो वॉर्स देख चुकी है लेकिन फिर भी हर दौर में रेलेवेंट रही है। अब आप जरा एक सवाल पूछिए, सुबह जब आप नींद से उठते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एक स्ट्रॉन्ग कॉफी या चाय? कभी लेट नाइट भूख लगा है, बस 2 मिनट में कुछ बन जाए यार। और जब घर में बच्चा हो तो सबसे पहला कंसर्न क्या होता है? न्यूट्रिशन, प्योरिटी और ट्रस्ट। सोचिए अगर एक कंपनी इन तीनों मोमेंट्स का सोल्यूशन हो तो उस कंपनी का मैं आज मैं उसी इम्पैक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी में से एक, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और जो पिछले 150 सालों से ग्लोबल फूड मार्केट पर राज कर रही है। एक नाम जो सिर्फ ब्रांड नहीं है, एक ग्लोबल इमोशन है। नेस्कैफे, मैगी, किटकैट, मिलो, नीडो, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये मोमेंट्स है, ये मेमोरीज है, ये वो टेस्ट है जो बचपन के साथ चलते आ रहे हैं। नेस्ले एक मल्टी से बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि ये लोकल बन जाती है। स्मॉल टाउन्स हो या बिग सिटीज, नेस्ले हर जगह लोगों के रूटीन का हिस्सा बन जाती है। लेकिन आज की कहानी सिर्फ सक्सेसफुल ब्रांड की नहीं है, ये कहानी है साइंस की, विजन की। सोचो जब दुनिया वर्ल्ड वॉर के बीच फेज में थी तब अनसर्टेनिटी हर तरफ थी, उसी वक्त नेस्ले के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही थी। सोल्जर्स के लिए फूड सप्लाई, मिल्क प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन बेस्ड सोल्यूशन, जब बाकी कंपनी सर्वाइवल मोड में, शायद इसी वजह से नेस्ले सिर्फ एक कंपनी नहीं बनी बल्कि एक सिस्टम बन गई। एक ऐसा सिस्टम जहां क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, जहां रिसर्च और साइंस बिजनेस के सेंटर में होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, इतना बड़ा नाम होश्री आइडिया से नहीं हुई थी, ना कोई फैंसी रेस्टोरेंट, ना कोई एलाइट प्रोडक्ट। इस एम्पायर की शुरुआत हुई थी एक सिंपल ह्यूमन प्रॉब्लम से, और वही प्रॉब्लम नेस्ले की पूरी साइकोलॉजी बन गई। तो सवाल ये है, नेस्ले का फाउंडर पहला वो प्रोडक्ट था जिसने नेस्ले को दुनिया भर में पहचान दिलाई। तो बिजनेस अनप्लग में इन्हीं सब बातों पर

ये है रेडियो महारानी का डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है। तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड और हम बात कर रहे हैं नेस्ले ब्रांड के बारे में। ना कोई बिजनेस फैमिली थी, ना कोई इंडस्ट्रियल एम्पायर। इस कहानी के सेंटर में था एक सिंपल सा आदमी, एक फार्मासिस्ट, नाम था हेनरी नेस्ले। साल था 1866। यूरोप उस वक्त इन्फेंट मोर्टेलिटी हाई थी और कई मदर्स अपने हेनरी नेस्ले ने इस प्रॉब्लम को सिर्फ देखा नहीं बल्कि इस पर काम भी किया। उनका बैकग्राउंड साइंस का था। वो मानते थे कि फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, फूड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी सोच के साथ इन्होंने बनाओ मिल्क वीट और शुगर से बना हुआ ये प्रोडक्ट उन मदर्स के लिए था जो अपने बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही थी। और यहीं से नेस्ले का सफर शुरू हुआ। ये कोई मास मार्केट प्रोडक्ट नहीं था, ये कोई प्रॉफिट फर्स्ट आइडिया नहीं था। से इस प्रोडक्ट को लोगों का ट्रस्ट मिला बहुत जल्दी। नेस्ले का नाम घर घर पहुंचने लगा। उसी दौर में स्विट्जरलैंड में भी तीन अमेरिकन भाई एक कंपनी चला रहे थे, एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी। दो अलग सोच, दो अलग अप्रोचेस पर गोल एक क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट। दोनों कंपनीज के बीच कॉम्पिटिशन चला लगभग 20 साल, जो बिजनेस हिस्ट्री में बहुत रेयर होता है। कंपटीशन को खत्म करने की बजाय दोनों कंपनी ने मर्ज कर लिया असली फाउंडेशन। इस मर्जर के बाद नेस्ले सिर्फ एक कंपनी नहीं बनी बल्कि एक मूवमेंट बन गई। साइंस को बिजनेस का सेंटर बनाया गया, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज से ऊपर रखा गया और न्यूट्रिशन को मार्केटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। अगर जेन्युइनली अच्छा होगा तो लोग उसे खुद चूज करेंगे। रेलवेज ने नेस्ले के एक्सपेंशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, अर्बन मार्केट्स तक रीच बनी और फिर आया मॉडर्न एडवर्टाइजिंग का यूज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पोस्टर्स, क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट। लेकिन यहाँ तक का सफर जितना स्मूथ लगा था उतना था नहीं, क्योंकि दुनिया एक और बड़ी स्टॉर्म की तरफ बढ़ रही थी और वो स्टॉर्म था वर्ल्ड वॉर। और इसके बारे में बताऊंगी आपको, लेकिन गाना सुनते हैं बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो। बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी का इफेक्ट।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड। और मैं बात भी कभी बिजनेस की बड़ी ग्रोथ पीस के टाइम में नहीं बल्कि क्राइसिस के टाइम में होती है, और नेस्ले की कहानी का ये फेज इसी बात का सबसे बड़ा प्रूफ है। 20th सेंचुरी के शुरू होते होते दुनिया एक ऐसे दौर में घुस रही थी जहां अनवन कंट्रीज लड़ रही थी, इकोनॉमीज हिल रही थी, सप्लाई चेन्स टूट रही थी, लेकिन इसी क्योस के बीच नेस्ले के लिए एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी खुल रही थी। सोल्जर्स को चाहिए था न्यूट्रिशियस, लॉन्ग लास्टिंग और इजिली ट्रांसैक्टली वही था। मिल्क प्रोडक्ट्स, कंडेंस्ड मिल्क, चॉकलेट सब कुछ साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड, क्वालिटी चेक्ड। गवर्नमेंट ने नेस्ले को लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू कर दिए और यहीं से नेस्ले का स्केल तेजी से बढ़ने लगा। वॉर केस हो चुकी थी वर्ल्ड वाइड। सोचिए जब बाकी कंपनीज सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश कर रही थी, नेस्ले सिस्टम बिल्ड कर रही थी। लेकिन ग्रोथ के साथ चैलेंजेस भी आए, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट रेगुलेशंस, डिफरेंट कल्चर्स, एक आसान नहीं था। यहीं पर नेस्ले की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सामने आई, पीपल और प्रोसेसेस। नेस्ले ने सिर्फ मशीन में इन्वेस्ट नहीं किया, इन्होंने इन्वेस्ट किया साइंटिस्ट, केमिस्ट और रिसर्चर्स में। डिसीजन मेकिंग इमोशन से नहीं, टॉप मैनेजमेंट तक लिमिटेड नहीं था, फैक्ट्रीज के फ्लोर से लेकर लीडरशिप तक सब एक साइकोलॉजी फॉलो करते थे। क्वालिटी इज नॉन नेगोशिएबल। वॉर के बाद का टाइम भी इजी नहीं था, मार्केट्स अनस्टेबल थे, रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव था। ने एक चीज समझ ली थी, अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म चलाना है तो सिर्फ जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी नहीं होंगे, इनोवेशन जरूरी था। और फिर आया 1929 में एक और प्रॉब्लम, कॉफी प्राइसेस गिर गए। ब्राजील जैसी कंट्रीज के पास क्राइसिस थी, लेकिन नेस्ले के लिए एक क्वेश्चन बन गया था, कॉफी को स्टोर कैसे करें, कॉफी को वेस्ट होने से कैसे बचाया जाए। नेस्ले के प्रेसिडेंट लुईस डेपल्स ने अपनी टीम को एक टास्क दिया, सोल्यूशन ढूंढो। और यहीं से टीम बिल्डिंग का 4 साल तक एक्सपेरिमेंट्स किए, फेलियर्स आए, फॉर्मूलाज रिजेक्ट हुए, लेकिन टीम नहीं रुकी। और फिर 1938 में एक ब्रेक थ्रू हुआ, कॉफी को पाउडर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मिल गया, एक ऐसा फॉर्मूला जो दोबारा हाइड्रेट हो जाए। इंस्टेंट कॉफी, सिंपल, क्विक, रिलायबल। वर्ल्ड वॉर टू के दौर में नेस्कैफे सोल्जर्स के राशन का हिस्सा बन गई। और इसी के साथ नेस्ले का एक और लेसन क्लियर हुआ, स्ट्रॉन्ग टीम प्लस राइट टाइमिंग इज इक्वल टू अनस्टॉपेबल। खत्म नहीं होती है, नेस्ले अब सिर्फ वॉर टाइम सप्लायर नहीं रहा था, अब वो डेली लाइफ का हिस्सा बनने जा रहा था। और ये हमारे डेली लाइफ का हिस्सा कैसे बना ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गाना सुन लेते हैं पहले। गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ,
0: धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

अरिजीत सिंह की आवाज में और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है बिजनेस अनप्लग्ड। अब तक मैंने बात की है सोच की, साइंस की, कि ये सोच कैसे बदली एक कंपनी को ग्लोबल पावर हाउस बनाने में। वर्ल्ड वॉर के बाद नेस्ले के लिए एक नया चैप्टर शुरू हो गया। अब फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर नहीं था, फोकस था एवरीडे लाइफ पर। नेस्ले ने ये समझ लिया था कि प्रोडक्ट लोगों की डेली रूटीन का हिस्सा बनना चाहिए बॉस, और यहीं से नेस्ले के प्रोडक्ट घर घर तक पहुंचने लगे। 1940 के एंड तक नेस्कैफे सिर्फ एक कॉफी नहीं रही थी बल्कि एक हैबिट बन चुकी थी। फिर आया नेस्क्विक, कोई से घुल जाता था। 1960 के एंड में नेस्ले ने एक और बोल्ड स्टेप लिया, रेडी टू ईट फूड, और दुनिया

ने देखा एक सिंपल सा प्रोडक्ट कैसे रेवोल्यूशन बन जाता है। मैगी 2 मिनट में बनने वाला फूड सिर्फ कन्वीनियंस नहीं था, ये लाइफस्टाइल का टेस्ट और टाइम दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। मैगी हर किचन का परमानेंट मेंबर बन गई है। और इसके बाद नेस्ले के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कॉफी, चॉकलेट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, बेबी फूड, आइसक्रीम, सोप, नेस्ले के पास 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और हजारों सब ब्रांड्स। 1973 में नेस्ले ने लॉन्च की किटकैट, जो आज भी वर्ल्ड के फेवरेट चॉकलेट ब्रांड में गिनी जाती है। मिल्क चॉकलेट का जो फॉर्मूला ए बेस पर किटकैट, मिल्की बार जैसे आइकॉनिक ब्रांड बने। नेस्ले की एक और स्ट्रेंथ रही थी डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी ने कभी सिर्फ एक कैटेगरी पर डिपेंड नहीं किया, फूड के साथ साथ न्यूट्रिशन, बेबी केयर और हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट थी बहुत कैलकुलेटेड। नेस्ले ने स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट इवेंट्स को स्पॉन्सर किया। बीजिंग म्यूजिक फेस्टिवल 11 साल तक स्पॉन्सर किया गया। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ न्यूट्रिशन और फिट के साथ ब्रांड वैल्यूज भी बिल्ड होती रही। आज नेस्ले सिर्फ फूड कंपनी नहीं है बल्कि ग्लोबल सिस्टम है। डिफरेंट कंट्रीज में लोकल टेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट्स, लोकल टीम, लोकल सप्लाई चेन, लेकिन कोर साइकोलॉजी और ट्रस्ट। हाँ, कॉन्ट्रोवर्सीज भी आई, चैलेंजेस भी आए, एम्प्लॉयज के इश्यूज भी सामने आए, लेकिन इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं चलता, वो चलता है सिस्टम से, प्रोसेसेस से और लॉन्ग टर्म थिंक। समझ आती है, नेस्ले ने कभी ओवरनाइट सक्सेस का क्लेम नहीं किया। इस एम्पायर को बनने में डिकेड्स लगे और शायद इसी वजह से आज एम्पायर इतना बड़ा है। तो इस पूरी जर्नी में एक नया एंटरप्रेन्योर क्या सीख सकता है? गाने के बाद गाना सुन रहे हैं, गाने के बाद फिर से लौट। Show her business.

Once again, welcome back. You are listening to Radio Maharashtra. Show है Business Unplugged. Nestle की कहानी एक सिंपल सी बात सिखाती है. बड़े बिजनेसेस बड़ी बिल्डिंग से नहीं बड़ी सोच से बनते हैं. हेनरी नेस्ले ने लक्जरी प्रोडक्ट से शुरुआत नहीं की, इन्होंने एक बनाया. वॉर आए, मार्केट्स गिरी, कंपटीशन बढ़ा, लेकिन फोकस कभी नहीं हिला. इस कहानी से न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैसेज बिल्कुल क्लियर है. प्रोडक्ट से पहले पर्पज रखिए, शॉर्टकट से पहले साइंस. ड्यूमर सिर्फ टेस्ट नहीं खरीदता, वो भरोसा खरीदता है. अगर आप कंसिस्टेंसी, क्वालिटी और पेशेंस के साथ काम करोगे तो आज नहीं तो कल मार्केट आपको एक्सेप्ट कर ही लेगी. मैं हूँ गीत और ये था बिजनेस अनप्लग्ड. रहूंगी आपके लिए, लेकिन अभी वक्त है मेरा आपसे इजाजत लेने का. आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके. कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग.

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ छक्के।

0: हेलो 9.6 एफएम कुछ हटके शो लेकर आ गई हूँ। खास मुलाकात मेरे साथ है दीपक प्रसाद जी, प्रेसिडेंट रोटरी ब्लड सेंटर फरीदाबाद। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू
0: जी। तो आज हम फायदे हैं, तो आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि ब्लड डोनेशन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है?
1: ब्लड डोनेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपके हेल्थ, आप दूजे की तो लाइफ सेव करोगे बट अपने हेल्थ के बेनिफिट के लिए भी काम करोगे। आपको अगर हेल्दी रहना है
0: जी
1: तो आपको ब्लड डोनेट इसलिए करना चाहिए। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले क्या चेकअप होता है? ब्लड में जितनी बीमारियां हैं ब्लड के थ्रू डायग्नोस की जाती हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपना ब्लड डोनेट करोगे तो आपका ब्लड फ्रेश ब्लड बनता रहेगा और इससे क्या होगा, आपका पुराना ब्लड निकल गया, नया ब्लड बन रहा है। आप समझो मतलब ऊपर से लेके नीचे तक ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है
0: जी,
1: जिसकी वजह से आप हेल्दी रहते हो, क्लॉट्स नहीं बनते, आपको हार्ट अटैक नहीं आता, आप देखो पैरालिसिस का अटैक नहीं आता
0: जी।
1: आप देखते होंगे अक्सर जो रेगुलर ब्लड डोनर होता है उसके कैंसर के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते
0: हैं। हाँ जी,
1: तो इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और हमें डोनेट करना चाहिए
0: जी।
1: आप 18 प्लस होती है आप अपना ब्लड डोनेशन स्टार्ट कर सकते हो। मेल 3 मंथ्स में ब्लड दे सकता है और फीमेल 4 मंथ्स में।
0: ओके
1: तो और आप 18 से लेके 60 इयर्स तक तो आप कंटिन्यूएशन में होने के बावजूद अगर आपने 60 इयर्स से पहले अपना ब्लड डोनेट किया है तो आप 65 तक भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हो
0: जी।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द, इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हेल्दी नहीं रहेगा।
1: हाँ जी।
0: मुझे लोगों को ये लगता है कि ब्लड बॉडी से निकलेगा और बच्चे को वीकनेस आ जाएगी, ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है
1: जी।
0: आपका 48 आवर्स में सारी ब्लड की रिकवरी हो जाती है और आपको लिक्विड डाइट, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं अपना देता हूँ, आज मेरी एज 50 में टच करने वाला हूँ 13th of August को
1: जी,
0: और मेरा 93rd डोनेशन था अभी 6th of July को।
1: 93rd
0: मतलब कहना नहीं चाहिए। हमें आप सोचो कोविड में हम डेली घर से बाहर निकले, हमने कोविड के टाइम पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया
1: जी।
0: हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है रेगुलर ब्लड डोनर का। आप समझो इवन आपको कोल्ड नहीं होता, फीवर नहीं होता, आपको कोई भी बीमारी टच भी नहीं कर सकती अगर आप रेगुलर ब्लड डोनर हो
1: जी।
0: क्योंकि आपका हेल्थ इतना स्ट्रांग हो चुका होता है, इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है
1: जी।
0: तो ये मिथ अपने आप में से निकाल देना चाहिए, और अगर इससे अगर कोई नुकसान होता है या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती तो आज हिंदुस्तान में कितनी ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस आ गई है। हर शिखो हरियाणा में नंबर वन है ब्लड डोनेशन में, ओनली बिकॉज ऑफ कि सबको पता लग गया है कि ब्लड डोनेट करने से आप अपनी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट कर रहे हो और साथ में जीवन दान देने का काम कर रहे हो,
1: एक
0: तो ईश्वर का काम कर रहे हो और दे रहे हो।

0: महारानी का क्विक रिप।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

0: जी, यहाँ पर मिथ्स पर बात हो गई है। आपने एज का भी बता दिया था कि क्या एग्जैक्टली कौन सी एज होती है ब्लड डोनेट करने की, लेकिन अब हम बात करेंगे वेट और हेल्थ का जो क्राइटेरिया कितना होना चाहिए।
1: जो डोनर है उसका वेट मिनिमम 45 kg होना चाहिए और मैक्सिमम तो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।

0: लेकिन आप सोचो 45 से लेके 55 तक जिनका वेट होता है मेल मेल और फीमेल का, तो हम सबका ये 350 ml लेते हैं क्योंकि उनका ब्लड लॉस वैसे हो जाता है, तो फीमेल का तो 45 से जितना मर्जी वेट हो हम उनका 350 ml ही लेते, छोटा बैग बनाते हैं, और जो मेल का 450 ml ब्लड लेते हैं
1: जी।
0: तो ये हेल्दी है, आपकी बॉडी से इतना ब्लड निकलता है और वो बन जाता है 48 आवर्स के बाद में। लेकिन डोनेशन देने के लायक आप आफ्टर 3 months होते हैं मेल और फीमेल। एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा, आधे लोगों को नहीं पता, आप साल में 24 टाइम्स अपना प्लेटलेट्स डोनेट कर सकते हो।
1: ओके,
0: एसडीपी जिसको कहते हैं, जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है कि डेंगू हो गया, प्लेटलेट काउंट गिर रहे हैं, तो हिचकिचाएं, ब्लड डोनेशन के 28 डेज बाद आप प्लेटलेट डोनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और प्लेटलेट डोनेशन के 48 आर्स के बाद आप अगेन प्लेटलेट डोनेट कर सकते हो। उस स्पीडली हमारे प्लेटलेट्स बन जाते हैं, 4 times आप अपना प्लेटलेट डोनेट कर सकते हो। ये बिल्कुल हेल्दी रहता है आपके लिए, बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है, और इसमें हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए UN 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले बस पढ़ाओ मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ, ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है।

ये ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं।

पूजा पाठ नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है थैंक्स लॉट।

0: सर एक हेल्दी पो है, और डोनेशन से पहले और बाद में किन किन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे?
1: एक हेल्दी पर्सन मेल साल में 4 times डोनेट कर सकता है और फीमेल साल में 3 times। जो ख्याल रखने वाली बात ये है, आप अपना हेल्दी डाइट लें डोनेशन से पहले, और आप लिक्विड ले लें, 1 glass पानी पी लें डोनेशन से पहले, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप बिल्कुल 1st class ब्लड डोनेट तक की सेवा का कार्य कर सकते हैं। और आप अल्कोहल ना लें 24 hours पहले, आप स्मोक ना करें, और इन्हीं चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बाकी आप हेल्दी होने चाहिए, आपका BP ठीक होना चाहिए, आपका HB लेवल के बाद ही लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कहीं भी ब्लड डोनेशन के लिए चले जाएं और आपका ब्लड ले लेगा कोई, डॉक्टर साहब आपकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग के बाद में आप एलिजिबल होंगे तभी आपका ब्लड लिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान। किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी एक और सवाल आता है, और ये सवाल मोस्टली लोग सोचते हैं कि जब कोई ब्लड डोनेट करता है उसके बाद जो वो ब्लड का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली क्या होता है, क्या किया जाता है?
1: दो तरीके के बैग यूज किए जाते हैं नॉर्मली, डबल और ट्रिपल। डबल बैग में क्या होता है, FFP और आपका PRBC बनता है। और जब आप ब्लड डोनेट कर देते हैं तो आपका एक ही बैग में ब्लड लिया जाता है। ये ब्लड बैंक में जाने के बाद बनाए जाते हैं।
0: हाँ जी।
1: और उसको सेपरेट किया जाता है। एक बैग में अपना प्लाज्मा चला जाता है, एक में PRBC।
0: जी।
1: ऐसी हम ट्रिपल बैग जब यूज करते हैं उसमें RDPC भी लिया जाता है। उसमें एक PRBC बनता है, एक FFP बनता है, एक रैंडम डोनर प्लेटलेट काउंट हो गया, FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया, PRBC पैक्ड रेड ब्लड सेल हो गया। ये तीन कंपोनेंट बनते हैं। वहां जाने के बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको कंपोनेंट बनाए जाते हैं और इसको सेपरेट किया जाता है।
0: ओके।
1: जो होते हैं HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, VDRL, मलेरिया। इन पांचों टेस्टों में अगर वो ब्लड ओके निकलता है तो हम आगे किसी को इशू करते हैं जिसकी वो रिक्वायरमेंट होती है।
0: जी।

0: तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जो डूबने से डरते हैं, नर्वस फील करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज होने वाला है?
1: मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, आपको इनिशियल स्टेज में तो घबराहट होगी, लेकिन आप अगर आप एक बार अपना ब्लड डोनेट कर देंगे ना, तो नेक्स्ट डेट का आप वेट होने वाले हैं या मेरे 4 मंथ्स का कंप्लीट होने वाले हैं। क्योंकि मेरे ट्विंस बच्चे हैं, बेटा बेटी दोनों, जब वो 18+ हुए उन्होंने अपने बर्थडे में ब्लड डोनेट किया। और उसके बाद से बेटा और बेटी दोनों वेट करते हैं कि पापा बेटे का 3 मंथ्स। तो बेटी ब्रदर से कहती है नहीं, हम दोनों साथ डोनेट करेंगे, तुम भी 4 मंथ्स के बाद ही करेगा, हम दोनों साथ देंगे। तो आज वो दे रहे हैं, देखो वो हेल्दी भी है, फिट भी है, हेल्थ बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है
0: जी।
1: और ये कहना चाहूंगा, अगर आप रेगुलर ब्लड डोनर हैं तो आप डिप्रेशन में कभी नहीं जा सकते, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है।
0: ओके,
1: 99% लोगों
0: मतलब
1: को
0: मेंटल हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिट है।
1: अगर आप रेगुलर ब्लड डोनर हैं, आप किसी भी हालत में डिप्रेशन में, बॉडी आप ऑटोमेटिकली केमिकल का ही तो लोचा है। आप सोचो हम जैसा करेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा खाएंगे, वैसे हमारी हेल्थ होगी। तो रेगुलर ब्लड डोनर को एडवांटेज ही एडवांटेज है। इसके एडवांटेज तो गिनवाने भी पॉसिबल, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे पढ़े लिखे बच्चे हमारे यंगस्टर्स, तो आपको पता लगेगा कि ब्लड डोनेशन के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब भाग्यशाली होता है जो शॉर्टलिस्ट होता है ब्लड डोनेशन के लिए, जो एलिजिबल डोनर होता है वो भाग्यशाली हैं ब्लड डोनेशन के लिए। किसी का HB लेवल कम आता है, किसी का BP बहुत हाई होता है या लो होता है, और आप देखो वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाता। तो वी आर लकी पीपल, हम लोग एलिजिबल हैं और हम अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और लोगों को जो डेथ बेड पे वेट कर रहे हैं ब्लड की, अगर आप डोनेट ही नहीं करोगे तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे मिलेगा?
0: जी बिल्कुल सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को रेडियो महारान चाहेंगे?
1: मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, रक्तदान महादान है, इसमें हम सबको मिलकर आहुति देनी चाहिए, और हमें समाज में मेक श्योर करना चाहिए कि किसी भी इंसान की ब्लड की शॉर्टेज की वजह से जीवन ना मिले समय पर, जब भी उसकी कोई रिक्वायरमेंट हो, ब्लड हर ब्लड बैंक में होना चाहिए। जब ब्लड बैंक में ब्लड होगा, मान लो फॉर एग्जांपल चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड में, उसके रिश्तेदार तो कब पहुंचेंगे, उसके अपने परिवार के कहीं किसी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है
0: जी।
1: और अगर उसका मेजर ब्लड लॉस हो गया और हॉस्पिटल में ब्लड नहीं है या ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, तो उसका जीवन कैसे बचा पाओ?
0: Exactly.
1: बिना ब्लड के तो जीवन संभव ही नहीं है। तो मेरी सब जहां भी हो, जब भी आपको समय मिले और आप अगर एलिजिबल डोनर हैं, तो आपको 100% अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए और समाज हित में काम करना चाहिए। ईश्वर ने एक ही तो जिंदगी दी है, अगर उस जिंदगी में भी आपने अच्छे काम का, आपकी आपकी बॉडी में भगवान ने एक ऐसी फैक्ट्री बना दी है जिसमें ऑटोमेटिक ब्लड बनता रहता है। आप सोचो जो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज करा रहा है, यानी उसके यहाँ उसकी बॉडी में किसी वजह से ब्लड नहीं बन पा रहा, उसको वीकनेस आ रही है, HB लेवल आप देने के स्टेज में, वो जो ले रहा है, आप सोचो उसकी बॉडी में बनता नहीं है। आप सोचो आप कितने लकी हैं, उस ईश्वर ने आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा की हुई है। तो हमें उस कृपा को हमेशा सैल्यूट करना चाहिए कि आपको फुर्सत मिले, जब भी आप समय निकालना चाहिए, फुर्सत को भी नहीं सोचना चाहिए, जब भी आपके 3 मंथ्स पूरे हो जाए मेल, और फीमेल जब भी आपके 4 मंथ्स हो जाए, आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए जिससे किसी की भी ब्लड की शॉर्टेज से।
0: जी थैंक यू सो मच सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए।
1: शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और लिसनर्स आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

तक जिंदा था आज सिर्फ याद है, ना जंग ना आग ना दुश्मन, बस एक रात और समुंदर। 9.6 FM पर मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा। और आज कल्चर कारवा की कहानी हमें लेकर जा रही है धनुष कौड़ी की तरफ। कुछ शहर वक्त से समुद्र से हार जाते हैं। आज बात कर रहे हैं धनुष कौड़ी के बारे में। पहले आइए जानते हैं कि कहाँ है धनुष कौड़ी। कौड़ी तमिलनाडु के बिल्कुल कोने पर बसा था, जहां बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन एक दूसरे से मिलते हैं। यहीं से श्रीलंका सिर्फ चार। एक वक्त था जब धनुष कौड़ी रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, चर्च, मंदिर सब कुछ हुआ करता था, पर आज सिर्फ खामोशी। धनुष कौड़ी का पुराना लिंक रामायण से मिलता है। कहा जाता है कि रामायण के मुताबिक यहीं से राम सेतु का आरंभ हुआ। धनुष कौड़ी का मतलब है धनुष का अंत। यहीं से राम ने अपना धनुष तोड़कर समुद्र को शांत होने का संकेत दिया था। वो कहा है कि ये जमीन सिर्फ भूगोल नहीं, ये तो पुरानी कहानियों का मिलन है। पर आखिर धनुष कौड़ी की असली कहानी क्या है? इस कहानी को जानने के लिए 1.6 FM के साथ

0: का तो पता नहीं कौन पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, और फिर शेयर करें
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से। Only on Radio Maharani 89.6 FM. तो अब से be safe, be aware.

आज का हमारा सफर हमें ले आया है धनुषकोडी की तरफ। पर असली कहानी कब शुरू हुई? 89.6 एफएम चल रहा है कल्चर कारवा। सवाल ये था कि आखिर रामायण की वजह से धनुषकोडी मशहूर हुआ, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। इसको मशहूर रामायण ने नहीं किया, इसे मशहूर बनाया 1964 के साइक्लोन ने। वो रात जब शहर डूब गया, 22 दिसंबर रात के 11 बजे, 220 किलोमीटर पर आर की हवा और 7 मीटर ऊंची लहरों ने धनुषकोडी पर हमला कर दिया। कहाश्वरम से आ रही थी सीधा समुद्र में बह गई, और कहा जाता है कि उस ट्रेन के साथ सिर्फ लोग नहीं, पूरा शहर बह गया, लगभग 1800 लोग ही। वो कहा है कि शहर जब मिटता है तो सिर्फ घर नहीं गिरते, यादें भी बह जाती हैं। का साइंटिफिक रीजन तो पता चला, लेकिन इसके पीछे का हार्ड ट्रूथ क्या है इस बारे में जानेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है, तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर डोनी फिशिंग हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद

0: वैसे कोई चांस नहीं है हमारे फ्यूचर व्यूचर का, ऑल दोस अग्नि के फेरे एंड ऑल. लाइफ कैन बी अनप्रेडिक्टेबल, यू नो, किसे पता आगे क्या हो. हे मीरा,
1: कम
0: थिंकिंग. हम डिवोर्स पेपर्स होल्ड पे भी रख सकते हैं कुछ दिन, यू नो, दोनों को थोड़ा टाइम मिल जाएगा कुछ सोचने को कि

शहर जब मिटता है तो सिर्फ घर नहीं गिरते, यादें भी बह जाती है। जब साइक्लोन आया तो एक हार्ट 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कार्वन। साइक्लोन के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया, धनुष कौड़ी को अनफिट फॉर हैबिटेशन और साथ ही यहाँ के लोगों को रामेश्वरम शिफ्ट कर दिया गया। कहा जाता है कि समुद्र से हारने के बाद शहर को जिंदा रखने का कोई प्लान ही नहीं था, पर ये बात थी आज का धनुष कौड़ी कैसा दिखता है। आज बात करें धनुष कौड़ी की तो कहा जाता है कि एक घोस्ट टाउन बन चुका है। वही टूटा हुआ चर्च और आधी दीवारें, वो कहा है कि यहाँ साए नहीं रहते, यहाँ तो वक्त अटका हुआ है। धनुष कौड़ी का इतिहास तो हमने जाना, लेकिन आज साइंस इस बारे में ही बात करेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: वीक का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना, क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी कर हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रोल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटी।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी डिस्क का घोड़ा
2: हूँ। तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
0: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

कल्चर कारवा की आज की कहानी घूम रही है एक ऐसे शहर की तरफ जो एकदम से गायब हुआ और फिर कभी न मिला। 89.6 और आप मुझे सुन रहे हैं कल्चर कारवा शो में। कहा जाता है कि धनुष कौड़ी को लेकर साइंस वर्सेस इमोशन की एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। साइंटिस्ट का कहना है इसके हाई रिस्क जोन में आता है, इसलिए यहाँ परमानेंट सेटलमेंट रिस्की है। मतलब ये शहर बर्बाद नहीं हुआ, ये सिर्फ गलत जगह है। शहर गलत नहीं होते, बस ज्यादा सच बोल देते हैं। और सच के साथ रहना हर किसी के बस की बात नहीं। तो दोस्तों, आज हमने बात की एक ऐसे शहर के बारे में जो कभी खुद तो नहीं बचा पर हमें बहुत कुछ सिखा गया। आज की कहानी थी धनुष कौड़ी की, जहां हमने जाना कि परिस्थितियों के साथ कभी कभी। अब फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर से मिलेंगे कल्चर कारवा के शो में एक नई कहानी के साथ, एक नए जायके के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए इन गॉफ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: कर रही थी एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? नहीं, मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्री। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। जीब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट राइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर, सेफ्टी सबसे ऊपर।
2: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
0: सावधान, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, मेरे दामन में आती है, कुछ को मिल जाती है सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत से जीना चाहती है।
4: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.0।

आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो एक दौर बन जाते हैं। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

एपिसोड है बेहद खास, क्योंकि आज की शाम डेडिकेटेड है उस एक्ट्रेस को जिनकी सिंप्लिसिटी भी ऑडियंस को पसंद आई, रोमांस भी, इमोशंस भी, और आज का एपिसोड है अमीषा पटेल स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं उस फिल्म से जहां एक तरफ सलमान का स्वैग था और दूसरी तरफ कॉमेडी और इमोशंस का परफेक्ट मिक्स।

बारे में मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि इस फिल्म का ओरिजिनल टाइटल फैमिली नंबर वन रखा गया था और फिल्म में एक इंटरेस्टिंग मेटा रेफरेंस भी था, जहां सलमान है कि उनका शो सवाल 10 करोड़ का क्यों बंद हो गया, जो रियल लाइफ में कौन बनेगा करोड़पति का राइवल शो था। और अगर आपने फिल्म ध्यान से देखी हो तो एक पुरानी फैमिली फोटो, लेकिन वो स्पेशली इस फिल्म के लिए क्लिक ही नहीं हुई थी, बल्कि 1982 की फिल्म ये वादा रहा से ली गई थी। और एक और हिडन डिटेल है इस मूवी की, वो ये है कि फिल्म हॉलीवुड मूवी, साथ ही ये वो वक्त था जब सलमान हेयर ट्रीटमेंट फेज में थे और इस फिल्म में उनका ओरिजिनल हेयर लुक लास्ट टाइम ऑडियंस को देखने को मिला। तो चलिए इस मूवी की इतनी दे ओ जाने जिगर गाना, और इस गाने के बाद बात होगी एक ऐसी फिल्म की जिसने एक नहीं दो स्टार्स को ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया, जिसका एक डांस स्टेप आज भी लो मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। तब तक के लिए ये गाना आपके लिए हाँ।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र,
2: हाँ
1: छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ। किसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कर रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा नहीं।

और इस मूवी की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक फिनोमिनन था। और इस मूवी का सबसे आइकॉनिक मोमेंट था मैं, क्योंकि ये गाना पहले से कोरियोग्राफी नहीं किया गया था, शूट के वक्त ही ऋतिक रोशन और फराह ने मिलकर क्रिएट किया था। और इस मूवी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म में राज की मदरस जो थी वो रियल लाइफ में अमीषा पटेल की एक्चुअल मदर थी। और साथ ही साथ अगर इनिशियली लीड रोल की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि सबसे पहले करीना कपूर कास्ट हुई थी। कास्टिंग के दौरान इनकी आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इन्होंने फिल्म छोड़ दी। फिर एंट्री हुई अमीषा पटेल की, जो कि बाद में ओवरनाइट स्टार बन गई। इतना ही नहीं, एक ट्रैफिक सिग्नल जहां राज और सोनिया पहली बार मिलते हैं वो एक्चुअली में ऋतिक रोशन की रियल लाइफ लव स्टोरी से

ना प्यार है गाना, और इस गाने के बाद बात होगी एक ऐसी फिल्म की जिसके डायलॉग्स भी आइकॉनिक बने, सॉन्ग्स भी, और एक हैंड पंप ने तो भी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
1: तेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर है।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बागबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचे। हर वीडियो और ऑडियो चेक करें और फिर शेयर करें और जुड़े।

0: साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।
1: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
2: अरे आगे भी बोलना।
1: हाई स्पीड में चलोगे।
0: 89.6 एफएम रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: कृपया ध्यान दे,
1: कामयाबी हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आप

0: म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं पलक आपके साथ।
1: अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या आपको कभी इतना गुस्सा आया है कि आपने गुस्से में एक हैंड पंप जी गए होंगे कि मैं ये सवाल क्यों कर रही हूं? क्योंकि अब जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उस मूवी में ये सीन हम सभी ने देखा है और वो मूवी और कोई नहीं गदर एक प्रेम। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये इमोशंस पैट्रियोटिज्म और सेक्रिफ मूवी में ऑथेंटिसिटी इतनी इम्पोर्टेंट थी कि शूटिंग के लिए दिल्ली रेलवे म्यूजियम से रियल स्टीम इंजन हायर किया गया इस मूवी को रियल टच देने के लिए। और ये फिल्म लगान के साथ सेम डे पर रिलीज करी गई थी और लाश रिस्की हो सकता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इन दोनों फिल्म्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और अगर हम तारा सिंह की बात करें यानी कि सनी देओल की बात करें तो हैंड पसली फिल्म के एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर्ड था, लेकिन बाद में वही सीन तारा सिंह यानी कि सनी देओल की आइडेंटिटी बन गया। और इस फिल्म की रियल इंस्पिरेशन बूटा सिंह और जेनाब की ट्रू स्टोरी थी। सोल्जर को एक दूसरे देश की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन रियल स्टोरी की एंडिंग उतनी हैप्पी नहीं थी जितनी फिल्म में दिखाई गई। अब इस फिल्म की इतनी बात हो ही रही है तो चलिए सुनते हैं किला ओ गड्डी लेके। और इस गाने के बाद बात होगी अमीषा पटेल की एक बिल्कुल डिफरेंट रोल की, जहां ऑडियंस ने उन्हें पहली बार ग्रे शेड में देखा। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी।

0: शुभ
1: हो गया शुरू। तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे बोल करिए, सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके,
1: रोडवेज वाले भैया, सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे अभी रहे थे
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल, लस्सी बनाने के लिए।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे सुनो,
0: बाय।
1: मीठे लस्सी का मिलता।
2: सदा सुरक्षित रहे रेडियो महारानी।
3: हेलमेट और सीट बेल्ट पुलिस के लिए नहीं, अपने आप के लिए और अपनों के लिए पहने। फोन को साइड पर रखें, रोड पर फोकस करें।

89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। हिंट दिया था कि अमीषा पटेल को देखा गया पहली बार ग्रे शेड में और वो मूवी थी शॉर्टकट रोमियो।

और अगर हम इस मूवी की बात करें तो ये फिल्म अमीषा पटेल के करियर के लिए में पहली बार उन्होंने एक ग्रे शेडेड कैरेक्टर प्ले किया था और उन्होंने खुद कहा था कि ये रोल मेंटली और इमोशनली काफी एग्जॉस्टिंग था और इंटरेस्टिंग डायरेक्टर की खुद की तमिल हिट फिल्म थी जो कि हिंदी रीमेक की गई और साथ ही साथ मोनिका के रोल के लिए पहले विपाशा बासु और दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया गया था। रोल अमीषा पटेल को मिला। अगेन डेस्टिनी का खेल। तो चलिए इस फिल्म की इतनी बात हो ही गई है तो सुनते हैं इस मूवी का खाली सलाम दुआ गाना और इसी खूबसूरत गाने के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का ये अमीषा पटेल स्पेशल एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं गानों और उनके पीछे छुपी कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। तब तक म्यूजिक को फील करते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, किसी की बातें ध्यान से सुनना उसकी सबसे आसान हेल्प है, तो आज से ही सुनो पर जज मत करो।
2: चाहता हूँ कभी ना बीते
3: यार, कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
0: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलती रहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
4: रेडियो महारानी आप सभी से अपील की को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो
6: 20s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
1: अरे आगे भी बोलना।
0: फोटो विद हार मिलोगे।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: पहुंचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: जॉनी जॉनी,
1: यस पापा,
0: बाइक चलाना है?
1: यस पापा,
0: हेलमेट पहनना है?
1: ओके पापा,
0: हाई स्पीड में गाड़ी चला
1: हुआ, वेरी गुड बच्चा।
0: हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बनाए दूरी, आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

देखते हुए पहुंचती है आपके पास, वो है रेडियो महारानी। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर फोन साइड रख, आपकी प्रेजेंस भी किसी का सपोर्ट है।

अननोन लिंक्स पर क्लिक करने से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो आज से वेरीफाई करके ही लिंक्स और फाइल्स ओपन करें, बिकॉज वन क्लिक चेंजेस

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे
2: यात्रीगण कृपया
3: महारानी है।

0: 89.6 है।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
2: कुछ हटके।
3: हेलो, हाय यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है आज दिल शायराना, और आज मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका,
4: और साथ ही साथ मौजूद हैं वंदना रानी दयाल जी। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: तो ये कविता लिखने का शौक, ये कब आपको हुआ, कहाँ से इंस्पिरेशन या सुना कि आपको लगा कि अब तो मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए?
5: मैं 2018 से लेखन में आई
3: जी,
5: और मेरी मासी लिखती हैं, वो बहुत बड़े उपन्यासकार हैं
3: जी,
5: तो बस उन हुई कि मैं भी लिखूं। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया
3: जी,
5: तो बस उन्हीं का थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला, उसी से लिखना शुरू।
3: जैसे हमने बचपन में मुंशी प्रेमचंद जी को बहुत ज्यादा, तो उनसे या उस दौर के जो भी राइटर्स हैं उनमें से कौन ज्यादा पसंद है आप?
5: क्योंकि मैं इलाहाबाद की हूँ,
3: हाँ,
5: तो इसलिए महादेवी वर्मा, अच्छा, निराला जी
3: इन
5: लोग को बचपन से ही पढ़ा।
3: हाँ, हाँ।
5: घर में भी ऐसा माहौल, साहित्यकारों को पढ़ना, मेरे पिताजी बहुत पढ़ने में विश्वास रखते थे
3: जी,
5: टीचर थे, तो बस ऐसे ही। और इलाहाबाद में तो पता ही है कि साहित्यकारों का
3: एग्जैक्टली
5: पूरा जमावड़ा है
3: जी,
5: पढ़ने का और लिखने का
3: शौक आपको वहाँ से हुआ
4: जी। वंदना मैम आपके पास आते हैं, तो आपसे है अगला सवाल
3: कि कहाँ से लिखने का शौक हुआ, क्या वो चीज थी जो पढ़ी और आपको लगा कि अब तो मुझे भी पोएट्री की तरफ रुख करना चाहिए?
6: लिखते की ओर झुकाव क्योंकि तब मैंने खत लिखना शुरू किया था
3: जी,
6: और वो खत मैं अपने पापा के नाम लिखती थी क्योंकि उससे मैं दूर रहते थे अपने पीएचडी के लिए। और जब मैं स्कूल में आई तब मेरी हिंदी टीचर्स ने हमारे लिए, हमारी पिछड़ता हमारी समझ में बहुत यंग एज में आ गया
3: जी,
6: और तब से हमने प्रेमचंद, शिवानी, शरद चंद्र, निराला, महादेव वर्मा, इन सबको बहुत पढ़ा, और धीरे धीरे साहित्य अपने अंदर रिश्ता बसता।
4: वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है आज दिल शायराना।

0: केवाईसी अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनलिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है आज दिल। हम आज दो कवित्रियों से बात कर रहे हैं जिनकी रचनाएं बहुत खूबसूरत है। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो जैसे हमने मुंशी प्रेमचंद जी की बात यहाँ पर की है, तब इससे के लिए वो अपनी कविताओं में समाज जो हमारा देश है उसकी बात करते थे। तो आज के वक्त में क्या लगता है, कविताओं में समाज की बात हो रही है या सिर्फ एक फेम के लिए कविताएं लिखी जा रही है?
1: नहीं, मुझे तो लगता है कि आजकल लोग ये लिखते हैं अपनी अपनी जो कहते हैं ना अपनी सफलता के लिए या जो अपने लिए लिख रहे हैं।
0: अच्छा,
1: पहले के जो राइटर्स थे समाज में जो चल रहा है वो उनके लोग भी हालात रहते होंगे, लेकिन आज वो नहीं है। आज जो जिसका अपने मन करता है वैसे ही लिखता। और साहित्य का आजकल मैं समझती हूँ कि थोड़ा गिरावट जरूर आ रही है।
0: और ये गिरावट क्यों आई है?
1: लोग ही लिखना चाहते हैं।
0: अच्छा जी।
1: बहुत लोग लिखना चाहते हैं, कोई पढ़ना नहीं चाहता। मैं समझती हूँ लिखने अगर आप पढ़ते भी हो ना तो भी आप साहित्य की सेवा करते हैं।
0: जैसे आपने कहा भी यहाँ पर कि अपने आज के लिए, बिकॉज जब कोई एक राइटर कुछ लिख देता है और लोग उसे पढ़ते हैं तो बहुत प्रभाव छोड़ कर जाता है। और हमारे समाज में काफी सुधार भी हुए हैं जो पहले हमारे राइटर्स रहे हैं जो उन्होंने लिखा है और लोगों ने पढ़ा है। कि राइटर्स को पोइट्स को ये ख्याल रखना चाहिए कि वो समाज के हित में या देश के हित में भी बहुत ज्यादा लिखने पर जोर डालें।
1: कहते हैं ना कलम में बहुत ताकत होती है, तलवार से भी ज्यादा कलम में ताकत होती
0: है। जी जी,
1: तो वो ही में बहुत ताकत होती है। हम सच नहीं लिखते, हम अब जो जिससे हमें मतलब थोड़ा फायदा होता है ना हम वही चीज लिखते हैं। हम सच
0: दबा
1: ढक देते
0: हैं। हाँ, कहते हैं कि हर एक राइटर या हर एक पोइट का ना एक मूड होता है, एक थीम लाइन होती है। तो आपकी वो कौन सी विधा है जिसमें आप सबसे ज्यादा लिखती हैं और बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं खुद को?
2: मुझे गजलें लिखना ज्यादा पसंद है।
0: गजलें
2: जी, मैं अंत गजल की तरफ मुड़ के ही करती हूँ
0: जी, क्योंकि आप उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं।
2: कंफर्टेबल हूँ और उसमें जो एक फ्लेवर है ना गजल का, मेरे मोहब्बत की बातें और अदर चीजें लिखना मुझे अच्छा लगता है। मैं उसको भी महसूस ना चाहती हूँ, चाहती हूँ लोग भी महसूस करें।
0: जी, जैसे आपने कहा कि गजलें इसलिए लिखना पसंद है क्योंकि उसमें विरह मोहब्बत की बातें होती हैं। और ऐसा कहीं सुना भी है, मैं नहीं जानती कि कहते हैं कि जिसका दिल टूटता है वो वही बहुत अच्छा कवि बनता है, क्या ये बात सही है?
2: हाँ, आपने सही सुना है। और हिरण के भी जो मुँह से शायद आह निकली थी तो कहते हैं ये गजल उसी से बनी।
0: अच्छा
2: जी, हम जब किसी की जिंदगी में उतरते हैं या किसी के बहुत करीब होते हैं
0: जी,
2: तो उसकी टूटन का एहसास भी, खास करके जब हम कवि दिमाग वाले इंसान हैं तो उसका एहसास भी हम बड़ी जल्दी प्रवेश इसको कहते हैं
0: जी,
2: वो हम बड़ी जल्दी कर लेते हैं। तो अपने साथ वो हुआ हो या ना हुआ हो हम उसको लिख पाते हैं। और कई बार लोग गलत फहमी में आते हैं कि अच्छा ऐसा लिखा है इसका मतलब ऐसा हुआ होगा। नहीं, नॉट एग्जैक्टली,
0: किसी और के भी देखे होते हैं।
2: हाँ हाँ, कई बार ऐसा होता है तो हम उसे ही उतारते हैं सर।
0: जी जी,
3: वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है आज दिल शायराना।

0: करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani, आज दिल शायराना. और बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ. मेरे साथ स्टूडियो में दो कवित्री मौजूद हैं. हम अब बात करते हैं वंदना रानी दयाल जी से. यहाँ पर हम स्टेज पोइट्री की बात कर लेते हैं, बिकॉज स्टेज ने बहुत सारे काव्य गोष्ठी प्रोग्राम्स डेफिनेटली दिए होंगे. तो जब लोग आपको सुनते हैं और रिएक्ट भी करते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस या उनकी जो तालियां हैं वो पोइट की क्रिएटिविटी को खत्म करती
1: है? क्रिएटिविटी को खत्म नहीं करती, बल्कि वो तो आप में जोश लाती है कि हाँ, आपने जो दो पहले मिसरे बोले उनको पसंद आए तो उन्होंने तालियां बजाई
0: जी,
1: तो अच्छी बात होती है
0: जी. यहीं से एक सवाल और है, चीजें तो नहीं होती होंगी जो आप प्रेजेंट करते हैं सबके सामने, तो वो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये लोगों तक पहुंचाना है और ये खुद के लिए छपा कर रखना है, ये कैसे डिसाइड करते हैं आप?
1: देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. जैसे कि मैं थोड़ा अपने अंदर के जो ख्याल है, जो जज्बात है, मैं उसे पब्लिक करना पसंद नहीं करती
0: जी.
1: और कई बार ऐसा होता है कि मैं उसमें थोड़ा सा लाग लपेट करके, ऊपर नीचे करके, मैं उसे कविता में उतारती भी नहीं करती है अपने मन का.
0: जी, जेरोक्स कॉपी की बात हो गई है, तो हम एक शायर के बारे में जरूर बात करेंगे, जॉन एलिया साहब. क्योंकि लोग ना उनको बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, लोगों ने उनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन उनकी कोई एक या दो गजल कोई सुनी है, कहीं कुछ पढ़ा है?
1: पढ़ा तो बहुत है जी जी, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है. लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक लहजा है, और बड़े दम खम से वो बात करते हैं. पहले बड़े धीरे से चार पांच बार एक ही शेर को बोलते रहते हैं, उसके बाद एक बड़ा तगड़ा सा शेर सिलाई अंदाज है. जो एक बहुत ही मामूली चीज को ही बहुत
0: मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि लोग उनको कॉपी करने की बहुत कोशिश करते हैं, तो ये जो जेरोक्स का टाइम अच्छा आ गया है, तो लोग जो कॉपी,
1: मैं इस बात से बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ कि लोग किसी को कॉपी करना चाहते हैं. देखिए, नकल के लिए अकल चाहिए होती है. कुछ लोग नकल करते हैं, पर आप ऐसे कीजिए कि आप अपना फ्लेवर उसमें जिंदा रखिए, ये याद रखिए हमेशा. आप गालिब नहीं बन सकते, आप उनको पढ़ के सीख के उसको अपनी शैली में उतार सकते हैं
0: जी.
1: तो जेरोक्स बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आप उनसे सीखिए अपने लहजे में लिखिए
0: जी. अब देंगे शो है आज दिल शायराना.

0: इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है आज दिल शायराना। मेरे साथ यहाँ पर दो कविता जी और वंदना रानी दयाल जी। तो अर्चना मैम आपके पास आते हैं, अगला सवाल आपके लिए है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो अभी थोड़ी सी ज्यादा हाईलाइट है, जिसको ओपन माइक कहा जाता है। एक जमाना था जहाँ काव्य गोष्ठी लैम्स होते थे कवियों के, वो थोड़े से कम होकर लोग ओपन माइक की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। ऑल दो यंगस्टर्स इससे लिखने के लिए काफी ज्यादा खुश हैं कि उनको भी सुना जा रहा है। तो आप इस चीज को कैसे देखती हैं, जो काव्य, आप इस चीज को किस तरीके से देखती हैं?
1: देखिए, वहाँ जैसे काव्य गोष्ठी जब होती थी तो वहाँ हम बहुत सारे लोगों को सुनते भी थे और अपना भी देते थे,
0: इनपुट देते थे।
1: लेकिन आज जो ओपन माइक में और अपनी पीठ थप थप वाली वही वाल, बाकी मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा था। काव्य गोष्ठियां जो होती थी और हम मिलते भी थे लोगों से, मिलना जुलना भी अब थोड़ा जैसे होता है ना, थोड़ा कम हो वो है
0: जी। और आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि क्या ज्यादा पसंद है आपको, ओपन माइक या काव्य गोष्ठी की तालियां, या अकेले बैठकर किसी कमरे में लिखी हुई एक सच्ची लाइन? तो वो क्या सच्ची लाइन लिखी थी, क्या हम सुन सकते हैं आज आपसे?
1: जरूर
0: जी,
1: मैं एक मुक्तक सुनाऊंगी।
0: बिल्कुल,
1: मुक्तक चार लाइनों का होता है।
0: जी जी।
1: तेरी

0: वंस अगेन वेलकम बैक यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89 शायराना। मेरे साथ दो कवित्री मौजूद है स्टूडियो में, तो अब हम बढ़ते हैं वंदना रानी दयाल मैम आपके पास और अगला सवाल आपके लिए है। अगर मैं किसी भी फील्ड की बात करती हूँ, किसी आर्ट फील्ड की, जैसे हम म्यूजिक पर बात कर लेते हैं या मेंटोर चुनता है देन उनसे सीख कर आगे बढ़ता है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक लिटरेचर या शायरी में पे बात करूँ तो बहुत कम लोग हैं जो मेंटोर चुनते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको क्या जरूरी?
1: मुझे लगता है कि ये जो गुरु परंपरा वाली बात है ना, वो हर जगह सही है। आप भक्ति की ओर जाइए, आप ज्ञान की ओर जाइए, आप कहीं भी जाइए, अगर आपका एक गुरु है तो आपको वो दिशा देगा। इंसान है
0: जी,
1: जिस इंसान को दिशा मिल गई है वो आपसे बेहतर करेगा और जल्दी मंजिल की ओर पहुंचेगा।
0: जी क्या बात है। अब बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन हर कोई उस पोइट्री के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है, जैसे शायरों के बारे में जो बहुत खालिस लिखते हैं जैसे फराज साहब, फैज साहब, उनकी पोइट्री समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। उनको समझ पाए उसके लिए लिटरेचर की बहुत अच्छा खासा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहचान क्या है आपके अकॉर्डिंग?
1: पहचान ये है कि देखिए, हम लोग भी अभी कुछ लिखते हैं ना, तो कुछ उसमें ऐसे लफ्ज आते हैं जो मुझे लगता है कि ये सब नहीं समझ सकेंगे, तो मैं कैप्शन में वो डाल देती
0: हूँ
1: ताकि अगर कुछ ऐसे लोग पढ़ रहे हैं जिनको पता ही नहीं इसका मतलब, क्या वो कहाँ से उसके मजे ले पाएगा, तो ये बात होती है। अदरवाइज कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जिस महफिल में हैं, आप देखिए यंगस्टर्स की महफिल है तो आप पढ़े लिखे या साहित्यिक लोग हैं तो आप उस तरह की गजल सेलेक्ट कीजिए, या अगर आप कहीं लिख के दे रहे हैं तो कैप्शन में उसके मतलब डाल दीजिए।
0: जी क्या बात है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि ये सवाल तो है, अकेले बैठकर एक बहुत ही अच्छी लिखी हुई लाइन या ओपन माइक या काव्य गोष्ठी की तालियां।
1: देखिए, तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है
0: और आई थिंक तालियां भी इम्पोर्टेंट है।
1: तालियां भी इम्पोर्टेंट है, अकेले बैठ के पढ़ मैं सोचती यंगस्टर्स के लिए अभी ज्यादा अच्छा है।
0: जी,
1: क्योंकि जिनको स्टेज नहीं मिल पाया है, जिनकी पहचान नहीं है, जो यंग राइजिंग स्टार बनना चाहते हैं, उनके लिए ओपन माइक इज 100% ओके। लेकिन जिनको तालियां भी चाहता है
0: जी जी,
1: और कभी अकेले में पढ़ना चाहता है, ये तो मूड की बात है। आपने शुरू में ही कहा था
0: तो दोनों पसंद है, यहाँ 50-50 पर चलेंगे। जी जी, तो कुछ ऐसा लिखा हो जो ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया हो, वो रचना आज जो यहाँ पर रखना चाहें आप
1: अपनी लिखी हुई?
0: बिल्कुल, आप गाकर सुनाएंगी या पढ़कर?
1: आपकी नजर एक गजल कर रही हूँ, मैंने हाल में लिखा था
0: जी,
1: उसको तरन्नुम में ढाला है। दीदारेरा मसरूर होंगे हम, दीदार हमको हो जो तेरा, मसरूर होंगे हम, बात न रूठा करेंगे हम, बात बिना बात न रूठा करेंगे हम,

0: क्या बात है।
1: बात बिना बात न रूठा करेंगे हम, तुम ही ने दिखाए हुनून के, तुम ही ने दिखाए मुझे रास्ते जुनून के। रब से तुम्हें हर रोज ही मांग, बात बिना बात न रूठा करेंगे हम।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो अभी वक्त है गाने आज दिल शायराना।

0: Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani 89.6 FM. कुछ हटके शो है आज दिल शायराना दयाल जी और अर्चना पांड्या जी जो कि बहुत ही खूबसूरत कवित्री है. बहुत मजा आया आपसे बात करके. तो जाते जाते
1: जी.
0: हमारे लिसनर्स के लिए और उन यंग पोइट्स के लिए एग्जैक्टली उनको क्या करना है, क्या लिखना है वो नहीं पता, तो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे?
1: मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत सारा पढ़िए, बहुत पढ़िए, उसके बाद आप दो लाइनें लिखिए
0: जी,
1: और आपको वहाँ से लॉन्चिंग पैड है आपके लिए, आप वहाँ से उड़ान भरना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आइए
0: जी.
1: जितनी तैयारी के साथ आएंगे आपको उड़ान उतनी ऊंची मिलेगी, आपको अच्छी वाली फ्लाइट मिल जाएगी.
0: क्या बात है.
1: इसलिए पढ़िए, आएगी तो बहुत सारे पेपर्स में, मैगजीन्स में उनके मेल आईडी होते हैं, आप वहाँ भेजिए. धीरे धीरे आपको लोग पहचानेंगे तो बहुत सारे मंचों पे आपको खुद ही बुलाया जाएगा.
2: यंगस्टर को मैं यही कहना चाहूंगी,
0: थैंक यू सो मच मैम, आप मेरे साथ जुड़ी और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई. थैंक यू अगेन जी. और लिसनर्स आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM. कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुरा

0: हिट्स एफएम
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 कच्छ हटके।
1: रेट्रो वाली सपना
0: और ले आई हूँ आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, क्योंकि बातें तो होती ही रहेंगी जब मिल बैठेंगे तीन यार का हमारा बॉलीवुड स्टार। वैसे आज मैं जिस स्टार की बात कर रही हूँ उनके लिए तो अपना फेवरेट किरदार पाना जैसे चौधरी का चांद हो गया था, क्योंकि झूठ बोलकर जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आने का मौका मिला और एक मुकाम तो ऐसा आया जब इन्हें लगा कि बस अब मेरी यही इमेज हिंदी सिनेमा में फिक्स हो चुकी है, इससे हटकर मैं कोई भी किरदार नहीं निभा पाऊंगा। लेकिन अंदर एक झील तो थी कुछ, पर इनकी इच्छा पूरी हुई अपने फिल्मी करियर के 20 साल बाद। जी हाँ, हम लोग अक्सर ये कहकर हार मान जाते हैं कि इतना वक्त हो गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर या वो चीज जो मैं कर सकती हूँ मैं नहीं कर पा रही हूँ। सोचिए, इन्होंने 20 साल इंतजार किया अपने उस सपने को पूरा होते देखने के लिए। आज किसकी बात कर रही हूँ जरूर बताऊंगी। आप वोटिंग कैरेक्टर रहे जिन्होंने पूरी फिल्म का भार अपने कंधों पर ले रखा था। ये मजबूत कंधे किसके थे अभी नहीं बताऊंगी, फिलहाल आप एंजॉय कीजिए इन ट्रैक्स को वापस आकर एक बार फिर से एक मजबूत किरदार के साथ।

0: बॉटल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज, वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा
1: चलिए उस दौर में जहाँ शर्मिला की अदाएं
2: चांद सा रोशन, चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा।
3: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
1: हेलन के ठुमके अब हर जुबान पर। तो सुनिए ऐसे ही किस्से सुनहरी दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी है।

की आवाज में इस गीत को आप सभी एंजॉय कर रहे थे और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। सपना बनी हुई करने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत की जिनकी जिंदगी भी किसी पहेली से कम नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 10th क्लास के बाद ही ये घर से ऑलमोस्ट भाग गए थे। क्या नाम बता देती हूँ मैं आज के कलाकार का, और ये थे हमारे अपने असित सेन साहब, जिनका जन्म 13th मई 1917 को गोरखपुर में हुआ। और क्योंकि इनके पिता थे ग्रामोफोन और रेडियो का काम किया करते थे, तो असित को बिल्कुल भी पसंद नहीं था अपने पिताजी की उस दुकान पर बैठना। तभी इन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से भागने का कोई उपाय। इनकी दादी जी प्लान कर रही हैं इनको शादी के बंधन में बांधने का, तो इन्होंने तो मौका लगते ही एक चौका लगाया और अपने पिताजी से कहा कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता जाना, ये कोलकाता के लिए निकल गए। पर क्या आप जानते हैं ये पढ़ाई का तो सिर्फ बहाना था, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई नहीं करनी थी बल्कि फिल्म मेकिंग करनी थी। पर इनके लिए तो कुछ बड़ा इंतजार कर रहा चस्का, जिसके चलते इन्होंने झूठ बोला कि ये पढ़ना चाहते हैं और कोलकाता आए थे। पर यहाँ पर एज अ प्रोफेशन इन्हें फिल्म मेकिंग तो नहीं मिली, लेकिन हाँ इन्होंने अपनी इनिशियल स्टेज को फोटोग्राफी पर थे, इसलिए इन्होंने इसी चीज को एक्सेल करना ठान लिया। और देखते ही देखते इनका काम काफी अच्छा चल पड़ा, साथ ही इन्होंने थिएटर भी ज्वाइन किया ताकि फिल्म मेकिंग के गुण सीखा, तो वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, तो इनके लिए कुछ और ही मंजूर था ऊपर वाले को। क्या करने आए थे और क्या कर रहे थे और आगे क्या होना बाकी था, सोना जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया गाने की बात कर रही हूँ, ओ मेरे सोना रे सोना। ओरिजिनली इसे गाया था आशा भोसले जी ने और इसे पिक्चराइज किया गया था आशा।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा लगता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, री सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 कास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: सरिया सुबार फिर से इसी गीत के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो मोरानी 89.6 पर। रात बाकी बात बाकी में सपना बनी हुई हूँ मैं आपके साथ, और आज हम रात बाकी बात बाकी में असित सेन साहब की बात कहकर भागे थे कोलकाता कि मैं तो पढ़ाई करना चाहता हूँ, पर यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई ना करके नितिन बोस साहब के साथ फिल्म मेकिंग सीखने का प्लान बनाया, और साथ ही इन्होंने कोलकाता का म्यूटिंग की बारीकियों को समझ पाए। पर होता तो वही है जो मंजूर है खुदा होता है। तो भाई साहब जहाँ पर ये कमान पकड़ रहे थे एक्टिंग पर, वहीं इन्हें एक बार गोरखपुर से, क्योंकि इनके पिताजी के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनकी रिटायरमेंट पार्टी को शूट करने के लिए इन्हें बुलाया गया, और यहाँ आकर जब इन्होंने इस पूरे इवेंट को कवर किया तो हर कोई इनकी ज्यादा इन्हें प्रेज किया गया कि थक कर इन्होंने 1932 में गोरखपुर में ही अपना एक फोटोग्राफी स्टूडियो स्टार्ट कर लिया। स्टूडियो बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया, और फाइनली सबको ये लगने लगा सेटल हो चुके हैं गोरखपुर में। पर यहाँ पर वक्त आ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, और क्योंकि फोटोग्राफी का सारा सामान इंग्लैंड से आता है इसलिए इन्हें अपनी दुकान बंद कर किया मुंबई का, और यहाँ पर इन्हें एक फिल्म मेकिंग कंपनी में स्टिल फोटोग्राफी का काम भी मिल गया। पर तभी इनके घर से एक बुलावा आया क्योंकि इनके दो फैमिली मेंबर्स बहुत को खो देने का गम कुछ इस तरह इन पर भारी पड़ा कि ये पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए, और गोरखपुर में कई सालों तक वो इसी गम में रहे। पर वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद एक सवेरा भी हुआ, और इस बार इन्होंने अपने आप को रिवाइव करने के लिए कोलकाता को चुना, और यहाँ आकर इनके साथ जो हुआ वो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या हुआ था बताऊंगी आपको। ते हैं ऋषि कपूर साहब को जो आपको अपने दिल की कहानी चीख चीख कर सुनाना चाहते हैं।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?

रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून नहीं हर जीव के लिए है। क्या कभी सोचा है कि जो पंछी आपकी छत पर आते हैं वे सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी उम्मीद से आते हैं। गर्मी उनके लिए भी उतनी ही कठिन है जितनी हमारे लिए। या एक बोल पानी भर कर रखिए, शायद आपकी एक कटोरी पानी से किसी की प्यास बुझ सके।

0: सुन भाई सुरेंद्र।
1: हाँ भाई सुरेंद्र।
0: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, तुम्हें क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो, मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
1: सही कह रहा है तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले, रहेगा तो गुलाम ही।

0: जिनकी मुस्कान ने लाखों दिन जीते, पर उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे किस्से जो किसी ने ना सुने, तो सुनिए रात बाकी बात बाकी में सपना के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो महारानी के।

दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। वैसे जितना दर्द इस गाने में है, उतना ही दर्द कुछ लोगों की जिंदगी में भी होता है। पर जब हम उन्हें बड़े पर्दे पर पाते कि इतनी स्ट्रगल भी उन्होंने कभी की होगी। फिलहाल स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। सपना हूँ मैं आपके साथ, और आज रात बाकी बात बाकी में हम असित सैन साहब की बात

हटाने के लिए कोलकाता जैसी सिटी को चुना और यहाँ आने के बाद एक दोस्त की मदद से उनकी मुलाकात एक्ट्रेस सुमित्रा मुखर्जी और उनके पति देव मुखर्जी से हुई और इन दोनों को उनका अनिल ले गए डायरेक्टर बिमल रॉय के पास, जो कि अपने लिए एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे और असित के रूप में उन्हें वो थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर मिल चुके थे। और बिमल रॉय के साथ मिलकर जिसमें परिणीता, बिरज बहू, देवदास, दो बीघा जमीन, ऐसी ना जाने कितनी फिल्मों के नाम शामिल हैं। अब चलिए, जब बात आ ही चुकी है देव बाबू की यानी कि दिलीप कुमार साहब की देवदास की, तो उसके बारे में बात नहीं सकता। इतनी सारी बातें हैं उस फिल्म के बारे में करने के लिए कि मुझे लगता है कि पूरा एपिसोड तो हम ऐसे ही खत्म कर देंगे। फिलहाल थोड़े छोटे में इसको कवर करने की कोशिश करती हूँ। इस फिल्म की माँ जो कि देवदास का रोल प्ले कर रहे थे, सुचित्रा सेन जो पारो के रूप में नजर आई थी और साथ ही वैजयंती माला को देखा था चंद्रमुखी के रूप में। पर क्या आप जानते हैं कि पहले पारो का किरदार मीना कुमार, रॉय चाहते थे कि इस किरदार को सिर्फ मीना कुमारी ही करें, पर उनके हस्बैंड कमल अमरोही साहब ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी जो कि बिमल रॉय चाह कर भी पूरी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मीना कुमारी पड़ा। दूसरा मेन रोल था चंद्रमुखी का, जिसके लिए बहुत सारी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया था पर सब ने इनकार कर दिया। ये एक्ट्रेसेस नरगिस, बीना रॉय और सराह दिए जाने के बाद ये कैरेक्टर पहुंचा वैजयंती माला जी के पास, और क्योंकि वो अपने आप में बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने तुरंत इस रोल के लिए हाँ कर दी। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। पर क्या आप जानते हैं कि वैजयंती माला वॉज दी फर्स्ट एक्ट्रेस जिन्होंने फिल्म फेयर को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर था, इसलिए उन्हें सपोर्टिंग एक्ट्रेस नहीं बल्कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलना चाहिए था। ये कहकर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस अवार्ड को, एंड फाइनली शी बिकेम द फर्स्ट एवर एक्ट्रेस हु रिजेक्टेड फिल्म का मेन कैरेक्टर, हमारे देव बाबू, जिन्होंने तो हिस्ट्री रच दी। 1955 में आई फिल्म देवदास उनकी 27th हिट, 27वीं हिट फिल्म। OMG, शायद इसीलिए इन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। अच्छा, वैसे तो इस फिल्म के सारे गाने हिट थे, पर एक गाना ऐसा था जो कि SD बर्मन साहब का तैयार किया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत था, जिसे फिल्म में तो जगह नहीं मिली, लेकिन हाँ 10 साल बाद देवानंद साहब की फिल्म गाइड में इस गीत को लिया गया और बन बॉन्ग। एंड दैट सॉन्ग वाज पिया तो से नाला के रे। क्या बात है, कितनी सारी स्टोरीज होती है ना एक फिल्म के पीछे, कितने सारे फैक्ट्स होते हैं जिनसे हम शाये हैं। पर वापस चलते हैं अपने असित सेन साहब की ओर, जो कि फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पर एक फिल्म ने उनका पूरा प्रोफाइल ही बदल के रख दिया। भाई कौन सी थी वो फिल्म जिससे उन्होंने एक्टिंग का डेब्यू किया था फिल्म इंडस्ट्री में, ये आपको जरूर बताऊंगी, और किसने दिया था ये रोल ये भी शेयर करूंगी। पर फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल।

0: बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
1: A few moments later,
2: मेरे सब दिखाई दे रहा है।
0: निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: क्या आप जानते हैं, बच्चे की सेहत की शुरुआत माँ के गर्भ में ही हो जाती है। सही पोषण मतलब स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा। तो जुड़िए अंजलि के साथ, जहाँ हर शनिवार और रविवार सुबह 10 से 11 बजे बात होगी माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और सही पोषण पर, जहाँ हमारे साथ जुड़ेंगे गायनी, न्यूट्रिशनिस्ट और योग गुरु इस सेहत के लिए।
4: सुनना ना भूलें पोषण की पाठशाला, सिर्फ और सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।
5: उसमें था।

वेलकम बैक है जी सपना मैं आपके साथ और आज रात बाकी बात बाकी में हम बातें कर रहे हैं आसिफ सैन साहब की, जिनकी लाइफ को अगर हम ओवरऑल देखें तो काफी स्ट्रगल करना पड़ा है इन्हें। जहां पहले इन्होंने अपने होम टाउन में सेट करने की कोशिश की और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहां से इन्हें आना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके थे। वहीं कोलकाता आने के बाद इन्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि हाँ मैं फिर हूँ, तभी इन्होंने बिमल रॉय साहब को असिस्ट करना शुरू किया। कई फिल्में उनके साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन्होंने डायरेक्ट की, पर वो आता है ना एक आपका सैचुरेशन पॉइंट जहाँ आपको ऐसा लगता है कि दैट्स इट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद से कुछ फिल्मों को डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो एज अ डायरेक्टर इन्होंने बहुत सारी फिल्मों को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, पर साथ ही साथ ये फिल्मों में छोटे मोटे कैरेक्टर्स 1945 में पहली बार हमराही फिल्म में देखा गया था। बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, इतना छोटा सा कि फिल्म में कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। 1949 में छोटा भाई फिल्म में पर हाँ विजिबल था, एक नौकर का किरदार इन्होंने निभाया और यहाँ से ये सबके नोटिस में आने लगे थे। और क्या आप जानते हैं कि ये वाला जो कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था इसकी इंस्पिर काम करने वाले एक सर्वेंट से ही ली थी। जिस तरीके से वो बोला करता था और जिस तरीके से वो सीरियस सिचुएशन को भी कॉमिक वे में प्रेजेंट करता था, एग्जैक्टली उसी से इंस्पायर्ड फिल्म छोटा भाई ने प्ले किया था। पर 1962 में आई फिल्म 20 साल बाद में इनके कैरेक्टर को फाइनली लोगों ने प्रेज किया और इन्हें इनके अंदाज किया जाने लगा, जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए एक टेंशन का टॉपिक भी बन गया था क्योंकि वर्सटाइल होना चाहते थे ये, पर इनकी एक कॉमिक इमेज इंडस्ट्री में फिक्स हो चुकी थी जो कि अब इनके लिए टेंशन का, धीरे धीरे अपने आप को एक्टिंग से दूर करना शुरू किया और डायरेक्शन पे ज्यादा कंसंट्रेट किया। पर क्या वो डायरेक्शन में हिट हो पाए ये बताऊंगी आपको, पर फिलहाल वक्त है कुछ फतेह अली खान साहब की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: जीवन का असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भरकर किसी सुरक्षित जगह रख दो, छोटी सी महत्व

0: कर रहे थे जुल्मी सावरिया। और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर। बात बाकी में आज हम बातें कर रहे हैं असित सेन साहब की। मोटे कैरेक्टर्स करना भी स्टार्ट कर दिया था अलोंग विद हिज डायरेक्शन, जहां इन्होंने एक जगह 1958 में चलती का नाम गाड़ी फिल्म में अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार, और इन्होंने आनंद फिल्म में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी काम किया। सुजाता, 20 साल बाद किताब, ऐसी न जाने कितनी फिल्मों में ये दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि पसंद किए जाते थे कि उन पर फिल्में बनने लगी थी। जी हाँ, सही सुना आपने, उन पर फिल्में बनने लगी थी। जैसे कि इनका एक फिल्म का कैरेक्टर था जिसमें इन्होंने गोपी चंद जासूस का कैरेक्टर सीरियस था कि फिल्म एक्टर राजेंद्र कुमार ने अपने भाई नरेश कुमार के साथ मिलकर उसी कॉन्सेप्ट पर एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम गोपी चंद ही रखा गया। सोच रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसमें असित दूर दूर तक नजर नहीं आए। सिर्फ फिल्म इंस्पायर्ड थी उस कैरेक्टर से जो उन्होंने फिल्म में प्ले किया था। इसी बात को लेकर वो इतनों में रोल कर रहे थे, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी थी। और क्योंकि इनका कंपटीशन उस वक्त के बड़े बड़े कॉमेडियंस जैसे जॉनी वॉकर, महमूद असरानी के बड़े कलाकारों के साथ था, तो इन्हें भी ऐसा लगता था कि ये वो मुकाम हासिल कर जाएंगे जो वो कर रहे थे। खैर, इनके अंदाज में जो मस्ती और जो चुलबुलापन था वो आपको सुनाती हूँ। पहले आप उसे
1: दिन आ गए हैं। आज हमारे बीच पंडित जी नहीं है, नेता जी नहीं है, गांधी जी नहीं है, और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती।
0: इतना जब सोच सकते हैं कि कोई निराश होकर एक्टिंग के करियर से दूर जाना चाहेगा। जी हाँ, असित सेन साहब जाना चाहते थे और अब इन्होंने फिल्मों से एज एन एक्टर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किए डायरेक्शन पर। यहाँ इन्होंने बहुत सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया, कुछ हिट हुई तो कुछ फ्लॉप भी। कौन कौन सी फिल्मों के लिए इन्हें अवार्ड मिले और कौन कौन सी फिल्में ऐसी थी जिन्हें इन्होंने पूरे दिल से बनाया पर वो कामयाबी नहीं करते रहेंगे। पर उससे पहले आपके दिलों का हाल जान लेते हैं।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून ब्रेकिंग न्यूज में चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
1: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर चाहिए।
0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।
2: शहर मुझे 89.6 एफएम रेडियो महारानी के नाम से जानता है।
3: अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल मेरी तो
0: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो तो ना एक्सीडेंट होगा। 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

कहाँ ना प्यार है आपको हमसे और हमको आपसे, तभी तो हर रोज आपके लिए कुछ डिफरेंट सा लेकर आने की कोशिश रहती है हमारी। कुरान 89.6 को ट्यून इन कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस अपने आज के स्टार की ओर, जो कि हैं असित सेन साहब, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ, करते करते इन्होंने कई सारी फिल्मों का एक्सपीरियंस लिया। क्योंकि ये बंगाली लैंग्वेज काफी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए इन्हें बंगाली स्क्रिप्ट को हिंदी में आता था। अब ये वहां पर कुछ नॉवेल से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हुए कि इन्होंने बंगाली नॉवेल्स पर बेस्ड बहुत सारी फिल्में बनाई और बंगाली फिल्म्स के रीमेक भी हिंदी में बनाया करते थे। पर बिमल रॉय के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम करने के उनको डायरेक्ट भी किया, जिसमें सफर, बैराग, अनाड़ी, ममता, अनोखी रात, खामोशी, ऐसी ना जाने कितनी फिल्मों का नाम शामिल है। कुछ फिल्में हिट हुई तो कुछ फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप भी हुई का नाम शामिल है, जो कि 1970 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड दिया गया। पर 1982 और 3 में आई फिल्म वकील बाबू और मेहंदी जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप हुई कि इनका एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन से भी दिल उतर गया और इन्होंने डायरेक्शन से अपने आप को धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया। ये अलग बात है कि ये फिल्मों को छोड़ रहे थे, पर फिल्में इन्हें नहीं छोड़ रही, फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स का ऑफर मिल रहा था, जिनमें लोग अब इनके अंदाज को भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। वो जो स्लो वर्जन ऑफ डायलॉग डिलीवरी था इनका, That was, उन्होंने अब काफी ज्यादा वेट भी पुट ऑन कर लिया था, इसलिए लोग इनके थ्रू आउट इनकी प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा एंजॉय भी करने लगे थे। कभी फिल्मों में जासूस तो कभी वकील, तो कहीं पर अले पापा के रूप में हमें नजर आ रहे थे और इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक और भी नाम से जाना जाने लगा था, उस्ताद। ये सिंगल टेक रिएक्शन के उस्ताद थे। ये कहा जाता है कि जनरली ये अपने एक सिंगल टेक में ही डन कर दिया करते थे, पर वो कहते हैं ना कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कुछ गम छुपा होता है। इनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा था, जिसकी वजह से इनकी क्या चल रहा था ये आपको बताऊंगी। तब तक आप एंजॉय कीजिए रीमेक वर्जन ऑफ मंगड़ा।

0: पानी पर जीएसटी लग गया है क्या?
1: अरे नहीं यार, पानी तो बिल्कुल फ्री।
0: अरे भाई, जब ना कोई टैक्स है ना कोई डिलीवरी चार्ज है तो एक प्याला पानी रखने में कैसा एतराज है?
1: इससे पहले कि ये बेजुबान मोहल्ले का आरटीआई दाखिल करें कि पानी गया कहाँ, उससे पहले कि जान बचा लीजिए।

क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है, ये बात हम कह सकते हैं हमारे असित सैन साहब के लिए, क्योंकि इनकी सूरत के ही तो सब कायल हो गए थे। इनकी डायलॉग डिलीवरी स्वीट हुआ करती थी कि हर कोई इन्हें फिल्म में लेना भी चाहता था। अब गोपी चंद कैरेक्टर को ही देख लीजिए ना, इन पर तो पूरी फिल्म ही बन गई थी। अलग बात है कि ये इस फिल्म का हिस्सा नहीं थे, एक पूरी फिल्म बनी थी, ये छोटी बात तो नहीं है। जितना संघर्ष इन्होंने अपनी जिंदगी में देखा, किसी और की जिंदगी में होता तो शायद उनके चेहरे पर ये मुस्कुराहट ना होती, पर हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो गम वर कम भी तो करना होता है। असित सेन परफेक्ट एग्जाम्पल थे इसी बात के। इन्होंने लाइफ में आई हर प्रॉब्लम को हंसते मुस्कुराते फेस किया, छोटी छोटी बातों से इंस्पिरेशन ली, ओमेज बनाई इंडस्ट्री में कि असरानी और जगदीप जैसे कैरेक्टर्स को भी ये टक्कर देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में खड़े हो गए थे। खैर, जहां बात इनकी डायरेक्शन की थी तो वहां पर भी इन्होंने काफी अच्छा काम, पर भी इन्होंने झंडे गाड़ दिए भैया, क्योंकि पूरी 200 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने अपीयरेंस दिया है। वैसे जनरली हमने ये देखा है कि लाइफ में थोड़े से भी हर्डल्स हमारे सामने आते हैं, लेकिन असित ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उनकी लाइफ में भी बहुत सारे हर्डल्स आए, कुछ ऐसी दिक्कतें भी थी जिसकी वजह से इन्हें एक बार को लगा कि शायद मैं फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, वहीं गुजरता रह जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत में कुछ बड़ा करना लिखा है तो पहले ही उन छोटी छोटी चीजों को कीजिए जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही इन्होंने किए के बाद ही तो इन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर और फिर एक कॉमेडियन बनने का मौका मिला। तो लाइफ में कोई भी काम हो, वो छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम हो, सीढ़ी बनकर आपको आपके मुकाम तक पहुंचा दे, इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसलिए जो भी काम मिले उसे दिल खोल के करना चाहिए। फिलहाल आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूरी है, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया और असित सेन साहब की इस जर्नी को हम सब ने थ्रू आउट डे एंजॉय किया। और इसी के साथ वक्त भी हो चला है मेरा आप सबसे विदा लेने का, जल्द मुलाकात, दे दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और हाँ गर्मी बहुत है तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पास हमेशा एक वाटर बॉटल जरूर रखें। तो चलिए इन्हीं सायोनारा, फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको नसीब होगा। छोड़े जा रही हूँ आपको कुछ खूब।

0: लिए डिलीवरी के बाद कौन सी चीज बच्चा बचा पाएगा? कंफ्यूज्ड है पर अब नहीं। सुनिए पोषण की पाठशाला आरजे अंजलि के साथ, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन, सभी सवालों के सही और सेहतमंद जवाब।
1: जिंदगी में भी हर खुशी में भी लगती है एक कमी,
0: तो बिल्कुल भी सुनना मत भूलिए हर शनिवार और रविवार सुबह 10 से 11 बजे। हर माँ और बच्चे का अधिकार है सही पोषण और स्वस्थ जीवन।

0: रानी प्रेजेंट्स साइबर
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जा
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह ऐप
3: पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: जहां जिंदगी है वहां हम है। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी के
5: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जाता।

0: 99.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ऐसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता।

0: टेलीफोन व्हील्स वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, मैं बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

ये है रेडियो। डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद, मेरी जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगी आती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो रहती है, पापा के सवालों में सत्य से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: या छोटा हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन 0.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद, कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: वे सारा कुंडला वेख कालिया
1: JSL, baby.

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग हैकिंग जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: खिलाना।
1: सुनो सुनो,
2: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
3: अरे देखो
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे की पूरा
5: थे जापानी ये पतलून इंग्लिश,
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ, इकरार हुआ है प्यार।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
7: आवारा हूँ, आवारा
4: हूँ। समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग सुनना ना भूले, सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
8: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप फोर जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। हम सब बदल गए हैं, इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम्स।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग हैकिंग है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: प्रियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक
1: के तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइट।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई, जब एम्बुलेंस के हॉर्न किया, फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है। जनाब, एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा।
2: मेरा गाना चला तो डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला तो गाना चला तो।

0: गाना बजा दूं
1: का क्विक रिमाइंडर। डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, सता है स्कैम का इफेक्ट।

0: तीर हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लप हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी की कहानी
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

तेरा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच जितने भी रूमर सुने तूने वो सारे सच।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

जैसे हिलती है वैसे की रब से मिलाकर, बारी तेरी हार देना चंचला फर, आने तुझे पड़ा कि ये क्या खिलाकर।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वह मैं हूं एम्बुलेंस। हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है, कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं, इस ट्रैफिक के थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता हासिल ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: इतना भाई, हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है, लाइफ रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी। को अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: हाथ शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
1: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
1: इरशाद।
0: इस बस जैसा अपना हाल है यारों।
1: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा।
0: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है, फिर भी अपना रुतबा है यारों।
1: ये बात तो सही है।
0: और बस की याद आती है जब भी
1: लगे से
0: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
1: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
1: प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से, फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो
1: आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सनामा का स्वैग, सुनना ना भूले, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
2: यात्री रेडियो महारानी है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: उठला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह ऐप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है, बल्कि पैदल चलने वाले लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
1: हित में जारी
2: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, या हो आईडेंटिटी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती से यहां कुछ दम घुट कर रह जाती है। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए
2: साहब पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ फिर दिल न लगे, जो कहता आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक की मांग लेते, अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और

0: झुमका
1: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने आती है, कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्यों आगे के लम्हे जीना चाहती है।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just rupee. Link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराध होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बिलम्हे जीना चाहती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह ऐप्स डाउन।
3: पहले डिजिटली सेफ रहो, फिशिंग हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: घर लौटती हूँ। माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: रहो अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक मन में आती है, कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, आगे के लम्हे जीना चाहती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। जनहित में जा रही है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं, इस ट्रैफिक से थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
1: हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
1: आवारा हूँ, आवारा।
0: और समझाऊं, ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सनामा का स्वैग, सुनना ना भूले सनामा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: किया है?
1: अर्ज
0: अभी करते हैं, सुनो
1: इरशाद।
0: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें
1: इजी लायक।
0: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
1: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: वो फोन कार्ड देते हैं।
1: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
0: अरे

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ तो इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चालाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी।
0: भाई स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें, किसी भी अनजान नंबर या लालच भरी मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से अकाउंट बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचे। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन टॉप से बी सेफ बी अवेयर।

0: अभी फ्रेंडशिप अनसरेड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी, जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना, ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ, रेका होगा रियल इवैल्यूएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है, इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं हो,
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों,
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो है।
1: जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ
0: कैसे कैसे,
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
0: अरे यार वो क्या, मुंह उठा के आगे बढ़ना था, अब मैं चली तुम बोलते।

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक यूआई का लाभ और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है, कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पैसे के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: महारानी आप सभी से अपील करता है, पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना।

0: फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते मझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: है फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्ता होगा रियल इवैल्यूएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: जब HR 51 की गाड़ियां दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गरानी 89.6 ही बजाना।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: life. Of course, पर सेफ अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 इज स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है.

असलियत को याद दिला दे उदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जानों में नहीं लाखों में एक बने। नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: किशोर दा को क्यों दा पौधे से प्यार।
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से
1: दिल
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बाद बाकी में।

साकार है जिंदगी। मुझे फिर से जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ही खेल है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा फिर से बच्चा होना है।

0: Puspa, I hate water wasting re. जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल ये फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस या कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित।

0: ए भाई
1: नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉस।
0: ऊपर ही नहीं नीचे भी
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन को। कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा आई हेट वाटर वेस्टिंग। जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे। क्योंकि नींद और रफ्तार,
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 एफएम कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मेरे साथ दिखाई दे।
1: जी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारी किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता,
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल सोवा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से रात बाकी बाद बाकी में।

0: सदा सुरक्षित रहो अरूड सेफ।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगी, यही दबंगी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशा है। और अगर रील स्क्रॉल या स्कोप कर करो, याद रखो रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: अर्ज किया है?
1: अर्ज अर्ज
0: अभी करते हैं, सुनो
1: इरशाद।
0: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
1: वाह वाह,
0: तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
1: तुम अभी जिलायक,
0: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
0: बस मेरी पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
1: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
0: अरे,

सुंदर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, थक गई हूँ भागते भागते खुद से। अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। दिल से अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, अरे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मेरे साथ दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: नानी, आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।
4: कुछ छक्के हैं।

0: जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार।
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार। जानिए ऐसे ही किसे सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बाद बाकी में।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग हैकिंग है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: पुष्पा, I hate water wasting रे की बंद कर।

0: से तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोतिया, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता?
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

फॉल्स, पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बातें। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: आपको याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी।
1: कुछ छक्के
2: हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं,
3: कुछ हटके।
4: हाल कैसा है जनाब?
5: क्या हाल है आपका?
4: तुमको मचल गए,
5: यूं ही फिसल गए, आ आ आ।
4: हाल कैसा है जनाब का?
5: हाल है आपका?

0: कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले हेलमेट आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है, कर रहे हैं आप सुनो तो
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
2: क्या पूछा?
0: हाँ, आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता के लाते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसी मारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: शादी ना बना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं सुनो तो सुनो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी। पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: आप यहाँ आए किस लिए? मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते।
1: महंगा खतरा भाई, हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महाराष्ट्र हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: डीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी। थेफ्ट

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है
1: भाई? मैं तो लंबी रेस कर
0: रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: जहाँ जिंदगी है वहाँ हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर सबसे पहले रास्ता दे,

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

नर्क के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद् गीता के 16वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है और जब कामनाओं की पूर्ति पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है, इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। कि इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: ज्ञान भूल जाता है। भक्ति का पथ ही है बस ऐसा पथ, जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी डर, श्री हितामृत जी के विचार।
1: समस्त भागवत धर्मन ऊपर निकुंज माधुरी श्री युगल चंद्र जो मिलो नाही, तासु रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे ते आपते जाई अंतर पर है निसंदेह। अब यहाँ रस के उपासक को, रसोपासक को, साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि देवदास जी कह रहे हैं कि जिन यह रस समझो नहीं, तासो रस की बात करनी उचित नहीं। जो कहे तो आपते जाए, यदि कोई ऐसा करेगा वही समाप्त हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अंतर परे निस्संदेह, और समाप्त नहीं होगी तो कह रहे शिथिल तो अवश्य पड़ जाएगी। पूर्व भी आपसे चर्चा हुई, इस बिना ही भजन को बचाना है, भजन का गोपन, और अन्य अधिकारी के सामने तो बिल्कुल भी ना कहा जाए। अच्छा, बहुत लोग मैंने ऐसे देखा वो खींच तान कर सबको लगाने का यहाँ प्रयास करते हैं, पर जीव का कल्याण केवल केवल केवल ईश्वर के अनुग्रह से होता है। आप और मैं यहाँ बैठे हैं, ये आपका मेरा प्रयास नहीं है, ये आप पर और मुझ पर प्रभु की कृपा है। ये प्रभु की कृपा के प्रसाद से आप और मैं यहाँ पर बैठे। मौन होए रहनो बहुत भलो है।